0: कर्म कर बंदी, चाहे बुरे कर्म न कोई करे, सबको अच्छे कर्म करने चाहिए। तो बात हो रही थी कि गंगा में विसर्जित अस्थियां आखिर जाती कहाँ हैं, इसका उत्तर तो वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए।
1: वैज्ञानिक माने तो
0: साइंटिस्ट
1: वो भी नहीं दे पाए
0: कि गंगा में विसर्जित अस्थियां जाती कहाँ है, क्योंकि असंख्य मात्रा में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद भी गंगा जल पवित्र एवं पावन है। गंगा सागर तक खोज करने के बाद भी इस प्रश्न का पार नहीं पाया जा सका। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्तियों की अस्थि को गंगा में विसर्जन करना उत्तम माना गया है। यह अस्थियां सीधे श्री हरि के चरणों में वैकुंठ जाती है।
1: वैकुंठ जाती है?
0: हाँ, सनातन धर्म के अनुसार, वैज्ञानिक के अनुसार नहीं। जिस व्यक्ति का अंत समय गंगा के समीप आता है उसे मरणोपरांत मुक्ति मिलती है। इन बातों से गंगा के प्रति हिंदुओं की आस्था तो स्वाभाविक है। वैज्ञानिक दृष्टि से गंगा जल में पारा अर्थात मरकरी विद्यमान होती है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है, जो जल जंतुओं के लिए एक पौष्टिक आहार है। हड्डियों में गंधक सल्फर विद्यमान होता है, जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण होता है। इसके साथ साथ यह दोनों मिलकर मरकरी सल्फाइड सॉल्ट का निर्माण करते हैं। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। धार्मिक दृष्टि से पारद शिव का प्रतीक है और गंधक शक्ति का प्रतीक है। सभी जीव अंततः शिव और शक्ति में ही विलीन हो जाते हैं।
1: शिव और शक्ति में विलीन हो जाते हैं?
0: हाँ, शिव और शक्ति।
1: तो राजेंद्र जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और आज के विषय के बारे में आपने सुनाई। गीत तो थोड़ा अब निकाला गया है, वो बढ़िया से तैयार करके रख दिया गया है।
0: अनूप जलोटा जी ने बहुत ही सुंदर अपने मुखारविंद से गाया।
1: मैं देख रहा हूँ, शांता जी आपको कुछ कहना?
2: हाँ, ये राजेंद्र जी जो इतने अच्छे से बताए ना कि अस्थियाँ के क्या होता है, तो उसमें मुझे ये याद आया कि हम जिंदा है पर अपने जिंदागरी से जागना चाहिए। जिंदा है तो जाग जरा, अपना वजूद पहचान जरा, जाने वजूद अपने आप को पहचान जरा। हम कौन है, तू कौन है, क्यों आया है इस धरती पर, हम सभी को क्यों बुलाया गया है। तो ये हमने सोचा कि हम सभी को क्यों बुलाया गया है, तो इस पर गौर करें और सोच विचार करें और आगे बढ़ें।
0: जरूर इस पे आगे बढ़ना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। तब तक हम क्यों ना एक सुंदर सा अनूप जलोटा की नगमा की ओर बढ़ें, शांता जी?
2: हाँ बिल्कुल, चले जाए।

0: चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अधम शरीरा
1: अनु
0: पंच तत्व मतलब चित जल पावक गगन समीरा पांच
2: तत्व
0: जल अग्नि वायु आकाश
2: पृथ्वी जल
0: अग्नि
2: वायु
0: आकाश
2: ये पांच तत्व से बना हुआ शरीर
0: बना हुआ है
2: और ये पांच तत्वों से बना हुआ शरीर है जो
0: और जब ये शरीर पूर्ण हो जाता है तो पांच तत्वों में ही विलीन हो जाता है
2: फिर दोबारा
0: जहाँ से आता वहीं चले जाता है
2: वहाँ दो चले जाते हैं।
0: तो अनूप जलोटा जी ने बहुत ही सुंदर इसको अपने भजन में उतारा और चित जल पाव गगन शरीरा पंच तत्व एदम शरीरा में बहुत बढ़िया सुंदर उन्होंने अपने
2: अच्छा संदेश दिया
0: बहुत बढ़िया संदेश दिया इसमें। तो बढ़ते हैं आगे आगे की तरफ
2: पाछे जाना नहीं हम सबको राजेंद्र जी क्योंकि आगे हम बढ़ते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे आगे चलते रहेंगे। और राजेंद्र जी अगर आप मुझे एक मैसेज आए
0: जरूर
2: तो मैं सुना सकूं।
0: स्वागत है।
2: तो दोस्तों ये है कि शरीर जल से पवित्र होता है मन सत्य से और बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। तो ये बात जो हमारे लिए भेजे गए है हम जरूर अच्छे अच्छे संदेशों अपने कार्यक्रम में जरूर रखते रहेंगे। और राजेंद्र जी इस समय जो हम सब के लिए कुछ रखने वाले हैं तो सुना दीजिए राजेंद्र जी क्योंकि मैं देख रहा हूँ शांता जी इस समय कुछ तैयारी कर रहे हैं।
0: 2.5 किलो की हस्ती थी और 2.5 किलो की ही रहेगी इसका मतलब
2: 2.5 किलो की अस्थि थी और 2.5 किलो ही रह गई।
0: 2.5 किलो की हस्ती थी
2: हाँ जी
0: और 2.5 किलो ही रह गई।
2: 2.5 किलो रह गई
0: इसका मतलब है कि इंसान जब जन्म लेता है
2: हाँ जी
0: तब उसका वजन 2.5 किलो के लगभग होता है और जब अंतिम क्रिया होती है तब भी उसकी अस्थियां का वजन 2.5 किलो के लगभग ही होता है।
2: वो तो पोटली में भर के दे देते हैं ना।
0: हाँ तो भगवान अपना हिसाब बराबर ही रखते हैं बस
2: अपने जीवन में कार्य किए सब बस खत्म और बस उसी प्रकार से हम 2.5 किलो के हो जाते हैं
0: बस उसी प्रकार।
2: मेरे ख्याल से कुछ और चल रहा है राजेंद्र जी।
0: नहीं वो उधर चल रहा है इधर
2: उस स्टूडियो तो ही है।
0: हाँ
2: तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सब एक और गीत की ओर जरूर बढ़े।
0: हाँ जरूर
2: राजेंद्र जी जो वृतांत था वो जो गोबर से बनाया जाता ना
0: हाँ,
2: इंडिया में
0: बताइए
2: तो उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे पर देखा जाए कौन सा गीत आप रखने वाले इस समय पे। सुने वालों आप सुनते रहना हम सब एक फिर से एक सुंदर गीत को तैयार कर चुके हैं इस पर इस समय प्लेयर पे बस चलाने वाले हैं आप ध्यान देना और हम सब अभी आपके पास फिर मिल जाएंगे और भी संदेश लेकर।

तो दोस्तों ये भी आज अभी हम सब असली गाना जो हमारे पिटारे से भर के लाए हैं शांता जी वो नहीं रख पाए हैं, पर हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाए हैं। और ये जो एक संदेश है हर बार कार्यक्रम में रखा जाता है, तो इस पे आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि हमारे जीवन में और जो सुख की चाबी होते हैं उसे तो हम ढूंढ रहे हैं, पर ताला किसने लगाया है इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आद में हम ही खुद ही अपने जीवन का ताला चारों बगल लगाते आए हैं, लगा रहे हैं। और ये ना हुए कि ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम जो हम सब यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, ये कार्यक्रम जिसमें ये इच्छा रखा जाता कि हमारे जीवन के ज्योति जो है उसमें थोड़ा और प्रकाश आए। ये कार्यक्रम जो हमारे रेडियो फाहन हिंदुस्तानी रेडियो से और रखा जाता है, जो दनहाग शहर से लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है न्यूटन सरात फैंटन तक से, और ये वृतांत जो हम सब आपके लिए ढूंढ ढूंढ के और लाते हैं, हमारे भाई संजय शर्मा जी जो पहाड़गंज से, और भाई रिंकू प्रवेश जी जो बजरंगी सेना का सभापति है जो मोहन गार्डन इंडिया से, ये वृतांत हम सब के लिए ढूंढते हैं, और श्रीमती रत्ना जी जो अपनी ओर से सहयोग देते हैं दनहाग शहर से। तो ये वृतांत जो रखा जाता है इसमें कुछ ना कुछ संदेश हम सब के लिए जरूर रहते हैं। हमारे साथ जो ये कार्यक्रम में आज और गीतों का भंडार अपने पिटारा से भर कर आए हैं, तो शांता जी जो हम सब के लिए ये गीतों का तैयारी कर देते हैं, और राजेंद्र जी जो प्लेयर पे इस समय वही गाना रखने जा रहा है जिसके इंतज़ार में हम सब है, तो राजेंद्र जी क्यों ना वो गीत चला दिया जाए।

0: जो आपने चलाए राजेंद्र जी, अच्छा सुंदर सा गीत, और ये जरूर कहना चाहूँगा, कह दूँ?
1: कहना पड़ेगा,
0: कहना पड़ेगा, तो कह देता हूँ। जो परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है, जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार एवं हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखता है, इस पे आपका क्या कहना राजेंद्र जी?
1: जीवन कभी भाग्य नहीं लिखता ये तो, लेकिन हमारे जो सोच और कर्म है और विचार हैं वही हमारा भाग्य लिखते हैं। हकीकत यही है, यही इसमें हम आपकी बात पे सहमत हैं। हम जैसे कर्म करेंगे, जैसे हम बोएंगे बीज, वैसे ही पेड़ उगेगा और उसमें वैसे ही फल लगेंगे। तो हमें चाहे कि अच्छा कर्म करें और उसके जो फल लगे वो भी अच्छे ही लगेंगे, लेकिन हमें कर्म अच्छा करना चाहे
0: सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कर्म अच्छा करना चाहिए, ये तो हमारे सभी सुनने वालों जानते हैं, और ये कार्यक्रम को सुनने वालों सभी को इस बात को पता है। पर राजेंद्र जी, आज का विषय,
1: गीता में भी लिखा है कि कर्मण्येव वाध्यकारस्ति मा फलेषु कदाचन, अच्छे कर्म करते रहो और फल की इच्छा ना करो, फल तो स्वयं अपना आप अच्छा ही होगा, इच्छा ही नहीं चाहिए फल की करना।
0: शांता जी, इस पे आपका क्या ख्याल है?
2: एक शायरी मुझे याद आती है जो हमारे उस्तादों जी ने सब गाते हैं, गाने से पहले दोहा के रूप में कहते हैं, बोवे बीज बबून के तो आम कहाँ से खाए,
1: हमुआ कहाँ से खाए।
2: हाँ,
1: बोया बीज बबूल का तो अमुआ कहाँ से आए।
0: ऐसे
1: अमुआ मतलब आम, बबूल जिस बबूल का पेड़ पे कांटा ही होता है, फल होता ही नहीं है, तो अगर कांटे का बीज बोओगे तो आम खाना कहाँ से खाओ।
0: आपको निखरंगा साता है? नहीं आता, वो दूसरा सरनाम वाला।
1: हाँ,
0: सायो प्राणी दाचियो, कैसे बोले
2: साता जी? किसी
0: दाचियो किसी। तो दोस्तों, ये बात है कि आप ऐसा वृक्ष लगाइए, ऐसा फल लगाइए जिसका और फल मीठा भी हो।
2: माता जी ये कहते हैं कि जैसा करने वैसा भरने,
0: जैसा करने वैसा भरने, ये सभी संप्रदाय में से ये संदेश
2: प्रधान विश्व कर राखा
0: ऐसा। और राजेंद्र जी, क्या बात है कि ये हमारे सूरीनाम के गाना आज चलेगा या नहीं चलेगा?
1: हाँ, जरूर चलेगा, लेकिन उससे पहले एक जो बहुत ही सुंदर गाना है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है,
0: तो हम सब तो चला देते हैं
1: जरूर।

0: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ तो पैदल ही जाना है।
1: कुछ नहीं
0: तो फिर झूठ किस बात का बोलना
1: है?
0: पैदल ही जाना है,
1: पैदल ही जाना है।
0: हाथी है ना घोड़ा है, खुदा के पास जाना है।
1: तो हमारे कार्यक्रम में सभी सुनने वालों भी इस समय समझ गए होंगे कि यहाँ कुछ गीत का सिंगर तो कुछ कोई और था, और यहाँ कुछ कोर देने लगे हमारे गीतों के और ये सुंदर गीत के साथ। कहने के तात्पर्य ये है, जिंदगी में हम सब जो आए हैं तो कुछ ना कुछ हम सबको ये कार्यक्रम से हम सब रखते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें हमारे जीवन की ज्योति में थोड़ा से प्रकाश आ सके, और इसमें ना सिर्फ आप, हम सब के लिए भी खोज करके रखे जाते हैं और कुछ ना कुछ हम सब भी यहाँ से और प्राप्ति करते हैं यहाँ से और सीखते हैं। राजेंद्र जी, घड़ी का अनुसार मैं देख रहा हूँ तो बस यही है कि आज सूरीनाम हमारा प्यारा देश चलेगा या नहीं?
0: अब तो मुझे तो नहीं लग पा रहा है। मुझे लग रहा है कि लागी छुट्टी ना
1: तो चला देते राजेंद्र जी, कोशिश किया गया। मेरा तो बस यही है कि पूछ लेना, क्योंकि पनेल के पीछे तो आप है और आपके हाथ में सभी
0: बाग तो हमें, लेकिन समय हमारे
1: समय नहीं है। समय के
0: तो रुक नहीं रहा है।
1: बस चला दीजिए राजेंद्र जी।

हाँ सुनने वालों, जिंदगी इतनी भी मजबूर नहीं, जिंदगी इतनी भी मजबूर नहीं ऐ दोस्त, दिल से जियो तो मौत भी जीने की अदा बन जाती है। सुनने वालों, हम आपको यहाँ से दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि आप अपना साथ दी, अपना सहयोग प्रदान की। हम आपको दिल से धन्यवाद कहती हूँ और साथ देने के सुनने के लिए आपको बहुत से धन्यवाद। स्वीकार कीजिए शांता जी के प्यार भरी नमस्कार।

किया तो प्यार किया तेरी कसम, तो प्यार तो सबने किए है सबकी कसम। और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जितने भी श्रोता हों उन वो भी सब फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को प्यार करते हैं और इतने प्यार से सुनते हैं तो उनका भी एक प्यार बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम को सुनते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, फ़ोन करते हैं और फिर सुनने की अगली बार की प्रतीक्षा करते हैं और हमें इतना प्यार देते हैं। सबको नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली बार इसी समय इसी बार। तब तक के लिए नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे सहयोगी साथी शांता जी और राजेंद्र जी जो पनेल पे बैठे हुए हैं, आशा यही हो कि जरूर कुछ ना कुछ संदेश आपको प्राप्त हुआ होगा। हम सब फिर मिलेंगे आपसे। आपको नमस्कार।

सुंदर गीत यहाँ से आपके लिए चला दिया गया है सुनने वालों आज इस सुबह के कार्यक्रम में। और देखे तो कहाँ चुन कर रखी थी, पता नहीं कहाँ चला गया ये सब गीत, फिर भी हाँ पता हो गया, ऐसा होना चाहिए जी। हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार या चर्च नहीं जाते हो तो घर कैसे जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो घर कैसे जाते हो जहाँ आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाली भाई रहता है और सहारा देने वाला पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है ना, घर भी तो एक मंदिर है, सोचने वाली बात तो ये ज़रूर है।

शबीर गमीर गीत आप सुन रहे हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से सुनने वालों, जो आपके लिए सिर्फ आपके लिए पेश किया जाता है। गुरुजी बोले जो रुला रहा है तुझको, जो रुला रहा है तुझको, वो कब तक मुस्कुराएगा? आसमान में उड़ने वाला तो पल में गिर कर नीचे आएगा। आज दुखाया दिल तेरा जिसने, आज दुखाया दिल तेरा जिसने, कल वो भी पछताएगा। जो दिया जिस इंसान ने तुझको, जो दिया जिस इंसान ने तुझको, कल वही वापस उसको मिल जाएगा। फिकर ना कर ना दिल को दुखा, फिकर ना कर ना दिल को दुखा, मैं साथ हूँ तेरा, ना ये बात भूला। है मेरे हाथ में जिंदगी सबकी, है मेरे हाथ में जिंदगी सबकी, मेरी नज़र कभी से कभी कोई ना बचा। मेरी वचनों पे जो ना चला है, मेरी वचनों पे जो ना चलता है, जो दर्द किसी को देता है, करता नहीं मैं माफ़ उसको, जो दगा किसी से करता है।

जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम, चलने का नाम जिंदगी, कहती हूँ हमेशा चलने का नाम जिंदगी, रुकने का नाम मौत है। कुछ याद रखने योग्य बातें यहाँ आपसे मैं कहने जा रही हूँ, सुनने वालों, कुछ याद रखने योग्य बातें। लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको कि उठने वक्त सहारा लेना पड़े। जुबां की हिफाजत दौलत से ज़्यादा मुश्किल है। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। अगर भक्ति नहीं कर सकते तो गुनाह भी मत करो। दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि ये देखती है कि तुम अब क्या हो। जहाँ अपनी बात की कदर ना हो वहाँ चुप रहना ही बेहतर है।

महेंद्र कपूर जी से हमने सुने फकीरा चल रे चल चला चल। जी हाँ, गीता के सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहाँ से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है।

छोड़ के पिंजरा पंछी को एक दिन उड़ जाना है, किशोरदास से हमने सुने। और हम देखे अगर फिल्म का नाम, तो ये सुंदर सा फिल्म हम कालिया, फिल्म कालिया से निकाला गया, नेखन तीन इन तख तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। सुने वालों,

मुकेश जी ने हमके सुना दी कि तूने रात गवाई सोई के और दिवस गवाई जाग के। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते, और भरोसा एक रिश्ते की सबसे महंगी शर्त है। भरोसा, जी हाँ, भरोसा एक रिश्ता की सबसे महंगी शर्त है।

दुनिया नहीं जागीर किसी के सुंदर सा गीत। रफ़ी जी की आवाज़ में हमने सुने सुने वालों, खूबसूरत है वो हाथ, खूबसूरत है वो हाथ जो किसी के लिए मुसीबत मुश्किल वक्त का सहारा बन जाए।

चाहे रो ना पाए उदित नारायण जी की आवाज़ में हमने सुने, फिल्म का नाम अनारी है। सुने वालों, जिंदगी में ज़्यादा टेंशन है, तनाव है, दबाव है, चिंताएं हैं और हमसे नहीं संभल रहा है, ये सब हमसे संभल नहीं रहा है, तो ये सब उनको दो ना। ये सब टेंशन, तनाव, दबाव जो है, ये सब उनको दो ना, जो जिसने हमें ज़िंदगी दी है, वो जब पूरी दुनिया संभाल रहा है तो ये भी संभाल लेगा।

मत रफी जी के आवाज़ में हमने यहाँ से श्रवण की है सुनने वालों कि कल चमन था आज एक सहरा हुआ, फिल्म वक्त से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। जिंदगी पल पल बदलती है, ये तो सही है कि जिंदगी पल पल बदलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है, शिकवे कितने भी हो हर पल फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है, बस एक ही बार मिलती है।

0: वक्त के हर शै गुलाम, वक्त का हर शै पे राज।
1: जी हाँ, वक्त से दिन और रात, फिल्म वक्त से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। हम क्या कहें, हम तो बेशब्द हो जाते हैं। ये गीत अगर आप सुने तो ये गीत में सभी बातें जो हमें जीवन में और आगे ले जा सकते हैं, अपना जीवन जो हम सुधार सकते हैं गीतों से, हम सुन सकते हैं और अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर। जी हाँ मेरे सुनने वालों, दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती है निशानी बनकर, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं। जी हाँ, रिश्ते हमेशा रहते हैं, कभी होठों की मुस्कान बनकर तो कभी आंखों की पानी बनकर।
2: हाँ,

देखो, चारों तरफ देखो, इनमें भी कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भाई है। इस शहर खामोश में मिट्टी के ढेर के नीचे सब दबे पड़े हैं। मौत से किसको रस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। बेटे, इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना, तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कहकहे लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है, मगर दुख, दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। पहुंच ले आंसू, पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। हंस हंस हंस बेटा, हंस और हंस और हंस।

जी हाँ, जाने मन कहलाएगा हमको टाइटल सॉन्ग सुनाई है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से किशोर दा जी ने। नीकंतिन अख्तन सीफन तक ये सुंदर सा पिक्चर है इसकी और फिल्म है। कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत, ये खेल में न जाने कितने रिश्ते बह

रफ़ी साहब से हमने सुने फिल्म तकदीर से ये सुंदर सा गीत हमको सुना दे कि आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर, अब वो तकदीर तो वो लिखते हैं पर बनाते हैं हम। जैसे हम कार्य करते हैं इस जीवन में वैसे ही हम अपना तकदीर बनाते हैं। फॉर द चीमन पेन दूत फॉर द चीमन पेन दूत पकिया फैल पपीर एंड फॉर क्रूकल ये हेड फॉर द चीमन पेन दूत पकिया फैल पपीर एंड फॉर क्रूकल ये हेड खदान goed, probeer het vel nu glad te strijken. Dat is niet mogelijk, hè? Het hart van mensen is als dit vel papier. Als je het eenmaal gekwetst hebt, is het onwaarschijnlijk dat het weer zo wordt als daarvoor. Daarom, voordat je iemand slecht behandelt, denk goed na. Voordat je iemand slecht behandelt, denk goed na over wat je doet.

प्यार से सुनाई हमको किशोरदा जी ने कि ये जीवन है। हाँ सुनने वालों, ये ही तो है जीवन। कुछ अच्छे बातें हैं, ये है कि माना दुनिया बुरी है, माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बन सकते हैं, हमें किसने रोका है। और ये एक बात भी है कि चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, साहेब चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, एक तारे के टूट जाने से आसमान खाली नहीं होता।

द नाइटिंगेल लता जी के आवाज में। जीवन की यही है कहानी। ज्ञान ज्ञान ज्ञान यानी कि कैनस, ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन के तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करती है। और एक बात और है ये कि कलयुग है, कलयुग है साहेब, यहाँ झूठ का स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है।

से सुना दी हमको किशोरदा जी ने कि हो रही रुक जाना नहीं तू कभी हार के। मैं भी कहती हूँ सुनने वालों की रुक जाना नहीं तू कभी हार के। दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की ज़रूरत नहीं, खुद अच्छे रहो दूसरों को अपने आप दिख जाएगी। रुक जाना नहीं तू कभी हार के ये गीत से मुझे ये दो शब्द भी याद आ जाता है कि चलने का नाम है जिंदगी और रुकने का नाम है मौत। जैसे बहता पानी में सूरत ऑफ अनवेशक रहते हैं और उसको जो हम इस्तेमाल करें भी तो हमारे जीवन के भी उन्नति, हमारे शरीर के भी उन्नति मिलते हैं, और जो तालाब में रहते हैं जो पानी जो नहीं बहते उसमें तो गंदगी आ जाता है। इसलिए ये दो चीज़ मुझे जीवन में बहुत अच्छा लगा और ये मेरी जीवन की एक सहारा बनी। जो आज मैं हूँ तो अच्छा लगता है, सोचती हूँ कहाँ यहाँ से आपको हम भी बतलाते हैं कि चलने का नाम है ज़िंदगी और रुकने का नाम मौत है। तो रुकना नहीं है बल्कि हमें आगे बढ़ना है।

दोस्तों, आज भी हमें कुछ अच्छा करने का एक मौका मिलता है। जैसे एक अच्छी बात, थोड़ी मदद, थोड़ा सब्र, ये वो काम है मित्रों जो दुनिया को और खूबसूरत बनाते हैं। तो आज बाहर निकलें और किसी की मुस्कान की वजह बने मित्रों, किसी की मुस्कान की वजह बने। बेस्ट मैंसन ओक फंदा क्रैक वो वेरन कांस ओम इट्स खुद्स तो दून जो अस एन फ्रेंडलिक वर्ड एन बीच हेल्प एन बीच गेदुल्द दिट ज़ैन द दादन दी द वेरल्ड मूयर माकन। बेस्ट मैंसन लातन वो एरोप उइट गान एन फंदाग de reden zijn voor iemands glimlach. Oh, de reden zijn voor iemands glimlach. Beste mensen, zal dat niet mooi zijn?

साथियों, अगर भगवान हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं तो वो हमारा विश्वास मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। मित्रों, अगर वो देर करते हैं तो वो हमारा सब्र, वो हमारा खदेल बढ़ाते हैं, और अगर वो जवाब नहीं देते तो वो जानते हैं कि हम उसे संभाल सकते हैं, संभाल सकते हैं। मित्रों, als God ons gebed verhoort, beste mensen, versterkt hij ons geloof. Als hij het uitstelt, versterkt hij ons geduld. En als hij niet antwoordt, weet hij dat wij het aankunnen.

भाई बहनों, नदी जब किनारा छोड़ देती है, ध्यान करना, नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है, मित्रों तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में, बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में मित्रों, तो जिंदगी की रास्तों को मोड़ देती हैं, जीवन ही अलग हो जाती है मित्रों। इसलिए किसी के दिल को दुखाओ मत, ना ठीक बात है। बेस्ट मैंसन वनीर एन रिवीर बैतन जैन उफर स्त्री कान है जेल्फ द रोत्सन इन द रिवीर फॉर ब्रेजलन सेल्फ एन क्लेन क्वेस्टी कान अस देस ओन बहांदर ब्लेफ De loop van een leven veranderen. Daarom moet men niet kwaadwillig zijn. Blijf altijd lief. Blijf altijd aardig tegenover mensen. Dat is het beste wat je kan doen, lieve mensen.

हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों, दोस्तों, परमात्मा कहते हैं, भगवान बोलत है कि जब जिंदगी मुश्किल हो जाए प्रार्थना करो, जब जिंदगी शानदार हो प्रार्थना करो, और जब जिंदगी में घबराहट हो तो प्रार्थना करो। भगवान बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा राह प्रदर्शक यानी गाइड एक हिस्स बनकर रहूंगा। ये भगवान बोलते हैं मित्रों, बेस्ट मैनसन खुद जेख्त अल्स हैट लेवन मुइलक वर्ड बेत अल्स हैट लेवन गवेल्दिग इस बेत अल्स हैट लेवन फरवारंद इस बेत एन ik zal altijd je gids zijn. Dat zegt de Heer, beste mensen. Hoe mooi is dit niet, hè? Maar wij moeten wel vertrouwen in hebben.

साथियों, फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है। ध्यान कीजिए, सिर्फ हवा की दिशाएं में फैलती हैं, लेकिन एक इंसान की अच्छाई, आपकी अच्छाई या बुराई सभी दिशाओं में फैलती है। मित्रों, सभी दिशाओं में। तो आप जानिए कि क्या कर्म कर रहे हैं, कौन सी कर्म कर रहे हैं। मित्रों, द ह्यूर फन ब्लूमन फॉर स्प्रेड जिख स्लेक्स इन द रिक्टिंग फन द विंड बेस्ट मैंसन इन द रिक्टिंग फन द विंड मार द खुद है फन एन मैंस verspreidt zich in alle richtingen. Dus wat doe je goed, wat doe je niet goed? Dat noemen wij de karma. Die verspreidt zich in alle richtingen, beste mensen. Ik shant man, sabhi chunautiyon ke khilaaf hamara antim hathiyar hai. Isiliye hamesha शांत और तनाव मुक्त रहें, बेस्ट मेंशन। अनकल्म खेस्ट इस ओंस अल्टीम वापन, इस ओंस अल्टीम वापन टेकन अल अल ऐ दाखिंगन। ब्लेव दिस अल्टेड कल्म एन ओंस्पानन, फॉराल ओंस्पानन। दोस्तों, उन लोगों पर शब्दों को बर्बाद ना करें जो आपकी चुप्पी के लायक हैं, आपकी चुप्पी के लायक हैं। कभी कभी सबसे शक्तिशाली बात कुछ भी ना कहना होता है, चुप रहो। लीफ मैंसन फर्स्पिल खेन वोर्दन अन मैंसन दी ओ स्टिल्त फर्दीनन। सोम इस क्रखतस्त ओम हेलमाल niets helemaal niets zeggen, beste mensen. Denk hier eens over na.

हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों, जब आप अपना दिन शुरू करते हैं तो अपनी जेब में तीन शब्द रखें, तीन शब्द रखें, प्रयास, सत्य और भरोसा। प्रयास बेहतर भविष्य के लिए, सत्य आपके काम में, भरोसा ईश्वर में। मित्रों, सत्य आपके काम में और भरोसा ईश्वर में, फिर सफलता आपके चरणों में होगी। बेस्ट मैनसन अल्स ये दाख बखिन हाउ दन द्री वोर्दन इन ये जाक प्रोबेर वार है एन फरत्रावन प्रोबेर फॉर बेहतर टुकोम्स्त वार है इन ये वैरक एन फरत्राव ऑफ ये खोट दन लिख्त सुक्सेस अन ये फुटन बेस्ट मैंसन अन ये फुटन। साथियों, हंसना जरूरी है सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हमें खुश करती है, बल्कि इसके असल स्वास्थ्य खजौंत हैत के लिए, मित्रों खजौंत हैत के लिए भी है, क्योंकि यह आपके शरीर और आत्मा को ठीक करती है। हंसना जरूर हंसना, और तरैतर वाला हंसना नहीं, दिल खोल के प्रेम से हंसो मित्रों। लाखन इस बलांग रे बेस्ट मैंसन नित अलेन ओमदात हैत ओंस खुलक मार ओग ओमदात हैत दात वर्कलक खजोंत हैत फोर देलन हेफ्ट हैत खनीस्त लेखाम एन जिल हैत खनीस्त लेखाम एन जिल बेस्ट मैंसन ओंथाओ वाते खजेक्ट हैत।

जय जय राम, जय जय राम। आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। ये खूबसूरत दिवस में भजन माला कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। आप इसे जरूर से सुने, अपन जीवन में प्रयोग करें और जरूर से इसमें से आप ऊर्जा प्राप्त

0: आयुष्मान, आओ हनुमान।
1: महात्मन, आप मुझे पहचानते हैं?
0: हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, ये भी जानते हैं

मुझे क्षमा करे भगवान, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि मैं रात ही रात में बूटी लेकर पहुंच जाऊं। मैं तो एक राम भक्त की कुटिया देखकर केवल प्यास बुझाने उतरा था।

राम का मंदिर है, यहाँ उसे विराजे रखना। मन राम का मंदिर है, यहाँ पर उसे विराजे रखना। जिसके सीने में श्री राम है, जिनके चरणों में सब धाम है, जिनके लिए सब कुछ दान है, जिनकी मंत्र वो तो

रामायण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। राम भक्त ले चला है राम भक्त भरत जी और ले चला है राम के निशानी उनका पादुका जो वन में जाकर और भरत जी राम को वापस लाने को गए थे पर उनका पादुका लेकर और अयोध्या लौटे थे। राम जी के सहारे राम जी की सवारी निकली है सच धज के राम जी की सवारी निकली है सच धज के राम जी की लीला है बेहद न्यारी न्यारी श्री राम का नाम है सदा सुखदायिनी और हितकारी। आप सभी को एक शुभ दिवस पेश किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से भजन माला कार्यक्रम।

0: हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें दिलत।
1: सुनो रे राम कहानी आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है ये सुंदर सा भजन प्रोग्राम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। भगवान राम विष्णु जी

यही रात अंतिम और यही रात है भारी। हम अगर जान जा कि हमारा आखिरी सांस हमें लेना है तो कितना भारी पड़ जाएगा। अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम वो राम है, उनके चरणों में हमारा प्रणाम है।

सुंदर अति सुंदर अति सुंदर, हमने सुने राम सेतु बंधन की, राम नाम से तैरने लगते हैं भी पत्थर। तो सोचो हम इंसान हैं, हम अगर राम का नाम ले तो हम कैसे ना तैरते रहेंगे। ये कठिन कलिकाल पापों का खजाना है, ये कठिन कालिकाल पापों का खजाना है। ज्यादा तौर पर इसमें ना धर्म है ना ज्ञान है और ना योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी की ही भजते हैं वो ही चतुर है। श्री राम जी की कृपा से आपका हर पल शुभ सुंदर सुखदायक एवं खुशियों से

0: सुने कि जिन पर कृपा श्री राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। देसा मूल्य कलयुग इस अंशत कामर फान सोंद देसा मूल्य कलयुग इस अंशत कामर फान सोंदन सोंदर धर्म सोंदर कैनस सोंदर योग सोंदर मंत्रस इन दिस वर्ल्ड सैन सै दी अल अंदर वर्ट्राउन अपगेवन en alleen het Ram, alleen het Ram aanbidden, de wijzen. Het is wel het tijdperk van Kaljuk, hoe men dat zegt, maar het is niet volledig Kaljuk, want er wordt ook nog heel veel gebeden.
1: Hamare sanskar, sada rahe hamare sanskar.
0: अवश्य सदा रहे हमारा संस्कार जो हमें हमारा माता पिता हमें दी है वही संस्कार है।

अवध की ओर सजने, अवध यानी कि अयोध्या। अयोध्या भी एक शहर है भारत में और हम लोग भी तीर्थ करने जाते हैं अयोध्या में। और अगर हम समझदारी से काम करें तो समझदारी ये है कि हमारा शरीर जो है ना, इसे हम अयोध्या बना ले। और इस अयोध्या जो है, ये शरीर हम अयोध्या बना ले और यहीं से हम राम नाम का जप करते हुए इसे अंदर लाए, तो हमें अयोध्या जाना तो आवश्यकता तो नहीं होगा। तो घर बैठे हम अपना शरीर को, अपना तन मन हम अयोध्या बना ले और राम नाम जपे, घर बैठे ही हमारा उद्धार अवश्य अवश्य अवश्य हो जाएगा। आलिंदतिमिद एंड स्वकन लातन आलस अन हेत लोट ओवर मार द स्टर्क एंड सेल्फर्सेकर्दन द स्टर्क एंड सेल्फर्सेकर्दन मेंशन फर्ट्रोवन नोइट ऑफ हेत लोट ऑफ द बस्टेमिंग। ze gaan gewoon daarvoor. Jesse Hanuman ji gaye the jeevan bhuti lane ke liye, to usko raste mein kitne jane roke par wo apne laksh ke daur chale gaye. And as u ook, as wij allemaal vertrouwen, als we allemaal vertrouwen hebben in ons bestemming, dan kunnen we gewoon doorgaan en doorgaan.

आकाशवाणी रेडियो फाहुन के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, दोस्तों, भाई बहनों, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरे नमस्कार।

से हम गोटा लगाएंगे भजन प्रोग्राम में। आरंभ करते हनुमान चालीसा के साथ, श्रवण करिए।

भी सत सत प्रणाम है आप सभी को, राम राम है। यहाँ से स्वीकार कीजिएगा और आपको लेकर चलते हैं ये खूबसूरत दिवस पे भजन माला कार्यक्रम। यहाँ से आपके लिए पेश हो रहा है आपी का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से। चलते हैं, सुनते हैं श्री सरस्वती माता के नमन।

सरस्वती माता की बहुत बहुत नमन होवे। सत सत सत सत नमन है, सत सत नमन है आपको माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता के सागर से हमें तार दे माँ, अज्ञानता के सागर से हमें तार दे माँ, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। माँ सरस्वती उजालों से हमारा संसार

की दाता माँ सरस्वती ही है, विद्या की दाता, जिसको चाहे उसको बना दे ज्ञाता। माँ के आगे ही शीश झुकाते हैं, माँ के आगे ही सभी झुकते हैं, झुकाते हैं शीश। हे माँ शारदा, दे दे अपना आशीर्वाद। Mother Saraswati is the gangster von Kenneth. Mother Saraswati is the gangster von Kenneth. Zij kan iedereen die zij wenst tot een kenner maken. Zij kan iedereen die zij wenst tot een kenner maken. Iedereen buigt het hoofd voor de moeder. O moeder Sharda, o moeder Sharda, schenkt ons uw zegeningen. De hartelijke wensen voor zo'n mooie dag en alle luisteraars.

अच्छी बात है कि सरस्वती माँ के चरणों में शीश झुकाकर और उसे नमन करें। सरस्वती माँ आपको सच सच प्रणाम है, घट कंठ में भर दे ऐसा ज्ञान, हे माँ कंठ में भर दे ऐसा ज्ञान, करे देश सेवा का काम, करे देश सेवा का काम, पढ़ लिख कर हम पाए मान, करे देश सेवा का काम और पढ़ लिख कर हम पाए मान, माँ सरस्वती की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से हमारे सारे मनोरथ, सारे शुभ मनोरथ जो है वो सिद्ध होवे। ओ मदर सरस्वती फॉर फ्यूलर फन आल फरलांगंस, ओ मदर सरस्वती फॉर फ्यूलर फन आल फरलांगंस, एक ग्रोत यू एक बखेन आन मैन ऑपलेडिंग, mogen wij in deze onderneming succes behalen. Een opleiding wil niet zeggen wat u op school doet, nee, een dag beginnen die is al ook een opleiding. En een dag goed te kunnen doorgaan, moeten we ook succes behalen. Heel veel succes op deze mooie dag. Opleidingen wat u daadwerkelijk gaat doen op deze mooie dag, wensen wij vanuit Faun Hindustani Radio heel veel succes. Een vreugdevolle dag voor ons allemaal.

भरी आशीर्वाद, कितनी प्यार भरी हम प्रार्थना करते हैं कि रोम रोम रोमांच हो जाता है। तो सोचो आप इतना मन भाव लगाकर और प्रार्थना करोगे माँ सरस्वती से, तो अवश्य माँ सरस्वती हमारा विनती सुनेगी। माँ तो माँ है ना, जिस रूप में भी हो माँ तो माँ है, कोमल से है।

में आप माँ सरस्वती आप पास हो। यू वर्थ फॉर एयर दोर हेयर ब्रह्मा, माँ सरस्वती यू वर्थ फॉर हेयर दोर फॉर एयर दोर हेयर ब्रह्मा हेयर विष्णु हेयर शंकर एंड आंद्रा खोदन। ओ मदर सरस्वती, ओ मदर सरस्वती फॉर फ्यूलर फन आल फॉर लंग्स एक ग्रोथ यू।

उपासना मेहता जी के आवाज में हम सुने कि माँ शारदे तुम्हें आना होगा, और ये फिल्मी तर्जनी पे गाए गई ये सुंदर सा भजन है। फिल्मी तर्जनी यानी कि झिलमिल सितारों का, उसी धुन पे ये सुंदर सा भजन गाए गई है। शारदे आपको आना होगा, हे सबकी कामना पूर्ण करने वाली, हे सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता सरस्वती, आपको नमस्कार करता हूँ। मैं अपनी विद्या

विद्या आरंभ करना चाहती हूँ और इसमें आपका आशीर्वाद जरूर से होवे। मुझे इस कार्य में सिद्धि मिले माँ सरस्वती। हे वाणी वरदायिनी करिए हृदय निवास, हे वाणी वरदायिनी करिए हृदय निवास। नवल पूजन की कामना, नवल पूजन की कामना यही सृजन की आस है। ओ मदर सरस्वती फरफ्यूलर फन आल फरलांगंस एक खुरुत यू वह

0: जरूर से बोलो ओम नमः शिवाय। चल रहा हूँ धूप में तो महाकाल तेरी छाया है, शरण है तेरी सच्ची, बाकी सब तो मोह माया है। शिवा इस पीस, शिवा शांति है, शिवा सुंदर है, शिवा इस पीस, शिवा इस ब्यूटीफुल।
1: नन्हा सा मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। डिवोटी सिंग्स टू द लॉर्ड, ओ लॉर्ड आई एम अ चाइल्ड, आई एम पुअर, आई एम हेल्पलेस, एंड यू ऑन द अदर हैंड आर ह्यूज एंड जाइजेंटिक इन फॉर्म, एंड आई हैव कम टू यू विद वन रिक्वेस्ट एट हार्ट, ओ लॉर्ड प्लीज प्रोटेक्ट मी। I am confident that you will do so, though I may be sinful, though my life may be filled with the blemishes of the world, but I am yet your child. I have come to your doors today, hey Prabhu, with tears in my eyes. Only your name, only your darshan, only your blessings will relieve all the pains and sufferings of my life. Only you, O Lord, will enable me to attain that state of eternal bliss.

0: Het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is Vahon Hindustani Radio.
2: स्वीकार है आपको यहाँ पर एक बार फिर हार्दिक से मैं अभिनंदन करती हूँ. एक बार फिर स्वीकार कीजिए. हाँ मेरे प्यार सुनने वालों, एक बार फिर स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार. और कहती हूँ कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं. और बहुत सारे शुभकामनाएं आपके लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से पेश हो रहा है. यही आशा उम्मीद है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में होंगे. अपने को और अपना जरूर से ख्याल रखना. वंत यू बेंद बलांग रहेगा.

हाँ, मन के भीतर तो झांको मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त रहते कदर कर लो, वक्त रहते कदर कर लो, क्योंकि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता।

संगीत में हम जीवन चरित्र सुन रहे हैं कि जब तक कोई साथ हो उसकी मुस्कुराहट को महसूस कर लो, वरना एक दिन सिर्फ यादें रह जाती है और उन्हें छू नहीं सकते आप।

हाँ हम तो सुने हैं, और ये ज़रूर कहूँगी मेरे प्यारे सुनने वालों कि अक्सर सोचते हैं कल बात कर लेंगे। मैं भी अक्सर सुनती हूँ कि कल पे हम वादे छोड़ देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कल बात कर लेंगे, कल मना लेंगे, पर कभी कभी वो कल आता ही नहीं। तो जो कल करना है सो आज कर लो, एक कहावत है, जो कल करना है सो आज कर लो, और जो आज करना है तो अभी कर लो। कब ये वक्त बदलेगा हमको नहीं पता,

भगवान। भगवान जब सिखाता है, जब भगवान जब सिखाते हैं तो सबसे पहले वह बदलते हैं। भगवान जब सिखाते हैं तो सबसे पहले वक्त बदलते हैं और फिर वो शख्स जिसकी हमने कभी कदर ही नहीं की, उस दिन समझ आता है कि मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं, उससे संभालना भी होता है। इसलिए जो आज तुम्हारे साथ है उसे दिल से अपना लो। एक छोटा सा प्यार, एक आई एम प्राउड ऑफ यू या एक थैंक यू भी किसी के दिल को सुकून दे सकता है।

वक्त रहते कदर कर लो मेरे प्यारे सुनने वालों कि वक्त रहते कदर कर लो वरना भगवान वक्त भी छीन ले लेते हैं। और वो शख्स भी जिनकी कमी फिर पूरी जिंदगी महसूस होती है। तो वक्त रहते कदर कर लिया करो।

0: हमने यहाँ से श्रवण कर ले कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, मौसम हसीन है जरूर से उड़ते फिरते रहना क्योंकि उड़ते फिरते तो हम आगे ही बढ़ेंगे। एक मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनने वालों, 9 बजने में बुधवार के सुबह की कार्यक्रम यहाँ से विज्ञापन हम श्रवण कर ले।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor Anne de Ram zoet de wakalet kakaam karta.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: हर काम के लिए, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक. अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47. मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 07 3652 47.
2: जी मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको फिर से यहाँ से एक बार हार्दिक से स्वागत मैं कहती हूँ. और इंतजार है हर बुधवार की तरह श्री पंडित राजकुमार महातेम जी का.

0: मेरे प्यारे सुनने वालों, जिनका इंतज़ार था वो आ गया है। तो यहाँ से हम बहुत प्रेम और प्यार के साथ श्री पंडित राजकुमार महात्म जी को हार्दिक से स्वागत कहती हूँ। और यहाँ से पंडित जी के मुखारविंद से हम श्रवण करेंगे सुंदर सा कथा। पंडित जी, आप आकाश में हो।
1: धन्यवाद जी।

परम ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायणो परो देव सर्वनारायण सदाम ओम नीलम भुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपितवाम भागम पाणु महासायिक चारु चापम नमामि राम रघुवंश नाथम। हरि ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः स्वाहाय च सूत्राय च मुक्षुक स्वरूप ईश्वर को नमस्कार। संसार सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। कल्याण करने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार। और अत्यंत कल्याण स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले जहां तक हमारा आवाज पहुंचे आप सभी को जागृत हो मेरा प्रणाम नमस्कार। ये राम राम सीताराम पहुंचे, खास करके रेडियो फान को जो मालिक हैं मैं उनके भूरी भूरी धन्यवाद दे रहा हूं, जो समय प्रदान किया धर प्रचार करने के लिए। हम आप अभी कितान ले रहे थे जहां प्रसन्नता जी ने रेडियो फाउन को माध्यम से हमें आप कितने अच्छे ढंग सेवा कर रहे थे उनको मैं भूरी भी धन्यवाद दे रहा हूँ। तो आकाशवाणी के सुनने वाले हर बुध की तरह आज भी भगवान कंपा कृपा हुआ ताकि आप तक कुछ हम धर्म संदेश पहुंचा सकें। तो हम धर्म क्या है इस पे थोड़ा ध्यान करना है। धर्म स्थापनाय संभवामि युगे युगे, फिर से बात में दोहरा रहा आकाशवाणी के सुनने वाले, धर्म स्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। कितने ही लोग भक्ति का थोड़ा नाटक करते हैं या बात आप जानते हैं और पुस्तक पढ़कर ज्ञान की बातें भी करते हैं परंतु धर्म पालते नहीं। भक्ति यदि धर्म विरुद्ध हो तो ज्ञान यदि धर्म अनुकूल ना हो तो ऐसा ज्ञान भक्ति सफल नहीं होती है। ज्ञान भक्ति धर्म अनुकूल हो तो ही वो सफल है। कितने ही लोग ऐसे समझते हैं कि हम तो भक्ति कर लेते हैं, अब हम धर्म ना भी पाले तो कोई बाधा नहीं है, भगवान हमको क्षमा कर देगा। भगवान ऐसे क्षमा किसी को नहीं देते। भगवान का धर्म अतिशय प्रिय है। अरे धर्म के लिए ही तो प्रभु ने भी अत्यंत दुख सहन किया है। दुख सहन करके भी स्वधर्म को पालन करना चाहे आकाशवाणी के सुनने वाले। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम आप जानते हैं श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो धर्म को मर्यादा को भंग करते हैं परमात्मा को वे तनिक भी सुहाता नहीं। आप जानते हैं गाथा आकाशवाणी के सुना लो, जटाओं ने राम जी के बहुत सुंदर सूती की, जटाओं को प्रभु ने दिव्य गति दी, जटाओं का श्री रामचंद्र जी ने उद्धार किया है। शिवजी बोले ना शंकर बाबा जो है शिवजी महाराज पार्वती जी को कथा सुनाते, कितने सुंदर बात है। रामायण क्या सिखाते, एक पति अपनी पत्नी के अपना दंगनी के कितने प्यार प्रेम लगाव गाथा सुनाते हैं ना। शिव जी महाराज पार्वती जी को कथा सुनाते हैं, देवी क्या बोलती, देव कितने आदर करना चाहिए। हमारे घर में क्या बोलते हैं, राधे श्याम सीताराम लक्ष्मी नारायण, पहले माँ के नाम लेते तो पिता के। मनु महाराज अपने धर्म शास्त्र में लिखा आकाशवाणी के सुनने वालों, जो स्थान पर नारी के आदर होते हैं ना वो स्थान पर देवी देवता प्रसन्न पूर्वक निवास करें।
बात फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इस पे ध्यान करना। जो स्थान पर नारी के आदर होते हैं वो स्थान पर देवी देवता प्रसन्न पूर्वक निवास करते हैं। और श्री जी भोलेनाथ शंकर बाबा क्या कहते हैं, कथा सुनाते हैं, क्या बोलते है? देवी जटाओ जैसा हीन पक्षी राम जी के चरणों में कैसा प्रेम रखता है, जो परमात्मा के साथ प्रेम ना करे तो उसका बहुत पतन होता है। ऐसे जीव बहुत अभागा है, प्रभु के साथ प्रेम करे तो जीव का बहुत कल्याण होता है। हीन पक्षी जटाओं को भी प्रभु के हीन पक्षी जटाओं को भी प्रभु ने मुक्ति दे दी। योगी जिस गति को दृष्टि में रखकर योग ध्यान तप करते हैं वही गति परमात्मा ने जटाओं को दी। आकाशवाणी के सुनने वालों, प्रेम करता है उसकी बुद्धि बिगड़ती, इस पे ख्याल करना। कौन प्रेम? प्रेम करता है उसकी बुद्धि बिगड़ती है, उसका जीवन बिगड़ता है। शरीर के साथ रमन करने में जो सुख मानता है, हम आप मानते शरीर के सुख के लिए ना, तो वो पाप करता है। संसार के जड़ पदार्थ के साथ जो रमता है वो पाप करता है। ईश्वर के साथ जो प्रेम करता है उसके हाथों में पाप नहीं होता। प्रभु ने जीव के लिए दो प्रकार के आनंद का सृजन किया है, विष्णु नंदन और भज नंदन। दोनों से तुम किसको पसंद करोगे? जिसके भजन नंदन मिला है, भक्ति का आनंद मिला है, और उसके विष्णु नंदन अच्छा नहीं लगता। विष्णु नंदन क्षणिक सुख देता है परंतु परिणाम में दुख देता है। कहा गया है काशवाणी के सुनल, विष्णु नंदन क्षणिक सुख देता है परंतु परिणाम में दुख देता है। भजनंदन जो भगवान के प्रार्थना करते, भजन कीर्तन करते आकाशवाणी के सुनने वाले ना, तो भजनंदन प्रारंभ में थोड़ा कष्ट संध्या रहता है परंतु परिणाम में सुख देता है। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं मिलता। नेम से भक्ति करें तो उसको धीरे धीरे आनंद मिलता है। ये आनंद हो सच्चा आनंद है, आनंद वो होना चाहिए। कोई कहे पंडित जी मैंने मस्त में खूब नशा बनाया, आकाशवाणी के सुलह में वो नशा बनाना है कि भगवान के भजन कीर्तन जो हम सुन लेना तो एकदम हम जा करके एकदम मंगन हो जाए, वो नशा कभी नहीं टूटते हैं। तो यहाँ कहा गया आकाशवाणी के सुलह, ये आनंद हो सच्चा आनंद है परंतु क्षणिक विषनंद भोगने के लिए मनुष्य समस्त दिवस माथे पर चिंता और रख कर फिरता है। अति दुख सहन करके वो थोड़ा सुख भोगता है परंतु संसार सुख के लिए मनुष्य जितना दुख सहन करता है उतना दुख परमात्मा के लिए सहन करें तो परमात्मा उसके उदार प्रसन्न होते हैं। आकाशवाणी के सुनो, प्रभु ने जटाओं को दिव्य सदगति दिया है ना। कौन? जटाओं को उदार करके श्री राम लक्ष्मण सीता जी को खोजते हुए चले रास्ते में। कहा गया आकाशवाणी के सुनो, उस पे हम बहुत ज्यादा जोर ना दूं लेकिन मैं आपकी इशारा करते हैं। जटाओ जो चिड़िया में से सबसे गिरा हुआ चिड़िया है, चिड़िया में सबसे नीचे जो है, लेकिन उनके लगाव किस पर था? प्रभु राम को। यहाँ तक जिस समय कई बार गाथा मैंने आपके बीच प्रस्तुत किया था लेकिन बात आगे फिर से बात दोहरा रहा हूँ। जटाओ जो है तो जिस समय रावण ने सीता माँ को फरण कर ले जा रहे थे तो जटाओ ने देखा, जटाओ ने जा करके रावण संग्राम की लड़ाई किया। रावण ने दोनों पंख जटाओ काट देते हैं,
प्रभु राम लक्ष्मण वन में घूमते हैं, ढूंढते हैं, पेड़ से पूछते हैं, वृषराज हमारे सीते के देखे हैं तो वहां पर क्या देखते, जटाओं को। जटा कहे प्रभु देखो मेरे हालात कि रावण ने मेरे पंख दोनों काट दिया है। वहां पर जटाओं कहे प्रभु दक्षिण की ओर देकर के दक्षिण की ओर जैद कांत लेके रावण ने सीता माँ को लेके गए हैं। वहां पर जाकर गाथा बहुत बार, लेकिन हम आपके संकेत करते आकाशवाणी के सुनने वाले, प्रभु राम ने जटाओं को लेकर के अपनी गोद में लेकर के उनको धूल जो था अपने हाथों से उनके साफ करते हैं। प्रभु राम कहे जटाओं से आप जो जाओ हजार वर्ष राज्य करो। जटाओ कहे प्रभु हम सब कुछ प्राप्त कर लिए प्रभु, जो ऋषि मुनि आपके भजन कीर्तन करते हैं इतना नजदीक नहीं आ पाते प्रभु, मैं तो जटाओ चिड़िया में सबसे गिरा हुआ चिड़िया हूँ, प्रभु आप तो मेरे को अपने गोद में बैठाए प्रभु, मेरे कुछ नहीं चाहिए। तो वहां पर जा करके आकाशवाणी के सुनाले जा तो जटाओ ने अपने वहां पर ध्यान में आ कर करके अपने शरीर से उनके प्राण निकलते, यहाँ तक कि प्रभु राम ने जाकर उनके दस गात्र क्रिया कहता तो रामायण में लिखा है, जो हम आप जाकर के पिंड दान देते हैं यही क्रिया जाकर के प्रभु राम ने जटाओ के क्या कौन प्रभु राम ने। तो आकाशवाणी के सुनने वाले मैं आपके इस पे जोर दिया कि भक्ति क्या है कि चिड़िया जो सबसे गिरा हुआ चिड़िया, लेकिन प्रभु राम क्या देखते और मेंटालिटी हम लोग के आचरण देखते हैं, हम कौन भाव से प्रभु राम को भजन कीर्तन करते हैं। प्रभु राम समदर्शी हैं, सब जीवों पर दया करते हैं। तो आकाशवाणी के सुनने वाले यू वाणी द्वारा अपना पौरुषण में विराम करने जा रहा हूँ। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम।

मेरे प्यारे सुनने वालों, यहां से हमने हर बुधवार की तरह आज भी श्री पंडित राजकुमार महात्म जी के मुखारविंद से हमने श्रवण की है सुंदर सा कथा। इसे जरूर से हम अपने जीवन में उतारें और लाभ प्राप्त करें। आपके ओर से, मेरी ओर से, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के टीम के ओर से श्री पंडित राजकुमार महात्म जी को दिल से धन्यवाद किया जाता है और एक शुभ दिन। यहाँ से एक सुंदर सा गीत आप सभी के लिए।

0: एस पे सुब्रमण्यम जी के आवाज में इसका नाम है जीवन धारा जिसका कोई नहीं किनारा।
1: समय का उड़ता पंच
0: इस बार सुनेंगे नितिन मुकेश जी के आवाज में। नितिन मुकेश जो

आपने तो संगीत में खूब अच्छा संदेश तो हमने यहाँ से सुन ली कि समय बड़ा बलवान। फिल्म का नाम घर परिवार, फिल्म घर परिवार से ये गीत निकाल दिया गया है आपके वास्ते। और यहाँ से मिलकर हम और आप और हम मिलके यहाँ से लुफ्त उठाए हैं।

चीन फिल्म का नाम है और मोहम्मद अजीज के आवाज में ये गीत। गीत जो हम सुने और उससे कुछ सबक सीखे। मोक्ष मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? मोक्ष ये है कि ना किसी को पाने की चाह और ना किसी को खोने का डर।

0: स्वागतम। फिल्म का नाम हम देख ले तो हकीकत, फिल्म का नाम हकीकत लता जी की आवाज में।
1: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 2 2 7 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burger.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: हम इस बार सुनेंगे हरि सिंह बालक जी की आवाज़ में

0: उस्ताद हरि शिव बालक जी के आवाज़ में ये सुंदर सा माता पिता के भजन हमने, भजन या गाना आप जैसे कह सकते हो, हमने यहाँ पे श्रवण की है। और इसके साथ में ये ज़रूर कहना चाहती हूँ सुनने वालों, वो ये है कि जैसे मोहब्बत तुम अपने माँ बाप से करोगे, जैसे जैसे जैसी मोहब्बत तुम अपने माँ बाप से करोगे, वैसे ही मोहब्बत तुम्हारी औलाद तुमसे करेंगे। यही लेन है, यही देन है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, बस समझ समझ की फ़र्क है। और इस बार सुनने वालों वही स्टोरी लाल बहादुर और शीलावती के।
1: जुआ वृद्ध रुबाल

साढ़े दस बजे के टेम था, सबसे नाता तोड़ के माता के घर से चल पड़ा। जा पहुंचा यार के घर, सुख से रजनी कट गई, होते ही भिनसार ला।

सरोजनी कट गई, अब सुनो सुबह के हाल। चारों भाई शिलावती के पहुंचे जस अगिया बैताल। हाथ पकड़ के निज बहनी को अपने घर को गए लिवाए। लाल बहादुर

सुभर के पेउड़ी कापी कोई रिधा भात ना खाए। खबर पहुंच गए पुलिस थाने में, कुछ पुलिस को संग लिवाए। जंगल झाड़ी खोजन लागे लाल बहादुर गया बिलाए। हुआ खोजत हैरान,

पास पहुंचा वहां जहां सुरिनाम के सुल्तान है। उसके हालत देख कर रोते सभी इंसान है। उसके हालत देख कर रोते सभी इंसान है। जो बना राजा का दुश्मन।

जी सुनने वालों, हमने यहाँ से श्रवण की है आज जी हरि सिंह बालक जी के आवाज़ में द ट्रू स्टोरी ऑफ लाल बहादुर एंड सिलावती। और जैसे आपको पता है सुनने वालों, तो श्री हरि सिंह बालक जी जो इनका जन्म हुआ था 26 जून 1939 में, और ये अपना शरीर को छोड़ दी है 8 मई 2017 में।

श्री बालक जी के आवास में यहाँ से हम श्रवण कर रहे सुनने वालों आप ही के लिए पेश किया जाता है। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती।

अजीब बिन राम, जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते।

उस्ताद हरी शिव बालक जी के आवाज में आप सुन रहे सुनने वालों आप ही का फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। सभी कहते हैं दुनिया बदल गई है, क्या बदला है दुनिया में, यह प्रश्न है क्या बदला है दुनिया में। मिर्ची ने अपना तीखापन नहीं बदला, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पंथों ने अपना हरा रंग नहीं बदला, पंथों यानी कि पत्ता अपना हरा रंग नहीं बदला, बदला है तो इंसान, बदला है तो इंसान ने अपनी इंसानियत, जी हाँ बदला है तो इंसान ने अपना इंसानियत, और दोष देता है पूरी दुनिया को।

शाबाश शाबाश शाबाश। यहाँ से आपने सुने सुने वालों हरी शिव बालक जी की आवाज़ में ये सुंदर सुंदर गीत जो आपके लिए पेश किया गया है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से लत नित्तु दत आंद्रन य बहान सो आ सैवेलन लत नित्तु दत आंद्रन य बहान सो आ सैवेलन एंकल उत आंग्स ओम हेन त फलीसन वंत उत एंडलक Want uiteindelijk riskeer je, niet alleen hen te verliezen, maar ook je glimlach, je straling, je geluk en het belangrijkste van alles, jezelf. Kies voor respect, ook als het betekent loslaten.

जय मात पिता, जय मात पिता। यहाँ से हमने श्रवण की है श्री हरि श्री बालक जी के आवास में, ढोल पे था भयो दिहाल।

भाग्य के बात है जीवन मिलना, भाग्य के बात है मृत्यु होना, समय की बात है पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, ये तो बस कर्मों की बात है।

राम प्रसाद राम खिलावन, जिसे हमने यहाँ से श्रवण की है, शिक्षा दे रही है हमको। बीता हुआ लम्हा, बीता हुआ हर लम्हा जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका, एक अच्छा मौका दे रही है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका

0: मैं हूँ ये नाथ जो रुहान कहू दीना नाथ वही हाथ मेरे हाथ कहिबे कुबारी है।
1: उस्ताद सत्यानंद रेखा जी की आवाज में।

जय हो जय हो जय हो। उस्ताद सत्यानंद रेखा, महेश रेखा, महेश रेखा जो ढोलक पे जो अपना कमाल सुनाए, और ढंडाल पे देव पर्वत रेखा।

ए फिक्र नहीं, बस आज का सुकून चाहिए। फौर रेडियो से आप जुड़े हैं, यहाँ से आपके लिए अपने ही देश के कलाकार को, यहाँ से आपके लिए उन्हीं के गाए हुए गीत आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ।

आओ ना कन्हैया रे, तेई सनातन से यहाँ आपके लिए जो चला दिया गया है तारे राधिका रे। सुने वालों, यहाँ आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से आप जुड़े हैं। कहते हैं कि जीवन में कभी किसी का भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वो कब किस रूप में लौट कर आएगा ये बस ईश्वर ही जानता है।

बड़े बड़े उस्ताद जो अपना ये सुंदर सुंदर भजन हमारे लिए छोड़ गए हैं और यहाँ से हम आपके लिए चला रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। और ये मिलने सुदामा को आई है इशाक यानकरन जी की आवाज़ में। मौन, मौन यानी कि चुप, मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार है। मौन से यहाँ कई मुसीबतों का पास आने से रोका जा सकता है। चुप रहने से यहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है। तो मुस्कान, जी हाँ, मुस्कान से कई मुश्किलों को हल निकाला जा सकता है।

यो ताल हम या सुने ये ठुमड़ी ताल में था, और हमको जो सुना दी है हेनरी तुलुम दीन दयाल जी, और ये उस्ताद त्रिनिदाद के रहने वाला है। ये ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन कर्म ऐसा होना चाहिए, कर्म ऐसा होना चाहिए कि इंसान जहाँ जाए मंदिर वहाँ बन जाए।

क्या खूब फरमा दी है वे एर छारू जी ने कि लाज रखो मोरे अवध बिहारी। गीता का सार, गीता सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हैं, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहाँ से लिया, हमने जो लिया यहाँ से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो आज तुम्हारा है ना, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन, परिवर्तन संसार का, परिवर्तन संसार का नियम है।

ये मोहित मंगरू जी खुद कहा कि आप उनको आवाज़ सुनो कि वो क्या कह गया है अपने ही संगीत में, अपने ही वाणी में। धर्म चाहे जो भी हो मेरे प्यारे सुनने वालों, धर्म चाहे जो भी हो, अच्छा इंसान तो बनना ज़रूरी है।

उस्ताद हरि सी बालक और ढोल के कमाल तो आपने सुने, ये सुंदर सा रेला भी जो सोनी हीरा जी ने सुना दी है। कृष्णा जी की वाणी, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आज आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। और आज जो आपका भाग्य है वो आपके पिछले किया गया कर्मों का फल है। ये श्री कृष्ण जी के वाणी है आपके लिए। लोकल गीत जो चला दिए है सुनने वालों, आपको पसंद आए है, आपने जो इतला की है, हम आपको दिल से धन्यवाद कह रहे हैं।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहुन की सुनने वालों को हमारा एक बार फिर से राम राम, नमस्कार, प्यार भरी राम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों हम एक ही दम बढ़ते हैं अपना समाचार की ओर और हमारे नानी नाना मौसी मौसा जी आजा काका काकी सबके यहां से जॉनी के यानी कि प्यार अब तक पहुंचे हम चलते भैया एक बार ना 14 बार फिर 3 केरमेंसी 14 बार हमारे यारो 14 बार यहाँ पे भैया चोर लोन चोरी करी से 14 बार उस सब जहल काटी से और निकल के आवे है तो फिर अपन धंधा चोरी के शुरू कर देवे भैया सलेर नीत ऑफ दुई आदमी भैया बताए गए है 14 बार फॉर और दिल करी से सिपाही ओके फॉर डेंकिंग फॉर दीप स्टाल के बारे में इन औतन वेद फॉर्मुडलक भैया इन बा इन इन ब्राक राडिया तोर एर मेरदर अल्मोनियम अंदर दीलन आन खतरोफन और एगो फैफन दर तक यार के गो निघन फेर तक यार के तना सोचे भैया लोन अनिमर है बदराई फना इस सब के काम है चोरी करके 14 दाई इदेगो कपड़ी भैया सिपाही के पकड़ चुकल है और बतावे हैगा सिर्फ यार में हो तो इनमें फिन एक पकड़ी से और बोले एगो मार्टिन लिकलन लुथर्स किंग वेक में पकड़े रहा तेन हुक्त फन अन बद्रेव मेदर स्मा के बारे में और इस सब के सिपाही 14 बार जहल काटी जाने पकड़ी से और फिर से 15 बार पकड़ाई गई है और बताए द फरदख्तर को ने नीड फील आतर ऑफ द सेल ऑफ द वेक फॉर द स्टाद द खाउदर बे दोर सुकिंग ओकर ऑटो में तरा दिया तोर पाई से कर कोफर बाग में अल्मोनियम पाई से अंदर तेल पाई से सब इस सब चोरी कर ले रहा भैया तो बोले हैगा सेस फॉनस ऑफ से नाम इन 8 केर फरओर्डील बेद zijn eerder schuldig bevonden. De mannen zijn overgebracht naar het politiebureau Houtenke. Bakito jane hoe ape kahan thik se jahal hal mile he. Dus deze mensen leren zich nooit af mensen. तो 14 बार ई अदमियन के दुगो की सिपाही पकड़ी से और ये सब तरी मनी बन हुए निकल जा फिर शुरू कर दे ओही कमवा कर खम जाए भैया मारेंगो के ओर मारेंगो के ओर तो ये बात बोलिए जोनी मारेंगो को मारेंगो बोले ट्रैक ऑन बरे एक बार ख्रोंदन इन एंड गिव द मेंशन बौरे पे ख्रोंदन बोलेगा जितना ख्रोंदन है बोले जोन जोन ऑन बरे एक बार जे पर आदमी काम ना करे जंगल बोले सब इन ट्रैकर एनडीपी के पार्लियामेंटारियन हैगा माइकल मोरेंगो बोले है रखेरिंग के बोले हैगा अफखलोपन यार एंड बोले बीते हुए सालों में जितना पर्सील बोले सबन बाटी से जहां पे जंगल है स्वाम्पू है बोले सब इन ट्रैकर फॉर फेलेंस इन ऑन बार एक बार बोले हुआ तो ना जाई पाइए है दो दारों बरूप बोले उस सब जगह ये स्वाम्पू जंगल हूँ बर एक बार ना है और बोले चाहेगा खी बीबी के और दे से खरोड़ लीफर बोले इन ट्रैक कर ले और बोले इन रेल दार फोर खरोंदन ऐत खीफ वार में से वेल द मोगलगहित है बन ओम डायरेक्ट बोवन बोले स्वाम्पू जंगल तो आदमी के बांध डेले बाटे और बोले हुआ आदमी जाई ना पावे बोले ओके इन ट्रैक करके बोले उस सब के खात बोले दूसरा जगह दे जहाँ पे आदमी अपन घर द्वार बनाई सके है बोले इंटेंटिविजेर ऐ एक्त बोखरोंदन फॉर मेंशन वार से एक कुनन खान बोवन बोले दत लातन दत दून से मोरिंगो इंटरव्यू में बताई से और बोले है ही अन रीगल मातक में योगन तो स्प्रेकन दी एम पर्सील है बन तू कमीशन गक्रेक है फॉर फॉर फर्स्किलन लांड मीटर है बन बनादर मां नरकंस द मनोदक हेल्प क्रेकन तो एक बारे में बोले है जनता अन ई भैया बोले है ओम रेल करो के और ये पार्लियामेंटारी बोले हैगा दैसन द हजार को जगह है बोले हिलास इस हिल खरो दिल फन खरोंतन अफ
afgelopen jaren zijn uitgegeven, maar nog steeds niet ontwikkeld. Hij pleit ervoor dat er goed voor onderzoek moet worden, alvorens gronden worden uitgegeven. Hij vindt het daarom goed dat de huidige regering aan de andere kant gestart is met een woningbouwproject. Oribaan bole moringo dus tot hem aura gejate he apna samachar ki or bhaiya Guyana me ek boat budal hai hamari janta Guyana me ek boat budal hai ha fair boat trem Guyana ting talen vermist na sinken van MV Barima ke baatchit hue hai hamare janta hamare sunne walo hamare pyare pyare janta boat budal भैया गयाना में तो यहां बतावे गए हैं शनिचर और आतवार के रात के एको पशाशीर्ष फेर बहुत है एमफी बारीमा रात के बुड़ल है रेडिस वर्कर से मसाल इन खसे तरवेल तीन ताल और फारन दन नोख वर्दन फरमेश जे के लेग से बना पाई से सैटरडे मिडनाइट के क्वार्ट ओवर 3 जॉर्ज स्टोन में बोले हैगा मेट बस्टेमिंग naar Port Kaituma mee, het noordwesten van Guyana. Aan de boot bevonden zich volgens de autoriteiten 116 passagiers, 17 kamkarten, over totaal 133 admir, 11 bij je raad ke i boot boedel hai, aur bolega सब खोजे है रेडिंग्स ऑपरेशन भइल हैगा बोले जेमा 67 आदमी बोले है पर्सन लीफन एडेड वादर खरे 67 आदमी के लीफन मिल गए है अंदर वी किंदरन के भी पाई से फॉर द ओवरक ऑफ फारन वर्ड नो गसोग बोले द सुक एक्सिस टेरक से आउट ओवर गबीत फॉर मोर देन 1000 4 किलोमीटर में सबन ओके खोजे है बोट खोजे है फ्लिकटाइक खोजे हेलीकॉप्टर खोजे दैकर्स खोजे है हेल्प फॉर फिशर्स एंड पर्टिकुलर फार्टाइकन सब गैले सब के खोजे फॉल्सन गयाना के अथॉरिटीटन हुआ बोले हैगा बोले फेलक साइज मिडलन वार अंडर ऑनकेफर 52 रेडिंग्स फेस्टन ए मेरदर रेडिंग्स फ्लोटन द एक्जेक्ट ओरसाक फॉर द सिंकन ए बेनाबरेक है bekend hè? Abole hega getijd omstandigheden juist zijn van de passagierslijst en mogelijke nalatigheid. De kapitein en enkele bemanningsleden zijn aangehouden voor verhoor. Volgens de autoriteit testen de kapiteinen en de eerste machine positief op marijuana. John Botia Chalau trouwens op Gaja Pilera Bhaya heb de eerste test bij Milal. Overleden de spreker van angstige taferelen. Velen brachten uren door in het water voordat ze werden gered, terwijl familieleden wanhopig wachten op nieuws over de vermiste dierbaren. Op de Guyanese regering bolle toegewezen een diepgaande onderzoek instellen naar de ramp. Premier Mark Phillips, minister van OW, Euro is het verklaard gekregen dat iedereen die verantwoordelijk blijkt te zijn voor de nalatigheid of overtredingen ter verantwoording zal worden geroepen. Abole kapitein Lungaja Haja Pike or Chalawat Rabotia Bhaiya Ekarbare me Sarnam Jun he medelief betuig karisega Guyana ke Abole he buurland Guyana is kaps eis met passagiers en bemanningsleden aan boord mensen. Abole Ekarbare me minister Boufa buitenlandse zaken ke or handelindustrie ke bole Guyana ke ambtenaarschoot Hugdo tot ke bewisman hierbij nodige ondersteuning toegewezen. तो बड़ा दुख के बात है कि इतना जनता गयाना में पानी में बुड़ के मर गए है बहुत अफसोस के बात है मारे एक फिर जो एरक में से दी कैप्टन सो फिल में से aan boord hadden en daar gaat ze nog met marijuana rokende en hoe ze precies geel hekken. Bhaiya, zijn naam is eindexamen tijd en eindexamen uitstel hoege, bhai, uitstel hoege school me omdat vakleerkrachten na hai bhai, bara dukke baat hai, hoe hai eindexamen jo school ke hai bole tekort aan vakleerkrachten. और बोले हैगा उस सबके चाहे अष्टस्थालक जो लेस चाहे अफरोंद करे के एंड एग्जाम जो है बोले लात्र मोमेंट पे हुई और ये बात हुए है खमीस का मोंगो टापू के एन
eindexamenkandidaten nog bezig met lessen voor het vak adreskunde. De school heeft pas onlangs een leerkracht gevonden die bereid is de leerlingen te begeleiden. We hebben niet zo lang geleden een collega gehad, gevonden om de kinderen te helpen, mensen. De Jebi Socho Suriname, die is mee. Eindexamen, Junhe, Aruk Hasagheer. Omdat tekort aan vakken, leerkrachten, mensen. Oh ja, wat hij bij honderden gelovigen bij jou toen je aan het Krishna Janam Astami hei. Oude Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Je hebt een resideer kreeg. Zo aan de gelovigen.

honderd gelovige bhaiyaan bataye gaye hai hamare mausilon batawe atwar ke race versier the car ego car hai sab versier kalera shri jagannath shri baladev en श्री सुभद्रा जी door de straat van Kasaba Hollow में और बोले है रथ यात्रा रहा beter bekend als car festival where for the 11e keer in Suriname gehouden to usab khub mooi se rath yatra rath farsir karke aur Sri Jagannath ke Sri Baladev aur Sri Subhadra ji ke omadhar ke avsar yat rath yatra nikali se aur bole the deal name was left that a route jo 5 kilometer se ban gaya ein bestemming ra iskon gebou jo the internationale Society for Krishna consciousness en in de welgele mensen, hoe aan welgelegen ke hoek pe hem jane la aur us sab khai ko ek sab baante bhaiya tulun jano hai ye hai ga iskon ke hare rama hare krishna ke aur bole daar werden beelden van drie goden bole feestelijk verwelkom met gebieden van de vuurwerkshow en een bloemenhulde waarbij vanuit een heiskraat bloemen over de godheden werden uitgestrooid mensen dat is zeker heel heel mooi de eeuwenoude traditie uit India die inmiddels taal van landen dunia bhar pe hoi ge hai aur 2016 mein Suriname mein bhi hoi ge hai aur bole sab gana bhajan kare hai nache hai aur bole prasad baate hai offer kare van voedsel dat binnen in de hinduisme als gezegend wordt beschouwd uitgedeeld aan de deelnemers en omstanders sab ke sab baate hai hamari janta aur rath yatra itra samaroh ke saath mein sab nikari se ego groep sterke jonge mannen die grootste deel van de kaart vertrokken namen ook andere gelovigen om beurten plaats aan de dikke witte touw waarmee de kaart werd bewogen tataise jabar jabar jawan jawan london sab ghainche bhaiya aur utataise van ghainche se aur batawe hega het was een salke tocht Mahadev Bainat Madhurya Lili Deodas namens de organisatie aur batawe hega Volkes Bainat heeft ook het uitdelen van prasad een diepe spirituele betekenis prasad is de genade van heer het voedsel wordt eerst aan hem geofferd en wat hij terugkrijgt dat zijn de genade mensen. तो एक बारे में आप सबको बहुत बहुत बधाई है रथ यात्रा के मालूम ना है दिन आँख में कब निकलेगा लेकिन वो निकलेगा जरूर कल हमें इस कौन से कॉन्टैक्ट हुआ है और उसके बारे में कॉन्टैक्ट हुआ है वो सब जोर तोर से शुरू करेंगे यहाँ पर भी रथ यात्रा निकालने के आप लोग जानो हैं स्केप स्त्रात से रथ यात्रा निकलते हैं लेकिन वहाँ पर सब बेसक में फॉर बॉइंग मैन से आज दैट क्लार इस gaan ze dat doen. Gisteren heb ik contact gehad met de voorzitter van ISKCON. Dus dat gaat wel gebeuren. Dus dat gaat wel gebeuren in Den Haag. Toch maar de janta, hem aur aage ko apna samachar lekar chalte hai. President Simon ke Jennifer Simon 22 tarikh ke woensdag ke juli ke ufer trek hoega England jai bhaiya ha bole bari santokhi je ghumat raha bole ghume santokhi ja hai jo desh desh jata sabke bole hega bole suno par aise kare ja hai lekin Simon's bheja janta bhi okar bare mein bole hai bole jab ke kuch break na kare hai the 22 tarikh ko England ja hai bole ja hai बतियाए हुआ पे ऑन फन सिरी नाम से इकोनॉमिक मारे में जा है एंगलैंड में बतियाए भैया और बोले द वेरिक बसुक फिन प्लास ऑफ आउटनोटिंग फन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टेलिंग एंड मा डील आउट फन इंस्पानिंग फन द रेगिंग फन इंटरनेशनल पार्टनरशिपन टू फर्स्टर्कन एंड न्यू इन्वेस्टिंग मोगलकेडन टू बफोर्डरन तो अब देखो कौन सी ब्रेक करे है भैया जाए कि जिमोन एंगलैंड में ये बात है हमारी जनता सिमोन के बारे में अब देखो भाई हम जाएला इटालिया में
और इतालिये में भैया इतालिये में बड़ा हड़ताल भइल है। फिर इतालिये में एगो मरकान के सिपाही दागी से मरकान से मान बेड पुलिस ऑप्ट्रेड ऑफिस इतालिये ना दूर फन मरकान से मान बेड पुलिस ऑप्ट्रेड स्को तो ऑप्ट्रेड कैसे को मरकान के आदमी पर गे वहां पे बड़ी हड़ताल भइल है। बोले उफ लेडन फन मरकान से मान सिपाही बोले हैगा इन बदवांग वेर कहौदन एन ओम हेल्प्स मेक द मेंशन रेहते एक्टिविस्टन इन ओपोसी पार्टीन एसन ओफेल्डरन ओग सेन बतोकर द स्ट्रेट ऑफ खान एकर बारे में एगो हैगा अब्दुर रहमान फकीर टू इफेयर तक यार के और बोले पांच बरिस से इटली में रहे हैं। बोले अतवार के बोलो वाला में बोलो मर गए हैं और बोले वो वीडियो में सब धरी से गा कि दुई को सिपाही ओके कैसे जमीन पे पटकी से खुरंत वर कहो देन। बोले है रूप मेर मांस हेल्प हेल्प और बोले दैट इज नी खरूत तरवेल अखेंतन ऑफ हेम सेतन और बोले वो एम्बुलेंस में दे वर्कन। बोले तू कई के ताके है कि फकीर स्टॉप में बवी किंग। बोले बिंदन द अखेंतन सेन हेक्स एंकल्स ऑन एलकार अब बोले है का कुछ गोड़ हाथ बांध दे रहा इटालियन से मीडिया मेल्द करे है बोनस की पुलिसी हानन खबेल ओम दर फकीर से अग्रेसिव खद्रूग एन खपरकेर द ऑटो हाथ बस्कादे द अखेंट सो दन टेकन हिम अबिलांस पर्सनल हैबन खसेर द मान इज ए सिकिस क्रिसिक दौर खमाग लीडर फन रखीरिंग हैबन एन हैंडल फन पुलिसी फर्दीदर ओएम is in onderzoek staat mensen te iemand bewegen Engeland ke bare mein Italië ke bare mein sorry mensen dat is Italië ke bare mein hamari janta भाई हम जाइला ऑस्ट्रेलिया के ओर एगो औरत के भैया फिर लिंक खबर भइल है। फिरन देर तक यारख एगो औरत के फिर लिंग लड़का भइल है बेबी पाई से 28 वीक के स्वांगर रहा एन फिर दाखन एन हाथ आल फिर केंद्र नो के चार गो लड़का और रहा और चार गो फिर पाई से होइगे 8 गो भैया अलेक्सा बेंडाल एगो माई है और इस स्वांगर भइल ला बोले स्कॉट दैट बोले है फीरलिंगन बे ऊपर 15 मिलियन स्वांगरस्कापन फॉरकोमन फीरलिंग 15 मिलियन आदमी में से एगो औरत फीरलिंग खबर करे है और बतावे है दिस ऑनकोर दैट द सेल्फ द प्लासेंटा देलन द मदर एंड हर मन हादन अल किंद्रन और बोले एगो रहा 1-10 यार और दार ओल्डर्स वारन In Norofarwaar Joseph Suris natuurlijk of jaar lerka paiga baby pasgeboren meisje hebben de naam meisje hebben ja pasgeboren meisje ook een naam Emily, Harriet, Katharina en Alexa kregen. Alexa vernoemd naar begeleider Bendal die het prachtige eerbetoon vindt. De baby's blijven op de neontale intensivistair care afdeling van het ziekenhuis tot dus voldragen ze maken het. Volgens Bendal betekent hij ik er bare meer zijn kosten pijsega medische kosten pijse reizen dagelijks levensonderhoud pijsega busje pijse met 12 zitplaatsen en betekent de actie heeft al meer dan 66.000 Australische dollar dat is 41.000 zijn ook er gaat harissen in de maxima MZ is de Veldhoven is in mei ook een feeling geboren al betekent het ziekenhuis zei dat het niet eerder hebben meegemaakt mensen toen char lerken char go baby paise पास खबर हमें जना चारों मेंशे है भैया चारों बहिन है इमेला हरियत या पास खबर मेंशेस तो मेंशेस है इमेला हरियत कतरीना एंड अलेक्सा। हाँ दोस्तों तो बधाई हो यहाँ से भी कि चार चार बीवी आप लोग जानो भैया फुटबॉल वेस्ट राइट भाईल है सब कोई बहना देखी फिर हम बोली हम बताई दे और उड़ा स्पाइन से और इंग्लैंड तो ट्वीट के खेल ले रहा हूँ माँ इंग्लैंड जीत गए है मार अर्जेंटीना खेली से और वो खेली से का स्पाइन से और यहाँ पर बताए आप लोग जानो 1-0 से अर्जेंटीना हार गए है और उनसे वेरल कंप्यून
is Spanje geworden, mensen. Hier hebben we het eigen. Lionel Messi hebben ook andere Argentijnse spelers van zich laten horen na de nederlaag tegen Spanje. En in de WK-finale 1-0. Rodrigo de Paul slaat terug naar de critici en complotdenkers, terwijl Leonardo Paredes zijn ruzie met de Spanjaarden negeert, mensen. तो स्पोर्ट के बारे में छोटा मैं आपको बता दिए है, कारण कि पूरा दुनिया तो ये खेल लाइव देख चुका होगा, तो जोनी बोले अब तो के हम का बताई। तो ये सब बात है, ये सब समाचार आपको हम सुनाते हैं, हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता भैया। एक बस चौफेर क्रैक द्रिया रे, तीन बरिस के जहल पाई से एगो बस चौफेर भाई तुलन जानो एकर बारे में। ऑन तक कलेरा को मिंदर यार स्कूलीर के बारे में, एकर बारे में आप लोग के बताई देली मैं, अब पता मिलल तीन बरिस के जहल ये रमिया पाई से। और एकर बारे में मिंदर यार के दी अन सोरख वाक्साम है वास टू फॉर ड्राउट सो हैवन सो हैवन मिस ब्रेक ऑन तक द हैंडलिंग सो हैवन कंप्लीट। और बोले advocaat Chandra Algu kon er geen sprake zijn van één kind dat een zorg van een buschauffeur was toevertrouwd. Zij stelde dat de taak van een buschauffeur slecht is om scholieren veilig naar school te brengen. और ये अर्मी जाए के उन्तिक कल रहा और ये जहल पाई से यहाँ बताए गए हैं। बोले नहीं का यार स्कूलीर हीफ के स्टॉप ये बतावे दार फरकात गाफ आन दत हर क्लियन द हंद इन द ब्रूक van een 9-jarige scholier heeft gestopt, maar betoogde dat er geen sprake was van ontug. Volgens haar zou de jongen tijdens het geval hebben gelachen en had bij de buschauffeur als een vriendelijke persoon ervaren. Die heeft de jongen bij de politie verklaard. Ook zouden er volgens de verdediging nooit meer klachten zijn geweest voor in de school op omgeving, zijn volgens de advocaat ook er waren mee bollen. Bolle grenzen zijn overschreden. Oriërmi, toen ja, ik nu sta niet, ik er foto weer aan. Of ze was film, maar ik er waren mee. Daar deze, tot 10 beriske jal, Irmi. पैसे हमारे जनता। देखो एडवोकेट एसात का बोले है, बोले कोरस पॉलिसी सिरिनाम लेक स्वार खिस्तलक्सी बोले सलाम के सिपाही जो नहीं एडवोकेट बोले एसात बोले हैगा बोले हैगा बोले सर नाम के सिपाही बोले खिस्तलक मुड़ी नक्कमा है सबके ही को एसात बोले एडवोकेट में एगो एडवोकेट बोले एगो प्रोग्रामा में और बोले हैगा conclusie aan de hand van de vele schandalen die sipahi kere he, bole sterke arm de afgelopen periode verwikkeld is geraakt ki verdamping bhaiya pata na mile sipahi ke haath se verdamping paisa chal ja sona chal ja drugs chal ja quick chal ja hai aur colombian se drugs figure sipahi humne inhe ko chhod de bhag ja hai chhod ke si jahal ma se to mer da 15 sipahi pakdan hai एकर बारे में एडवोकेट बोले हैगा बोले क्वाड ने एरर हुए है मेंस बंदत क्लॉप ओक द सेटिक द सेकिक ओक नाम ने फोरगे न्यूज बस लेट फॉर अ बलेसमाकर और बोले गेहेम इन अ कमिटी जनरल टू बस्प्रीकर वार्डोर ऑलस ओ गेहेम ब्लेव कोरस is ziek, maar de beloofde transparantie is geheel zoek. Isabat, SS Bollega Advocatoire, of Bolle VHP parlementariër Cedric van Samson Bollehe, Bolle Surinaamse gemeenschapke Bolle in alle openheid geïnformeerd te worden over de onderzoek naar de verdwenen grote hoeveelheid kweken waren mee, abbe patana he, ar kweken karen. का बोले इतना मछली मर गए है तो लो जानो कैसे साथ के पुलिस ब्यूरो में से को बड़का कोलंबियन से फिक्र रहा जो दृश्य के बारे में ऊ निकल के भग गए है। अब भग गए की सबनों के निकाल दे भैया पैसा फेंके हुई अख्तर फाइव तक यार कोलंबियन से अरेस्टान योर्की इल्जेर अरीसा ओर्टेगा रात के ऊ निकल के भग गए है। और बोले सेलन हाउस वेस्ट ऑन स्नापन हर खात ओम अखेन फन पुलिस इस क्लासे SK en twee aspirant agent BJ. Zij zijn door de afdeling interne tuchzaken een keer waarin mee. Ja, wat eigenlijk ook pakken aan hè.
तो ये बात है हमारे जनता तो सिपाही के जहुआ विश्वास ना भैया तदिसुआ में तू का करे जइयो भाई जे तो के बचाई उही लुटेड़ा हुई ये है। सोचो भैया आप लोग जानो है एक न्यूज आप लोग के और हम दे रहे ली फिर से हम बताया निगर फेफ तक के यारख बुरु भैया ऑफिशियल फरदाग फन मोर्ट ऑफ 23 यारख योना तोन पिनास अंटवर्प में दगा वल भैला तो लोन जानो है कर बारे में बुरु शुक्रवार के अपि फॉर द रेक्टर गइल है और एक के काबुल है पकड़ के बंद करी से फॉलो अप हेक्टनिस ब्राइफ में से तो ये बात हुआ है अंटवर्प में दोनों में झगड़ा भइल है 23 यारख इट वाज कस्टाप और बोले है गैला दशिशवासी गैला आइट प्रातक करे में तो जिस एन आइट हंड खलोपन वोर्ड विसलिंग बोले सो एर क्लब सेन आइट खदील वार ने स्टीफन एस शॉट हैवन खलोस बोले द कोगल ट्रॉफ पिनास इन ओमकीफ फाइन सेन ऑक्सल बोले है द हिल फॉर द प्रोबेर द करियन मेयर करे के मारो आदमी बच मर गए है अपे कर बारे में सकवा कितना दूर जाई आप लोग को हम जैसे रहेंगे हम बताएंगे हमारे यारो हमारे जनता। तो आप लोग को अभी हम और बताएंगे हम आप लोग को एक गीत सुना दी तो अभी हम आ जाएंगे मस्ती भरा है समा

दोस्तों हम फिर वापस आ गए हैं, तो हम चलते हैं हमारे जनता हम जलते हैं। आप लोग जानो है क्विक के तरह चोरी भले पुलिसी ब्यूरो के घरवा के पछुए से है, पुलिसी ब्यूरो घरवा के पछुए से भैया थे कर बारे में फिहापी के पार्लियामेंटारियर सिद्रिक फंसामसोन बोले ब्लेफ एरबे कि हम लोग मांगेला जाने कब चोरी भय कैसे चोरी भय बोले सफल मांगेला ट्रांसपेरेंसी कितना दिन हो गए चोरी बोले कुछ ना तुल बतावे हैं तो बताई गए खमीस का बोले रेख थे ओपन है इन्फॉर्मेर करे के तुल के बारे ओकर बारे में बोले जो क्वेक चोरी भले को पॉलिसी तरैन में से एक बारे में कमिटे जनरल जेसपॉल के मिनिस्टर हरीश मनोरथ नेशनल असेंबली मेरा बैठ वो उन्हें और बोले के चाहे बतावे के चीजों कहाँ गए ले बोले बकियो वाई बे न करी से बोले है वास्तविक अनवेश और बोले एक है नीट खते इकर फॉर द फरखादरिंग एंड एक बे नीट खवेश वह खा नीट इन अ कमिटे जनरल को मन प्रातन ओवर क्विक दर फॉर डूइंग इन इज ऑफ अ प्लेक वार द पॉलिसी टू सिक्स ऑफ हैडन सो मुटन हैवन स्टार्ट द पॉलिसी बो फॉर DNA, the minister of the president, Safan Samson, in the interview. Or bole hega de politicus geloof in de principe van gelijke monniken, gelijke kappen. En stel dat bijvoorbeeld in de zaak van gewezen minister Bronto, naam van de PL wel openlijk is genoemd, is hij in de openbare vergadering in staat van beschuldiging is gesteld. Or bole Samson, bole NDP parlementariër E.B. Joneske, op de dag van de comité generaal, ik ook gehele show opvoering kleren gaan willen gegeven in de aanwezigheid van de pers door de vergadering. Eerst wil wel buiten wonen en achteraf buiten in de aanwezigheid van de pers zijn kritiek te leveren. Ook ANPS'ke fractie willen gaan, maak lemmetje meegewerkt aan zijn vergadering. Je moet een pertinent weigeren om te gaan, omdat het niet kan. Is een bebaard bolle he, of bolle hega, een gezien met een jaar, een vrouw als president, die vrouw had jou beloofd dat ze mensen naar de PG zou sturen. Bolle ook zou zij moeten huilen, hoeveel mensen heeft ze al naar de PG gestuurd van al die zaken. Want u bolle raha, inderdaad, Simons bolle raha, president bolle ki, toen jij John partij gebaard hebt, bolle je, toen ik je bolle de gaien, bolle de stuur ik jou naar de PG, te bolle aan इतना चीज चोरी हुए कई मिला के बोले ओ पीखी में पढ़ाई सब देखो भैया एक आदमी इन फाइव तक यार के एक आदमी हाँ दोस्तों एक आदमी इन फाइव तक यार के अपन घर में बंदूक से अपने आप के दाग ली से भैया ये बात हुए सीधो रेजो वेख के सीधो रेजो वेख में इन फाइव तक यार के वो आदमी अतवार के सवेरे सवेरे मर गए है अपन बंदूक से अपने आप के स्टाफ के सेल्फ मोर्ड कलेशमेंट से और यहाँ बताए गए हैं लेडी दौर की सिपाही एक बारे में ऑन द सुख करे है कि बातचीत कैसे है बताए गए है कि आदमी अपन स्लाब कामर में रहा और बोले हैगा पता चलल है कि अपन मुड़ी में दाकी से बंदूक से और बोले द यख वे दिस नेचुरली किन बसलाख नो मोमेंट से और बोले ओ मिनिस्टर इज लीफन इज ए लिखाम फ्री गगिवन ना द नाम स्टैंड वंट इज सेल्फ मोर्ड के बारे में है हमारे प्यारे प्यारे जिंदा। अब देखो भैया स्विट्जरलैंड में इतना जबर बिजली चमकल है ब्लिक्सम इंसलाख मारी से स्विट्जरलैंड में कि सवन भेड़ा मर गए भाई। अब देखो यहाँ क्या हुए बड़ी दुख के बात है होंदर दर भेड़ा बोले हैगा बिजली मारी से वारन ओम से तीखन वोल्फंत बस्कर्मन साइन इन हेड स्ट्राइट वेस्ट फॉर स्विट्जरलैंड और मेड लीफर कोमन नून ब्लिक्सम इंसलाख बोले 80 अंदर स्कापन ओवरलीफ द ब्लिक्सम बोले हैगा द स्वार्ट न्यू स्कापन वारन ऑफ एट क्लेने अफगलोपन ट्रेन ऑफ एन बर्गवेडे टेन सेट ईस्ट ओस्टन और बोले हैगा जेकर रहा भड़ोन भैया जेकर भेड़ा रहा जाने स्कापर रहा वो बोले हैगा सेड द डीर फ्रूक नीचो दिख ऑफ एलकार स्टोंडन मार दो द अपमार्ट फ्रॉम अ वोल्फन द कुडस बदरेगन moeten er beschermde maatregelen worden genomen die eerder niet nodig was. Op de Duitse media schrijven dat de
karkassen per helikopter van de berg worden verwijderd. 26.000 bliksemontladingen schrijft omroep in de TV, mensen. To ye to badi gajab ke baat hai hamari janta. अब देखो भैया, अब हम जाएला रुसलान नदेसवा के ओर माँ, हम जाएला गैगरी रुसलान के बारे में बोले फीसे प्रेसिडेंट गैगरी रुसलान हीफ तरह खब्लिक अब दे इस्त 12 मांदन फान कमिनेस सिमों रुसलान फॉल्कस हम नाम दे रखेरिंग हैं बस्तीर ओवर अंदर मुईलक हम स्थान मार इस एर फोर गकोसन ओम नीट फेल ते प्राथन एन फोराल ते वर्कन फान ओपलोसिंग फोर दे ऐट बोले हम लोग बहुत ना मांगेला बतियाए बोले हम लोग काम करब बोले हम लोग बहुत मुईलक टाइट पे ले ली बाटी रे कब तुल मुईलक ना है दे सुआ में भैया फनाफ तक तक से मुईलक मुईलक के चीज भैले अब ये लमिया बोले मुईलक टाइट में पहला नहीं बना ले फीपी बोले बहुत ना बतिया वन आदमी एक बारे में पॉजिटिव ना बतिया कोई एक नाम धरे ई कोई नाम धरे उ तो यहाँ बोले फ्रीडा हारमोनी एंड रिस रिसलान बोले है बोले सामन वर्किंग रखेरिंग से बोले ग्रोथ प्रेस्टेशन फॉर एन अफक्लोपन यार ना अ यार कुनन फोरसिक्टिग टू द कंक्लूजन कमन दैट वी फ्रीडा हारमोनी एंड फॉर आवर रिस्ट हैवन वेटन आउट टू स्ट्रालन. Dus ik vraag me af, mensen, heeft rust thuis. Maar die mensen die duur moeten betalen in de winkel, die mensen hebben thuis niet rust. Dat mag ze zeker weten. Toch, maar die genta, hakering bang 90 miljoen SRD. Financieel kan ze deze wame zonnepanelen ke bare me. Ha, zonnepanelen ke bare me. Hakering bank 90 miljoen beske bar kan ze SRD ke bare me. Dus to, bole voor huishouden die willen investeren in zonnepanelen. Bole nieuwe kredietfaciliteit heeft een maximaal looptijd van 90 maanden. 9% rente per jaar varieer. Ongetrapt zou het beschikbaar kunnen met je zonnepanelen lagen. Top! Hakering Bank bole hai zonne-energie voor meer burgers bereikbaar maken. Volgens CEO Rafik kunnen huishoudens onder gunstige voorwaarden geld lenen van aanschaf. Al gunstige 9% hebben. Ja, toch gunstig vind ik niet zelf voor mensen. Maar goed, dan moeten de mensen wel weten. Opleiding overal in de bankwezen. Je mag je kardjale weet, de hakering bank lang lezen kohe, 90 miljoen, dat is je mag je zo'n appelin lang weet, tap. Ik er bare mee hè. Hamare janta aur hier HPV vaccinatie. Ouderen en sommige scholen steunen. Voor de HPV vaccinatie niet, mensen. Ja, betalen zorgpunt scholieren John Hega. Bole onvoldoende medewerk pawe Hega. Api HPV vaccinatie ke bare me. Jonge meisjes John Hega. Bole Hega vaccineert we tegen baarmoeder halskanker ke bare me. Eker bare me Richard Cartomo. Manager hai nationaal immunisatie programma ke. O bole hai HPV John we vaccin hai. Bole beskerm kare Hega. Baarmoeder halskanker ke. O bole ouders we willen hun kinderen tegen de ziekte laten vaccineren. Ook werken niet alle scholen mee wanneer vaccinatieteams langskomen om kinderen te vaccineren. Terwijl het volgens Cartomo een zeer effectief vaccin gaat, mensen. Toen Jano, ja, hem lukke vaccinatie ke bare mein, corona ke bare mein, kitra hiya garma garam hovega, hi ho de jonge ke bare mein. Ik er bare mein tulun jano hai, koi positief watia, koi negatief watia, maar mensen zijn niet blij op je goede jongen over de situatie. Ham jale bhaiya onderzoek bhoego toko hai Rotterdam mein. Bole bhaiya ego toko Surinam se winkel hai. Aur batawe hai bhaiya witwasak karatra drugsak ke bare mein pakdaan hai dukaniya. Surinam se winkel hai ga toko ego hai Rotterdam mein. Aur bataye gaye hai ga witwasak karatra Surinam se toko Rotterdam mein 55-jarige aur Rotterdam 55-jarige ego in Den Haag.
और वो 51-jarige Rotterdammer एक बारे में पकड़ान है verdag van onder en meer witwassen, drugsdelicten, fraude en deelname aan criminele organisatie. Dat doe ik niet aan de leren als dekmantel mensen. Op de toko is in beslag waren genomen. Spoorpijra via telefoonse, laptopse, spoorpijla. Op de Nederlandse politie, satratar ik jullie bekendker deze ga. Inmiddels zich heeft gegevens op een breder witwas- en drugsnetwerk. De zwak kwam, de zaak kwam mee met rol bij de 51-jarige Ademia en zijn 42-jarige vrouw werden aangehouden. Ze hebben gepakt aan de parania onderneming. Raar Suriname met Surinaamse gerechten, beetje traan. Worden verkocht vanuit het bedrijf zouden grote geldbedragen zijn witgewassen. Obole Hega. Volgens de politie konden klanten bij de ondernemer vermoedelijk bolega krijgt cryptovaluta omzetten in contant geld. Om geen argwaan te wekken zou het geld zijn meegegeven in tasjes van de toko. In de keuken werd bovendien een geldtelmachine aangetroffen. Bolega verdenken uitgebreid naar drugsdelicten. Obole de gegevens op de inbeslag genomen. Politie alleen de onderzoeker is 55-jarige Hagenaar. 51-jarige Rotterdammer. Ik er waren inmiddels door criminele geldraaf via valse facturen. De verdachten zouden gebruik hebben gemaakt van de cashcompensatiemodel. तो यहां पे कितने लोग तो जान गए भैया कौन से नाम से विंकल के बातचीत हुए है लेकिन जब उन नाम ना लिखले मीडिया में भैया तो हमें बतावे कि कौन काम है खातिमा लेकर इवन सेल्फ अंडरसुक ओवर वेलकम सुरनाम से विंकल het gaat welke toko het gaat mensen daar gaat het om president Simon communiceert beter dan haar voorganger iso mohardo bole bhaiya bole hai chances ho ki use na batia रहा मैं बोले सीमन उसे बतिया है और ये बतिया क्या करिए बेन कोर्ट मुझे फॉर द रेक्टर में से इट इज अ साक फ्रॉम ब्रंटो फॉर मिलियन द फ्रॉड द साक में से वो वेट अलमाल है इज अ स्टाट्सबेस्कुल्डिंग एंड ही हैव द हार्ट फ्रॉम द डीएनआ samen met andere twee mensen hoofdraad en Riyad Noor Mohammed mensen dat weten wel. तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता जो आप लोग को हम

दोस्तों एक दो समाचार हम आप लोग को और सुनाएंगे, तो पूरा घंटा हमारा हो चुका। तो हम जाते हैं भैया एक दुख भरी समाचार यहाँ पे। बहिन बिचारी गुजर गए सुरीनाम देश में और सब गए उसका मट्टी लेने को मर्तेवारियों में। तो बहुत दुख की बात है, जब उसका लाश वहाँ से लेकर अब जाना चाहते थे लोग, बस उसका भाई जो है, उसके भाई भैया ग्लेन जो है इश्तेदार नाम लिखा सख्त में से गिर गए वहाँ पर सख्त में से दूर खाई नतीलग। अब जैसे ओके एम्बुलेंस पे ले गए है, एम्बुलेंस आयल है, तो ब्लैक भाई के ओकर भाई भी गुजर गए भैया। तो अब जब भाई भी मर गए और बहन तो मर गए रहा, तो ओकर लाइक रानू के फिन सफर मारतवारियो में धर दे से, कारण कि अब वो जा ही ना सके है, भाई भी गुजर गए है, तो फैमिली बहुत दुख में है। बोले साहब बस लोग तन ओम द एयर फॉर फॉर रानू एंड ग्लेन लातर दे से भी खसाम लगते हौदन परिवार की। ये परिवार जो जिसमें जिसके घर में इतना बड़ा दुख है, रेडियो फाहन के तमाम टीम आपके दुख में शामिल है फैमिली। तो ये बात है ईरान में भैया और अमेरिका के लड़ाई हुए देर तक, दो दिन अमेरिका से अनफॉलन में से और ये बातचीत हो रहा है। ईरान और अमेरिका के लड़ाइया बहुत जबर है दोस्तों, कब इमोई हुई भाई पता ना है, लेकिन ये खत्म नहीं होता है। अब देखो भाई देना बहंदल काल्पनिक वैत ओम क्रिमिनल फरमोहन अफ्त पकन देना बहंदल करे है, जितना आदमी क्रिमिनल से पैसा बनाई से सन्नाम में सब चाहिए उस सबके बसलाख करे के है वैत फोर्स तेल मुद ओफर है मेल मोकल कहित के इवन ओम फरमोहन दौर क्रिमिनलिटेट इस फरक्रेकन अफ्त नीमन ओन खदाख वार है शेख बफिन बोले कर बारे में एनडीपी के बोले इंग्रिड कार्ता बिंग बोले फोर दिल रपर्ट्यूस बोले बकी भैया ई बतिया तो हम में टड़ी डड़े लगे वैत निकारे इस टपला से मैं वैतवा तो लोन चलाई पर यो मिस दाद खर्चलन मेरकन किस तरह बार हंडल निटलोन द फॉर ओर दिल खान व काल प्लिकन से कार्ता ब्रिंग ते द बहंडलिंग और बोले फॉल्स कमिशी बिद द हुडिगे वेटकेवी अनफोल्डोन द फॉर मोकलकेट फॉर सिन एन सिस्टमैटिक फाइनेंशियल इतरा ढेर ड्रग्स डीलर्स भैया इतरा ढेर आदमी क्रिमिनलिटी से धनी भइल है। देखियो कितना भारी भारी घर है भैया हाँ सुरीनाम में। और ओकल गए जइयो भैया तो के सुना दे एक दस बजार 10,000 15,000 डाला जितना सकवड़ हैगा सब वही बिल में घुस जाए जहां से निकल रहा। सुरीनाम के करप्शन के बारे में हैप्पी खीन हुई वोट में से वन सुरीनाम में हैवस करप्शन वेत नामलिक एंटी करप्शन वेखरार मा है वेर खीन मीटर में से जुड़ी वेते अलमाल हू एन वात इट इस ओवर वन ग्रोटे क्रिप्टलिंगर वात इट इस दी हैव यू ओवरऑल इन सुरीनाम। टॉट वंदाग हैव यू खीन एन वन से इन द अखतर द ट्राली गेजीन मेंसे दिस आई हैव नेचुरली खीन हुई वोट एर वन।

0: इसी गीत से हम अपना प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, प्यार भरी आदाब।
1: Verteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales.

0: बड़ी अरमान से लिखा है बलम तेरी कसम। फिल्म मल्हार का ये गाना नेखतिन एन फैफ्तख का, जिसको जिस फिल्म में लता जी और मुकेश जी गाया है। और ये गाना तो, और ये गाना जो अब हम चलाने जाते हैं भैया, ये गाना जो है बहुत पुराना गाना है, गीता दत्त शैलेंद्र का, और इसमें हेमंत कुमार ने भी इस गाना को गाया है। दादा हेमंत कुमार ने मुझको तुम जो मिले तब वो क्या हुआ जहां भी मिल गए।
1: मैं बहुत

मिली जहां मिल गई, दादा हेमंत कुमार का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है मालहा सिन्हा ने गीता दत्त के साथ दोस्तों। और ये गाना है तुम तो प्यार हो सजना, और ये फिल्म है भाई शहरा का फिल्म है, और शहरा का फिल्म में क्या कहते आओ मिलके। और

तुम तो प्यार हो सजनी। और लता और मोहम्मद रफी जी, ये गाना आपको सुनाए, फिल्म शहरा का। ये फिल्म नीखती इंद्रिय से अस्तक का, और ये नया गाना जो नहीं है पुराना गाना नीखती नीखने से अस्तक का है। और मुकेश जी इस गाना को गाया है फिल्म विश्वास का ये गाना। और मिल के सुना जाए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों।

और दोस्तों चांद की दीवार न तोड़ो और प्यार भरा दिल तोड़ दिया फिल्म विश्वास का ये गाना निहत होंद निहन सस्तक का। और दोस्तों ये भी एक पुराना गाना हम चलाते हैं फिल्म विजयंती माला राजेंद्र कुमार का ये फिल्म है साथी का ये गाना और ये हम यहाँ से रेडियो फाहुन के माध्यम से चलाते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों और आओ मिलकर सुना जाए कि ये क्या गाते हैं।

और दोस्तों मेरी दोस्ती और मेरा प्यार, और इस गाना को मांग किया है और वो है सुरेश हरि प्रसाद भैया है नकन, बर्तन अर्तन धोई के भैया एकदम तैयार है। और बोले जॉनी ये गाना है फिल्म नूर जहां का, ये गाना है आओ मिलकर और हम सब और सुना जाए।

और क्या दोस्तों, इस गाना बहुत पुराना गाना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, और ये छोटी सी मुलाकात जो है, और ये विजयंती माला उत्तम कुमार का ये गाना है, और ये पुराना गाना हम आपके लिए यहाँ से चलाते हैं।

और छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, और प्यार में क्या क्या हो जाता भैया, छोटी सी मुलाकात में प्यार हो जाए और बड़े मुलाकात में मार हो जाते हैं, होता है ना। और हम प्यार का सौदा कर बैठे विजयंती माला और लता मंगेशकर फिल्म जिंदगी, जिंदगी का ये गाना है निखिल होंदत और फिर शस्तक का, जिसमें राजेंद्र कुमार राजकुमार विजयंती माला जीवन महमूद हेलेन ने और इसमें काम किया है हमारे दोस्तों।

हम प्यार के सौदा करते हैं। और एक बार दोस्तों और प्रकाश और ये गाना है ओ राधा तेरे बिना, और ये मस्त भरी गाना है फिल्म राधा का सनम, गोविंदा जूही चावला ने इसमें काम किया है। और आओ मिलके इस गाना को आज हम सुना जाए, ये इसमें कौन सा मजा है दोस्तों।

अपना यही है। ओ राधा तेरे बिना क्या क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों और ये गाना जो हम आपके लिए अब चलाते हैं, ये भी एक बहुत पुराना गाना है, कोई प्यार की देखे जादूगरी। ये भी एक फिल्म है जो अभी हमारा पैदाइश नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन जितने पुराना ही गाना है उतने मजा उसमें है। हमारी प्यारी प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे प्यारे लिस्टनर्स, आओ मिलके और सुना जाए ये क्या है।

कोई प्यार के देखे और जादू भरी दोस्तों। और आगे को बढ़ते हैं किए हैं। और दोस्तों ये गाना जो अब हम चलाए जाते हैं ये भी एक पुराना ही गाना है, ऐ मेरे जिंदगी तू प्यार का सपना, फिल्म के नाम है नेकति होंद ए नेक ने शस्तक का, लता जी इस गाना को गाया है। इस फिल्म में काम किया है विश्वाजीत और मालहा सिन्हा ने दोस्तों, और को अशोक कुमार भी इसमें काम किया है, जॉनी भी काम किया है ना, हम जॉनी वॉल्कर दोस्तों, हेलेन काम किया है, और इसमें कितने लोग काम किया है, आओ मिलके सुना जाए ये कौन सा गाना है दोस्तों।

और खो गया जाने कहाँ जो है, ये एक पुराना गाना है दोस्तों, आओ मिलकर और सुना जाए इसमें क्या है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों।

और मोहब्बत, और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ा काम का चीज़ है, और कभी कभी मोहब्बत में बहुत बहुत गलतियाँ हो जाती है दोस्तों। और गलतियाँ तो हमारे लोग का भी एक हिस्सा है हमारे दोस्तों। तो आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी शायरी सुनाएंगे, कुछ गाना हम सुनाएंगे एक घंटे के लिए, और उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम को और आगे को हम बढ़ाएंगे। कहते हैं, तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता हूँ, तेरे ख्याल में मैं जब बेख्याल होता हूँ, जरा सा देर को ही सही बेमिसाल होता हूँ। थोड़ा से देर होइगे बाकी फिर भी बेमिसाल होता हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों। मुझे नींद न आए, आपको आते हैं, आपको क्या आते हैं, अभी क्या आएंगे दोस्तों, लेकिन आएंगे जरूर। हम चलते हैं एक पुराना नंबर की ओर।

और मुझे नींद न आए, और मुझे नींद न आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का ये फिल्म दिल मूवी का नाम है दोस्तों। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने ये गाना को गाया है। और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम को और आगे को चलाएंगे और सुनाएंगे, और कुछ शायरी एक दो बीच बीच में हम कर देंगे। और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हम चलते हैं, और ये दर्द के बात है। और दर्द में क्या होता है दोस्तों, दर्द में आंस गिर जाता है, दिल रोई पड़ता है, दिल धड़क जाता है। और जब दिल धड़क जाता है तो क्या होता है, आप खुद ही सुनिए।

और न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, और जो अगर छू लिया तो उसके आगे आपको क्या होता है दोस्तों, ये मैं क्या करूं, आप तो खुद ही जानते हैं। और कहते हैं होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, साहिल पर समंदर की खजाना नहीं आती। और आगे को हम चलते हैं दोस्तों कि कहते हैं इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज ही थे, जब तू मिला तब इन लफ्जों को मैंने मिले। और दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ शेरे आज आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे, और हमें यही आशा है कि आपको जरूर अच्छा लगेंगे। कहते हैं फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवान होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फहसाना तो निगाहों से बयान होता है। यस मैन सिरोगिर, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में तो प्यार जवान होता है। दिल के बातों का होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयान होता है दोस्तों। और इस बयान में हम आप लोग के चलते हैं सुबह से लेकर क्या होता है, खाना तो नहीं होता है दोस्तों, और कुछ होता है, वो क्या होता है आप सुनिए।

हम चाहते हैं सिर्फ प्यार करो दोस्तों, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों की कहते हैं, प्यार करने वालों कहते हैं कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेगी, कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेगी, खुद तो करके वो एक दिन मुझसे प्यार करेगी। प्यार की आग में हम उसे उसको इतना जलाएंगे कि सारी दिन हमसे प्यार ही करते रहेंगे। यस मेंस, आज हम प्यार के मूड में हैं, इसीलिए प्यार के कुछ शायरी हो जाए। और कहते हैं कि एक पल मैं जो आकर गुजर जाऊं, एक पल में जाकर गुजर जाए, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहते हैं दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सब बात शायरी में लोग लिख के धर दिया है, और आज अपनी जिंदगी के कुछ बातें हम आप लोग को सुनाएंगे, और वो क्या है दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

मेरे जिंदगी में जब आप आए हो तो बहार बन के आए हो। और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है दोस्तों जो आपके हमने सुनाया है। और हम चलते हैं और आगे को दोस्तों, मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है। आप तो जानते हैं जलो कभी मस्त हो जाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ता है, जगर उसको कुछ सोचना है तो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। और बैठ के और जैसे दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो मुझे वो स्पेशल जगह होता है जहाँ पर हम बैठ के कुछ लिखते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जब जो प्यार के मूड में होता है तो वही जगह वो खोजता है और कहते हैं मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है जहां बैठकर एक बार तुम्हें सोच लेता हूं। जी हां दोस्तों, और कहते हैं इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है दोस्तों तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वो होता है जो शाम को दुई बोरल मार के सोता है। एक शायर हो गए भैया ये हंसते हुए, सिर्फ प्यार भरे नहीं लेकिन हंसते हुए, नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। नजरे करम मुझे पर इतना न कर, मुझे पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। मुझे इतना न पिला इश्क के जाम कि मैं इश्क के जहर में आधी हो जाऊं। दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आपके दिल ने किसी चुरा लिया है तो ये गाना आपको जरूर सुनना चाहिए।

और चुरा लिया है क्या भैया, दिल के बात होता है, दिल के बात होता है हमारे प्यारे प्यारे और सुनने वालों। और दिल बेस्टमैन से हम चलते हैं एक रीमिक्स गाना की ओर, यानी कि रीमिक्स भी बजाना चाहिए और तुम दिल के धड़कनों में रहते हो, उस गाना की ओर जाते हैं हम दोस्तों। अभी हम वापस आ जाएंगे।

बस तुम दिल की धड़कन में और रहते हो रहते हैं। अलका का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में काम किया है हमारे दोस्तों। और हमारे प्यारे दोस्तों, ये गाना है जब बारिश आता है तो ये गाना सुनने में और अच्छा लगता है। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम है सूर्यवंशी, अक्षय कुमार कैटरीना कैफ के, और इस गाना में, इस फिल्म में यानी गाना को गाया है उदित और अलका ने। आओ मिलकर सुना जाए, तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

गौरव दोस्तों, टिप टिप करता और क्या करता है टिप टिप भैया, बारिश होता है टिप टिप, और जब बारिश होता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपके तो खुद मालूम होगा। हम चलते हैं और आगे को, और बचना ऐ हसीनों, बचना किससे है दोस्तों, उससे बचना है जो दिल के लुटेरा होता है, उससे बचना।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: तो यहां से कुछ रीमेक सॉन्ग भी आज हम आप लोग को सुनाएंगे और कुछ भोजपुरी रीमेक सॉन्ग भी सुनाएंगे, कुछ बॉलीवुड रीमेक सॉन्ग हम सुनाएंगे। आप लोग को सबको तो पता है लॉलीपॉप के जो गीत है भोजपुरी, वो गीत तो आप लोग को पता है, लेकिन यहाँ एक रीमेक सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं। और हमारा तार के नंबर है दोस्तों 07 3652 24 रेडियो फाहुन का तार के नंबर है। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम।

और कमरिया करे लप्पा लोप और लोली पोप लागे है तू दोस्तों। और आज भी हम आप लोग को एक दो शेर भी आप लोग को सुनाएंगे। और कहते हैं जुदा भी हो के वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, जुदा भी होकर वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, ये और बात है कि देखने उसे जमाने हुआ, जमाने हुआ। और कहते हैं दोस्तों इश्क को सर का दर्द कहने वाला सुन, मोहब्बत का दर्द को, मोहब्बत को सर का दर्द कहने वाला सुन, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है। और अपने सर हम लेकर और क्या करेंगे, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमारी निगाहों से बचकर वो भला कहाँ जाएंगे। हमारे दोस्तों हमने उनके मोहल्ले में ही घर ले लिया है। तो हम चलते हैं कुछ बॉलीवुड रीमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाएंगे। और ये जो तेरी पायल की छन छन है, आशिकों के चाहत दिल के धड़कन है, आओ सुना जाए।

और ये जो तेरी पायलों के छनछन है आशिकों की चाहत के दिल की, और वो तो धड़कन है, और कहते हैं चिरागों में, चिरागों में दोस्तों, चिरागों में इतना नूर ना होता, अगर चिरागों में इतना नूर ना होता तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो कुछ एक दो कॉमेडियन शेरी भी आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं बसाऊं मैं दम रखता हूँ, बजाओं में मैं दम रखता हूँ, दिल में छम रखता हूँ, और पता था कि SMS आएगी तेरा, इसलिए अरे बैठ के तेरा इंतजार करता हूँ, पता है कि आपके ऐप जरूर आएगा, इसलिए बैठ के इंतजार हम करता हूँ कि जानू मेरी जान, आओ मिलकर सुना जाए एक रिमिक्स सॉन्ग, और किशोर जी के सॉन्ग है, फिल्म का नाम है शान, जिसमें अमिताभ बच्चन परवीन बामी ने काम किया है, आओ सुना जाए जानू मेरी जान।

और जानू मेरी जान और मैं तेरा कुर्बान। कुछ रिमिक्स आज हम आप लोग को सुनाएंगे। कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं। दोस्तों कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा भैया, ही बतिया है। और कहते हैं चमका न करो जुगनू की तरह रात को ले जाऊंगा मुट्ठी में किसी रोज छुपा करे कि झलक दिखला जाए। आओ हमारा झलक आप लोग रेडियो के माध्यम से देखिए।

0: गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा।
1: और झलक दिखला जा हमारे दोस्तों, और जब अगर झलक दिखलाएंगे तो और क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कि आई फिर से गुजरा लम्हा याद, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाई उसने, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाए उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, हंसे तो थे उसके सामने, देख कर भी ना जाने क्यों फिर से नजरों को चुराया उसने। तो कुछ प्यार की और कुछ शायरी हो जाए दोस्तों, के कहते हैं चेहरे पे मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिशें उसके जो दिल से समझते हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे। और जाते हैं किशोर दादा के एक सॉन्ग, फिल्म के नाम है लवारिस।

अपने को जैसे तैसे में क्या होता है दोस्तों, अपने को जैसे तैसे और थोड़ी देत एंदात है कि कहते हैं ना पूछ किसी से ये उल्फत का, ना पूछ किसी से ये उल्फत का कि बड़ी लंबी कहानी है, मैं गैरों से नहीं हारा, मेरे किसी अपने की मेहरबानी है। हमारा दोस्तों चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिश है उसकी जो दिल से समझे हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे, तेरे चुनरिया।

0: सा।
1: औरो औरो दोस्तों, तेरी चुनरिया और तेरी चुनरिया में क्या हुआ? तेरी चुनरिया में एक दिल दिल को जख्म दे गई, एक दिल को जख्म दे गया, जिंदगी भर जीने का कसम दे गया। लाखों फूलों में से गुना था एक फूल जो कांटों से भी गहरी चुबा दे गया। और कहते हैं गुलाम की महक भी फीकी लगती है, गुलाम की महक भी फिक्का लगता है, अच्छा नहीं लगता है। कौन सी खुशबू मुझ में बसा गई हो तुम? जिंदगी है क्या तेरी चाहत को सिवा? ये कैसा ख्वाब आंखों को दिखा गई हो तुम? और बचपन बदन पे और सितारे कौन लपेटा है? वो परमा श्री मोहम्मद रफी लपेटा है शामी कपूर से। आओ रिमिक्स सॉन्ग फन रेडियो फॉर होम, दौड़ जॉनी नंबर 1।

और बदन पे सितारे लपेटे हुए और न जाने क्या क्या। और इसके बाद है दोस्तों हम चलते हैं रैक यानी कि हम चलते हैं अगला सॉन्ग के अभी और दोस्तों हम रिमिक्स सॉन्ग के ओर बढ़ते हैं और बढ़ते हैं कि कहते हैं पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, अब मेरे मौत का भी वो फायदा उठाता है। पहले जिंदगी छीन लिए मुझसे, अब मेरी मौत का भी वो फायदा उठाता है। मेरी कब्र पे फूल, मेरे कब्र पे फूल चढ़ाने के बहाने वो किसी और से मिलने आता है। दैट इज वेयर हार्ट बेस्टर स्ट्रांस, दैट इज हील हार्ट। दिल मेरा बहुत नाजुक है, जरा इसे संभाल कर रखना, तुमसे जुदा ना हो हम, बस इतनी दुआ करना। और कहते हैं और क्या कहते हैं, एक सॉन्ग की ओर हम बढ़ा जाए कि ये कहते हैं कहो ना प्यार है।

प्यार है, कहो ना प्यार है, ओनली रिमेक सॉन्ग कहते हैं प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, अपनी आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, अपने आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, वो चाहे लाख नफरत करे तुमसे पर तुम अपना प्यार कभी उसके लिए कम नहीं करना। दिट इज अ टिप फॉर माय बेस्ट लिसनर्स। एक नोग रिमिक्स ड्राइयर मेंसे, एक नोग रिमिक्स ड्राइयर, तो आप लोग को हम सुनाते हैं रिमिक्स सॉन्ग, वो है डम डम डम मारो डम दोस्तों।

और दोस्तों डम डम डम डम और क्या था, डम डम ढिगा ढिगा डम मारो दम था। हाँ कहते हैं प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, अपनी मोहब्बत का जिगर आज सारे आम कर दो, और नहीं करते अगर प्यार तो इनकार कर दो, ये लो मेरा मासूम दिल इसके टुटके हजार कर दो, ये लो मेरे मासूम दिल इसको टोर कर हजार कर दो, और मेरा प्यार की पहचान तो ही तू ही तो है, मेरा मेरी मेरा प्यार की पहचान तू ही तो है, मेरे जीने का अमान तू ही तो है, कैसे कैसे बजाएं करे कैसे बजान करे अलार्म इस दिल को, मेरा आशिक मेरी जान तू, मेरी आशिक मेरी जान तू ही तो, तू ही तो है। तो आपको कुछ शायरी हम आप लोग को यहाँ से सुनाए हैं और एक ओल्ड गोल्ड सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। दोस्तों ये एक ओल्ड सॉन्ग है, फिल्म का नाम है दो उस्ताद, आओ मिलकर सुना जाए।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: तो दोस्तों आप जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम आज फिर हमारा शुरुआत है। कुछ नई नई, कुछ पुरानी पुरानी और कुछ मीठी मीठी, स्वीटी स्वीटी, और यानी कि शेर और गाना भी आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों। कि कहते हैं कि मोहब्बत किशोर, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एहसास होना चाहिए, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एक एहसास होना चाहिए, और हमें जिनसे प्यार है बस उन्हें पता होना चाहिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, आज कुछ कॉमेडियन यानी कि कुछ चुटकली शेर भी आप लोग को हम आज बताते रहेंगे। कि छोटे छोटी सपने हैं मेरी, अरे छोटी छोटी सपने हैं मेरा, छोटी सी है आशा, पूरी दुनिया पर हुकूमत हो मेरी, बस इतनी है अभिलाषा हमारे दोस्तों। तो हम चाहते हैं बारिश बन जाना, बारिश बन जाना एक गीत की ओर, आओ मिलकर बस सुना जाए।

ओ दोस्तों, बारिश बन जाना कुणाल कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। कि दोस्तों, आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहोन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबरो 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे, आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.1 पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दत्वास वाला मोह ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

0: और कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति, शान का गाया हुआ गीत है, छाया है, और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुरानी गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों, कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है, और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है, कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम, कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो, और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज कह सकते हैं दोस्तों, कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है, और खास करके विंटर के महीना में, कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों, उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए।
1: बचाने तो मुझे क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना।
2: ट्रेन 6 घंटे में यहाँ पे।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिम नौ यानी कि जुबिन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगी। दोस्तों जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपकी शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल हेल्थ दोस्तों बहुत लंबा होता है। कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव मैं प्रेम की दीवाना हूँ एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

और संजना आई लव यू, संजना आई लव यू हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और एस चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए, किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है और सिद्धरात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, नेहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यार तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों। और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे। और कहते हैं मिलना इफ्तिताक था, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था हमारे प्यारे दोस्तों। मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था, वो उतना ही दूर चला गई जितना करीब था। हम उनके, हम उसका देखने के, हम उसके देखने के लिए तरस रहते थे हमारे यारो, जिस शख्स ने हथेली पे हमारा नसीब था, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। और कभी कभी जब उम्र लोग को उम्र जब बढ़ते हैं तो उम्र के साथ ही चलना चाहिए कि कहते हैं उम्र के रह, उम्र की राह में जपत बदल जाती है, उम्र के राह में जय बात बदल जाती है, वक्त की आंधी पे हालात बदल जाती है। सोचा था हूं काम कर करके रिकॉर्ड तोड़ दूं मैं, कमबख्त पैसा ही सलारस ही देख के हर ख्याल बदल जाते हैं। अरे भैया जब आमदनी कम है तो ख्याल तो अपना बदलना चाहिए। हम जाते हैं अरिजीत सिंह, श्रिया घोषाल के ओर, शाहरुख खान और दीपक का इस फिल्म में काम किए हैं, मनवा लागे, फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर में क्या होने वाला है आप सुनिए।

और मनवा क्या क्या, मनवा कहाँ कहाँ ना लागे। दोस्तों फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल सॉन्ग फन अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल का, जिस फिल्म में काम किया शाहरुख खान और दीपिका। दोस्तों और प्यार भरी प्रोग्राम यहाँ से हमारा चलते हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 5 20 20 4। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पता है न्यूटन स्ट्रांड न्यूमरो 25 देन हाँ शहर से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। मोहब्बत भरी प्यार भरी प्रोग्राम हमारा यहां से चलते हैं। मोहब्बत का कोई रंग नहीं है हमारे यारो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं है फिर भी वो हसीन है। ये तो वैसे ही है ना भाई, कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो हसीन है, उसके सामने दुनिया की हर रंग अरे फिक्का से है। दोस्तों कि मोहब्बत के रंग की तरह खूबसूरत है, कि कहते हैं कभी हम मिले तो भी क्या मिले थे, कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारे झियक गई, तुम्हारे यादें गई है हमारे यारो। कि कहते हैं दिल दो तो किसी एक को दो, दोस्तों दिल दो तो किसी एक को दो, अरे वो भी किसी नेक को दो, अगर देना है तो किसी नेक को दो, जब तक मिला नहीं जाए और बस मेहनत करते रहो और करते रहो। हम चलते हैं इस कदर तुमसे हमारे, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है, और इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है। लव सॉन्ग दर्शन रावल का न्यू सॉन्ग है फन दित्यार मेंस, और हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और दोस्तों प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमार चलते हैं और कहते हैं कि इस कदर का ये गीत है तुमसे हमें प्यार हो गया है, इस कदर हम तुमसे हमसे और प्यार हो गया है कि कहते हैं पहले वो मेरा दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। कभी कभी दोस्त के भी मोहब्बत हो जाते हैं कि पहले वो मेरी दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है, पहले सिर्फ उसे याद करती थी, पहले सिर्फ उसे याद करती थी और अब तो आदत बन चुका है। हमारे यारो रेडियो फोन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिल के बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार।

और आपकी याद आई तो दिल क्या करे, माना कि तुम्हें थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा तुझे तो ही करते हैं। खुद भी रोता है और मुझे भी रुला देता है, ये बारिश का मौसम उसके याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों हम जानते हैं वादा रहा सनम आई लव यू फिल्म के नाम है खिलाड़ी, इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए इस सॉन्ग। और

वाह शाबाश, क्या बात है लता जी की आवाज़ में हम पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में शकील बदायूं की लिखी हुई गीत लता जी की आवाज़ में फिल्म आदमी में से निकाल कर नौशाद अली के साज पर। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, ये भी एक लता जी का गीत है और साथ दे रही लता जी और मुकेश मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल रहे हैं। ये प्यारा गीत सुन लीजिएगा मुकेश जी और लता जी।

ये किसने गीत छेड़ा और किसने किसकी जुल्फ बिखरी। जी हाँ, लता जी और मुकेश जी मिल के आपको सुनाए हैं फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल कर हमने पेश किए। चलिए, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, बहुत आप पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, क्या ख्याल अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से।

फिल्म सुर में से निकाल कर महालक्ष्मी ने आपको सुनाई। द्रमर तो पीट पाट कर द्रम रख दिया। बहरहाल फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका स्वागत है। फिल्म सुर में से निकाले जैसे मैंने कहा और हमने पेश की। चलिए अगला गीत। ठहर जाओ अगर आपको कहीं जाना है थोड़ी देर रुक जाओ, हाँ थोड़ी देर रुक जाना।

थोड़ा सा ठहरो, लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत फिल्म फिक्टोरिया तूनो द्री में से निकाल कर हमने पेश किए है ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी आरती बर्मन के साज पर। फिल्म तो आपने अवश्य देखे होंगे, फिल्म सीता और गीता निगति तुई 1972 का ये गीत है, 72 का ये फिल्म है और रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी बनाने वाले इस फिल्म का। रमेश सिप्पी जीपी सिप्पी ये दोनों सिप्पी जो है ये दोनों फिल्म शोले के बनाने वाले हैं और साथ मिलकर क्या नाम है सलमान खान का पिता का है सलीम खान, सलीम खान और जीपी सिप्पी ने मिलकर ये फिल्म बनाए हैं फिल्म सीता और गीता। हम इसे निकाल कर ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

अच्छा जी, ओ किशोर कुमार जी, फिल्म सीता गीता में से निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, ये गीत रफ़ी साहब का ये गीत है, बहुत पुराना गीत है, निगेटिव फिर सस्तक का। ये गीत को लेकर कितने बैठक गाना में भी गाए हैं, लेकिन ये बैठक गाना निकाले कहाँ से? फिल्म फिल्म जी हाँ, फिल्म सजनी से भैले मुलाकात, फिल्म का नाम है सजना से भैले मुलाकात, फिल्म का नाम है सजना से भैले मुलाकात। रवि साहब आपको सुना रहे हैं निकिति फिर सस्तक का ये गीत, सुन लीजिएगा।

0: दिखली।
1: रफी साहब की आवाज में आपको सुनाया गया है ये गीत, जब से दिखली सूरतिया तोहार गोरिया। जैसे मैंने कहा नहीं कि थी, फिर से अशक का गीत है, फिल्म है सजना से भैले मिलनवा, उसी फिल्म में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं। तो क्या ख्याल है अगर हम ये चलाएं आपके लिए कि लोग तो कहते हैं लेकिन पता नहीं निर्णय आपका क्या है, दिल उसे ही देना चाहिए जो आपके लिए जान दे, पता नहीं सुनते हैं।

उदित नारायण जी आपको सुनाए, चांद की चांदनी गुलाबों की कली, मेरे लिए तुझे रब ने बनाया है। हमने बहुत कोशिश की ढूंढने के लिए कौन सा फिल्म कहा या नॉन फिल्म का होगा, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो, अगर मुझसे बता देते तो बहुत अच्छा होता। हमने बहुत ढूंढे, नहीं मिला, और शायद सुनने वालों श्रोताओं को भी अच्छा लगे। ये फिल्म का नाम, कौन सी फिल्म का ये गीत है, चलिए गीत हम आपको सुनाते हैं। चलिए जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत है।

जले। रफी साहब आपको सुनाए शमा जले या न जले। www.pintfaun.fm.nl पर आप चून है, जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए चलिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत इस तरह से।

दीवाने को प्यार से देखो, प्यार से पूछो। रफी साहब ने तो छेड़ दी। जी हाँ, प्रेमिका को छेड़ दी तो क्या मुकेश जी ये कह रहा है, अगर आपने प्रेमिका को छेड़ दी तो चलो उनकी तारीफ कर देते हैं हम। दर्पण को जे देखा मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ

दर्पण को देखा जब तूने किया सिंगार, बार बार किया सिंगार, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए। ये शानदार गीत इस तरह से फिल्म उपासना में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

लिबास क्यों रेशम पहनो कपास क्यों फन ये जादूगरी का है अरमा तुमको परी का है तो किपला मारो मंत्र के

0: हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम।
1: ये वाक्य आपने सुने बड़े मियाँ दीवाने। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं इस तरह से, देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

हाँ जी रफ़ी साहब और लता जी, फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे, ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है, तो लीजिए। आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब, आशा जी और कोरस, क्या ख्याल, फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें प्यार करते हैं करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और पेश कर रहे हैं इस तरह से रवि साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और मैं तो मुकेश द हार्टथ्रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, नेखन तीन सस्तख 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, ये नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। ग्रीन किशोर कुमार

ते दिल ही जाने लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार मिलके दोनों आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और फिल्म तो बहुत प्यारा था, रूप तेरा मस्ताना 1972 का नेहन तीन त्वेन सैफ का ये फिल्म हम आपको दिखाए नहीं, फिल्म के गीत आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ, गुलाम मोहम्मद के साज पर। जी चलो सुनते हैं रफ़ की आवाज़ में निखते एन एस का ये गीत, क्या ख्याल है।

उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। रफ़ीकिया आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी राज।

अरे गा तेरे संग या मेरे संग मेरे साजना, हमने पेश की एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी आपको सुनाए फिल्म अभिनेत्री में से निकाल। जी हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और

जो तुम हंसोगी रोएगी दुनिया या हंसेगी दुनिया, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर शाह फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और देखते हैं निगति ए ने सैफ तक का ये गीत है, चलिए देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो कौन सा है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये गीत, हमने चून किए लेकिन सुना नहीं, चलो साथ मिलकर सुनते हैं, आप सुनोगे मैं भी साथ सुनता हूँ।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए तुम हमका ऐसा का देखत लैला। जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

हवा भी ज़्यादा ज़्यादा है। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। और चलो देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, फिल्म मन मंदिर। फिल्म मन मंदिर में से निकाले हैं निगद एन सेवन तक का ये गीत, 1971 का ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर। हमने एक दो बार कहा था लेकिन एक बार फिर कह देते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जी हाँ एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है जो बहुत सारे फिल्म में काम किए, सभी म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा, करीबन 455 या 54 होगा, 55 या 54, यानी 450 तक फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिए हैं।

प्रतिष्ठिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। हरिओम। एक ही दम भैया बिरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों। हिंदुस्तानी रेडियो कावास का दुनिया के दोस्तों स्वीकार की जिमलो का सागर सा भरा हुआ प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेन कृष्णादित्य भगवान दीन जिसे आप ढेर सारे श्रोता गुण आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का साप्ताहिक प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूं यारो संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम खलिंग में ओल्ड इज गोल्ड गीत और गर्गीत और गजल ये यश उम्मीद लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो जहाँ पर भी हो जिस साल में हो घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो जहाँ पर भी हो जिस साल में हो दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक शुभ रात्रि पेश है। मैं थेल फील्ड प्लेजियर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस्तेमाल इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हैं तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फन मांडा तो फ्रेडा टेनिस कंटोर यूर ऑफ द फॉलोइंग द टेलीफोन नंबर्स कंटोर 07-362-2747 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2747। क्वालिटी ग्रांटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं। एनी टू फरगेट है ऑनस क्वालिटी इज ऑलवेज योर गारंटी एंड नेचुरली नेचुरली नेचुरली फूड इज ऑलवेज लेकर दरबै फाउन हिंदुस्तानी रेडियो तक हमसे पहले आप श्रोताओं ने कति सुंदर प्रोग्राम को सुने जो खास करके हम लोगों का मेंटर ओ गुरुदेव बड़का भैया उस्ताद का उस्ताद श्री चंद्रशैन गंगा जी आप श्रोताओं के पेश में पेश किया। जिस तौर तरीके से भाई गंगा जी आप सभी को सदियों से सेवा करते आ रहा है ये ऐसा उम्मीद है कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद फूल टीम की तरफ से भाई गंगा जी और आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ रात्रि। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हो सकता है कि आप विवाह संस्कार की तैयारियां में लगे हो। जो भी खुशी के दिन आप सभी मना रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां खुशियां ही खुशियां प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है आप एक मातम में हो गमी में तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है मातम में शरीक है और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार्य आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए बेहतर हो जाए चंगा हो जाए। यानी तो फर्क यही तो है बंधु जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना और हो सके तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना और थोड़ा बहुत हम लोगों के बारे में जरूर बातें इशाते करते रहना फनहार्त बेहतर शाम। कामयाब हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से तहदील से बधाइयाँ ही बधाइयाँ खाफुरान सुदूर और हो सकता है कि आप आज या कल कामयाब नहीं हुए हो तो चिंता के कोई बात नहीं है बंधु मूर्ख स्वेर अंदर है दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ उतराव थोड़ा और जोर तो से बढ़ाते रहना और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना तो हो सकता है कि कामयाबी आपके कदमों को जल्द से जल्द भी
दौड़ दौड़ कर आकर चुन सकते हैं ना। देखो मेहनत तो है, दौलत का यारी यारो नोई तो खीफ है, वो तो खिलेरते हैं घरे स्कूलिया पर कमुआ पर सगरो नैफर गिफ ब्राडा नंगा सीसा ससलो बिलो बी ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एन अतिरलक बदंग सोरेतला।

चलो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना। इसलिए हम लोग तो सदियों से आप सभी से यहाँ से कहते आ रहे हैं और सदा कहते ही रहेंगे कि हैव टू नस्ट ऑल द लीफ है, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो इस शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम कुछ पुराने पुराने नगमे और 10 यानी 9 से 10:30 बजे आप सुनेंगे सिर्फ नगमे जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ही मैन, द हिट मैन और हमारे सब का दिल चाहने वाला कलाकार श्री धर्मेंद्र जी के मूवीज में से कुछ नगमे सुनेंगे आप और बीच में कुछ ज्ञान के बातें, शेर शायरी है। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 10:30 बजे रात्रि तक चलेगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना रफी साहब।

गालो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। साथियों आज का इस हसीन रात्रि का प्रोग्राम, बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम 20 जुलाई 2020 का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जो मैं शुरू करने वाला हूँ किसी के याद में, स्पेशल फॉर मुक्का फैंस। नतीलक और सभी मुक्का फैंस को तो मालूम है कि आज डमाइटी मुकेश जी अगर जीवित होता तो उनका आज जन्मदिन लोग तो दुनिया भर में मना रहे हैं, खास करके मुकेश जी के बड़े बड़े फैंस जो क्लब्स भी चलाते हैं देशों में, वहाँ तो जोर तोर से पार्टियाँ हो रहे हैं। मुकेश जी तो स्पेशल फॉर मुक्का फैंस में ये अति सुंदर बयान रख चुका हूँ प्रेयर में न्यूमराइट 1960 एक मोई फिल्म स्वार्थवित फर्स्ट लव, पहला प्यार पहला मोहब्बत फिल्म का नाम है, उसी में से निकाला हुआ ये सुपरहिट सॉन्ग मुकेश जी के ब्यूटीफुल मधुर आवाज में, उन्हीं के याद में आप ये थी सुंदर बयान सुनिए। नतीलक अल मुक्का फैंस फेलिसिटेट एनोक नतीलक इधर इंदी मुकेश जी को दिल के करीब से जानते हैं, मानते हैं और प्यार करते हैं, उन सभी के लिए

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग दिल को छू लेने वाला नगमा मेरे प्यार में कॉम्पोनेटर उस जमाने के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर श्री दत्ताराम जी। पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यार बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम गीत और गजल ओल्डीज गोल्ड क्लिंट मेथ संगीतकार का दास्तान नाम कार्यक्रम और प्रोग्राम चल रहे हैं। मैंने आप सभी को अभी कहा कि वहां het verjaardag van Mukesh ji een beetje vieren samen met jullie op de radio. Ik hoorde je maar just het song maar ik kan hoe player met Mukesh ji gejaagd mee uit de film My Love 1970. Great music director uit Zamanika Sri Dan Singh ji ka banaya hua ye atir sundar bayan Mukesh ji ke madhur awaaz mein zikr hota hai jab कयामत का क्या बात है। लवली सॉन्ग स्पेशल सभी मुका फैंस के लिए।
1: संगीता संगीता मेरी बात तो सुनो, तुम समझती क्यों नहीं कि मैं

de movie My Love 1970, Sikre Hota Hai Jab Qayamat Ka, gecomponeerd door Mahan Music Director Us Zamane Ka, The Great Dan Singh. Een kia waaz tha Us Zamane Me Mukesh Ji Ka. Heel vol, hè? On Hindustani Radio pe aap tune hai yaro, 7 minute baki hai, 8:30 bajne mein. और आप चुन है आप ही का मनचाहा रेडियो स्टेशन पर बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम गीत और गजल ओथ इज गोथ आप सुन रहे हैं खरीन मेहत संगीतकारों का दास्तान नाम कार्यक्रम. एंड बहुत ही खुशी के बात है कि 22 जुलाई को कौन भूल सकता है ये दिन. यही तो वो दिन है जो दिन मुकेश जी का जन्म हुआ था. ऐसा कलाकार, ऐसा महान गायक बार बार जन्म नहीं लेते यारो. दुनिया भर में मुकेश जी का तो करोड़ों फैंस है. और सभी करोड़ों फैंस के लिए ये अति सुंदर बयान फ्रॉम द मूवी हनीमून. और इस बार साथ दे रही है भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी. और क्या अल्फाज है शैलेंद्री जी की, साज सलील दा द ग्रेट सलील चौधरी जी का ये ब्यूटीफुल बनाया हुआ मीठा धुन आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम. और ये भी मुकेश जी के याद में, मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में. क्या बात है.

सुंदर बयान मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में। एक फिल्म हनीमून लता जी के साथ मिलकर सुनाए आप सभी को द माइटी मुकेश जी, कॉम्पोनेड और सलील चौधरी और अल्फाजे था मैस्ट्रो शैलेंद्र जी का। मिनट बाकी है 8:30 बजने में साथियों। अगला बयान एक ब्यूटीफुल गजल है, ये भी आप सुनिए, क्योंकि मुकेश जी बहुत ही लीफ हैवर था गजलों का और ढेर सारे गजल्स भी गाए हैं, तो उन्हीं कलेक्शन में से ये मैं निकाला हूँ आप सभी के लिए शाम गजल एल्बम में से। आबाद रहे मेरे दिल को, और लिखा है ये ब्यूटीफुल गजल को मधुकर राजस्थानी जी, और कंपोज किया है म्यूजिक डायरेक्टर फी बहल सराजी ने। ब्यूटीफुल गजल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम द माइटी मुकेश।

क्या बात है, अति सुंदर गजल आप श्रोताओं ने श्रवण किए, और वो भी मुकेश जी के बर्थडे में, बर्थडे के दिन पे उन्हीं के आवाज में ये ब्यूटीफुल गजल। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, और प्रोग्राम आप बड़े मजे के साथ सुन रहे हैं क्योंकि मुकेश जी का आज जन्मदिन है। प्रोग्राम आगे जारी करने से पहले कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना हमारे ज्ञानियों के लिए, वादा के मुताबिक कुछ सितात है और कुछ ज्ञान के बातें है। वैसे ही और अंदर वैरप है मृत्यु यानी ददोत सैन ओक अन पार ख्रापख तुसे होर, वंत से ब्लाइफ ओक ख्राप माक ओफर ददोत, वंत वत इस नाउ नीट सो सीकर आस ददोत, दत स्टाट आस अन पाल बोफ वातर है ददोत। तो अर्ज क्या है मृत्यु के बारे में, दिट इस ओक अन हेल ख्रापख दोर देंकरचे। हरमन फिंकर्स जी ने कहा है मृत्यु के बारे में, in Adorp is de openbare begraafplaats afgebrand, 80 doden. आगे में कहा है श्री युफनालिस जी ने मृत्यु के बारे में कि het is je reinste krankzinnigheid om in armoede te leven om rijk te kunnen sterven. Dat is heel dom hoor. श्री शूल्स देवदर जी ने मृत्यु के बारे में, बंग फॉर द डोट हु कैन यू न्यू बंग सेंड फॉर इट्स वार फॉर ये गेन फोरस्टेलिंग कुंट मार्कन। बेनियामिन फ्रैंकलिन, स्लेक्स वेनिगन स्टर्फन फॉर द हंगर मार हंड्रेडथाउजेंड स्टर्फन फॉर हेड ईटन। Zegt iets ook over de dood. Hij zegt: wie de dood vreest, verliest zelfs het leven dat hij heeft. P.C. Boutens de kahai mritju ke barmiaroki. Niet veel is het wat dat de wereld om u gaf. Zij zal u amper missen in uw graf. Uw dood. Zo zeer omslachtig in uw ogen, de wereld doet hem in een onzin af. Pythagoras, een natuurkundige uit de Griekse tijd, vrees niet het leven te verliezen, want de dood is slechts een verandering van woning. आगे में सेनेका भी कुछ कहा है, पुराने जमाने के महाज्ञानी एट इटालिया, और सेनेका ने कहा है het leven op zichzelf is niets gewichtigs, ook alle dieren leven, maar eervol, wijs en moedig sterven, dat is waarlijk groots, met volkomen gemoed rust van hier te scheiden, als eenmaal onvermijdelijk ons laatste uur nadert, daarin ligt iets verhevens. Nou, dat zullen we zien hoor, later. Prediker, bhi kuch mrityu ke bare mein kaha hai, aur kahta hai prediker ji ne ki, alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het graf dat gij heen gaat. Aur hum logo ka apna Bapu ji, Sri Mahatma Gandhi ji ne itne dher sare citaat kahe, waarvan een van hen luidt als volgt. Mahatma ji ka kaha hua ye citaat: leef alsof u morgen moest sterven. Leer alsof je voor altijd leeft. Ook eentje echt om in te lijsten hoor.
Nogmaals, leef alsof u morgen moest sterven. Leer alsof je voor altijd leeft. En dat was tevens de laatste citaat. Jo maine aap sabhi ko sunaya ye yasho mein lekar kin baaton se kuch na kuch to hum log hamesha ki tarah seekhte hi rahenge. Agla bayan ki taraf badhte hain, kuch songs maine select kiya hai Mukesh ji ki yaad mein kyunki aaj unka happy happy birthday hai aur agar wo jeevit hota to 103 year ka hota aaj. एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है, एक फिल्म जो बनाया गया था 1970 में मिट्टी का देव, जो रिलीज ही नहीं हुआ, तो उसी फिल्म में से ये अति सुंदर बयान मैं निकाला हूँ. शाम से आँख में नमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है, क्योंकि बतेगन फन ऑफ द मिदाख हैपिक आल तरानंद ओख. आगे सुनिए.

दिल को छू लेने वाला नगमा जो रिलीज ही नहीं हुआ दुधपैन होर। ये अति सुंदर बयान इन रिलीज सॉन्ग एट फिल्म मिट्टी का देव एट निश्री सही सुंदर। 19 मिनट बाकी है 9 बजने में साथियों, और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। अब प्रोग्राम चल रहा है मुकेश जी के याद में, क्योंकि उनका आज बर्थडे है और अगर जीवित होता तो 103 का होता आज। ऐसा मीठे मीठे गाने, दर्द से भरी हुई, प्यार से भरी हुई भक्ति सॉन्ग्स, गजलें हो, ढेर सारे गाने गाए हैं। और खुशी की बात है कि जितने गाने मुकेश जी ने गाए हैं 99% हिट, सुपर हिट से लेकर मल्टी जुबली तक साबित हुए। एक और जबरदस्त सॉन्ग आप सुनिए, 1966 एट फिल्म देवर, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन लाल नागरत, मीर बकेंतास म्यूजिक डायरेक्टर रोशन जी का बनाया हुआ है अति सुंदर मीठा धुन, दिल को चीर कर रख देगा ब्रोकन हार्ट सॉन्ग। खसकरी फदोर महान लेखक द ग्रेट आनंद बख्शी जी, आया है मुझे फिर याद वो जालिम, क्या बात है। एखर का नीजैन है मुकेश जी के आवाज में, उन्हीं के याद में, एंड स्पेशल फॉर अल मुका फैंस।

लाखों करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस दमाए थी मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में। ये अति सुंदर बयान उन्हीं के आवाज में, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये अति सुंदर बयान मैंने आप सभी श्रोताओं के लिए पेश किया। 13 मिनट बाकी है 9 बजने में। अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है साथियों, कॉम्पोनेट दो ब्रूडर्स कल्याण जी आनंद जी और मिल के सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सॉन्ग जो मुकेश जी ने राज कपूर जी के लिए गाए थे। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे, एक ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स जो करोड़ों लोगों के दिलों में अभी तक गूंजते हैं।

Beautiful composing by the brothers Kalyanji Anandji uit de film Chalia 1960. Mere toote hue dil se koi to aaj ye puche. The mighty Mukesh ji ke beautiful awaaz mein unhi ke janamdin ke upaliksh mein ye ti sundar bayan aap shrotaon ne sune. अगला बयान एक और जबरदस्त दिल को छू लेने वाला सॉन्ग है एक फिल्म पूर्व और पश्चिम और एक बार फिर द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और मुकेश जी टुगेदर ये अति सुंदर बयान को सजाए हैं और कम म्यूजिक बजा है मरा है बस बोस और कौश दारुण वर्धित ओक एन सुपर हिट सॉन्ग है फील माल आल बकेक मिल के सुनते हैं कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे एंजॉय.

फोन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस द बलैस्त्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को भी एक बार फिर से स्वागतम। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड नतीलक ससलो बिलोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड बदंत फॉर हेट लेस्टरन। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट से राम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यार। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल फरमान डॉक्टर फ्रेड डॉक्टर इन कंटोर यूरोप डू फॉलो द टेलीफोन नंबर्स 0736 3266 2267। फिर तक कंटोर और स्टूडियो कतार का नंबर है 0736 3266 2267। जो भी रेडियो का काम होना देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। यू बेंट फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना और हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना, और आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। Bent you noch in lid van Fahun Hindustani Radio to Guzaris Binti Nibidin kiya ja raha hai ki aap bhi jald se jald Fahun Hindustani Radio ka member bane aur roko bhi banaye, jaise main aap sabhi se keh raha tha ki aap sabhi ko to dher sare fayda hi fayda hai. Recent hebben we ook onze eigen karaoke team van Fahun Hindustani Radio ek baris se jada ho gaya hai. और हम लोग जोर तोड़ से उफन करते हैं, रपतेर करते हैं, तो एक एयर पर वेक एंड क्रोट स्टूडियो बैंस और कुछ ना कुछ सुना चुके हैं महफिलों में हम लोग और कुछ सुनाने वाले हैं। तो फॉलो ऑन सोशल मीडियाज एंड ऑफ द होम रूपर्स एंड होम रूपस्टर्स रखा टी शेयर से एक रेजिन वन एयर वाई हेल बेन कॉर्ट फॉर यू खान ऑपरेटर अमेंट यू ओफ हार्ट वेलकम। तो आप भी आकर इस छोटा सा मोटा सा जो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बन चुका है और जो बनते जा रहे हैं, आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अप 0736 3267। फिर तक एंड फ्राग नार ऑन से टीम लीडर डॉन एंड ओनली मैस्ट्रो जॉनी नंबर वन। Natuurlijk ook u bent van harte welkom. वादा के मुताबिक एक खिदम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ। और देखा जाए तो बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म कहानी किस्मत की तक, जो रिलीज किया गया था निहरीन सैफ तक में। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है मलकाय हुस्न डिग्रेत रेखा जी के साथ, और फिलियन रोल में अदा किया है उस जमाने के महान एक्टर डिग्रेत अजीत जी। कॉमेडियन चार्ली भी इस फिल्म में काम किए हैं, और शैती जग्गू जी और कुछ और लोगों ने महान संगीतकार जोड़ी द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी का साज और संगीत है, और सभी गाने लिखा है महालेखक राजेंद्र कृष्ण जी। कुछ गाने सुना चुके था मैं सुना चुका था और कुछ गाने हैं सुनाने के लिए। तो अगला बयान, दुनिया मुझे कहती है कि पीना छोड़ दे, ये कह रहा है आप सभी से हसीनों का पुजारी और संगीतकार का बादशाह और सहिंशा वन एंड ओनली मैस्ट्रो किशोर दा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग आप श्रोताओं सुन रहे थे। दुनिया मुझे कहती है कि पीना छोड़ दे, क्या बात है। हसीनों का पुजारी किशोर दा के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। कंपोजर अरेंज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी फ्रॉम द मूवी कहानी किस्मत की आई 1973।

अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं यारों। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 11 मिनट गुजर चुका है 9 बजकर। रात्रि का प्रोग्राम बुधवार 20 जुली 2020 का हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अगला बयान फ्रॉम द मूवी कहानी किस्मत की, एक बार फिर क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में। तू ना तू यार है मेरा कंपोज अनिच अप्पाई, द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, अल्फाज है राजेंद्र कृष्ण जी का।

फुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कहानी किस्मत की, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एड्रियन सीक्वेंटर गकॉम्पोनेर्ड और ब्रूडर्स कल्याण जी आनंद जी। सुंदर बयान आप सुनिए और ये भी है टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कहानी किस्मत की 1973 गकॉम्पोनेर्ड डोर द गब्रूडर्स कल्याण जी आनंद जी। और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में द यारहे लाखों करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी जिसका आज जन्मदिन है en als hij in leven zou zijn zou hij vandaag 103 jaar geworden zijn। एक जबरदस्त सॉन्ग, इतना सच्चाई है इस गाने में, जरा अल्फाजे पर जरूर ध्यान दे। टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कहानी किस्मत की, एंजॉय द म्यूजिक।

अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। एडवो फिल्म के कहानी किस्मत की 1973 कंपोनेट डॉ ब्रूडर्स कल्याण जी आनंद जी राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग कब तक ना दोगी दिल और सुनाने वाले हैं आप सभी को द क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल ऑफ कोर्स आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनिए।

Two.

0: कब तक ना दोगी दिल, कब तक uit de film Kahani Kismet Ki uit 1973. Oude Sati Sati Agri Bayantha uit de film Kahani Kismet Ki Ka. Dus had je sabhi nagme uit de film Kahani Kismet Ki mein suna chuka hoon. Ab lekar chalte hain aap sabhi ko jo also release kiya gaya tha 1973 mein ek zabardast movie The Gold Medal. The Gold Medal होना चाहिए. और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है ब्यूटी क्वीन मलकाय हुस्न द ग्रेट राखी गुलजार जी के साथ, और साथ ही साथ जबरदस्त कलाकार द ग्रेट अभिनेता जितेंद्र जी भी इस फिल्म में काम किया है, और फिलियन का रोल अदा किया है शत्रुघ्न सिन्हा जी. महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट ग्रेट ग्रेट शंकर जय किशन जी के साथ है, और गाने लिखे हैं उस जमाने के महान लेखक द ग्रेट इंदिवर जी. तो फिल्म गोल्ड मेडल, द गोल्ड मेडल से आप सॉन्ग्स सुनेंगे. एक जबरदस्त सॉन्ग है, और उस जमाने के मशहूर गाने वाली द ग्रेट शारदा जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए शंकर जय किशन के साथ पर ये अति सुंदर बयान की धीरे धीरे मेरे दिल के पास.
1: धीरे

Beautiful Song from the movie The Gold Medal 1973. धीरे धीरे मेरे दिल के पास मशहूर गाने वाली उस जमाने के डे ग्रेट शारदा जी के ब्यूटीफुल आवाज में दी सुंदर बयान आप सुन रहे थे। पूरे 9:30 का वक्त हो चुका है साथियों, तो वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी हो जाए ना मैं शेर के चाहने वालों के लिए। कुछ ताजे ताजे लिख कर भेजे है भैया भूपेंद्र जी, यारों का यार जो है हमारा, तकरीबन 12 साल से मुझे मुंबई शहर से भेज कर देते हैं लिख लिख कर, जो मैं आप श्रोताओं को सुना देता हूँ। तो जरा गौर फरमाए, अर्ज क्या है यारों की, वक्त बदल जाता है इंसान बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है इंसान भी बदल जाते हैं, वक्त वक्त पे रिश्तों के अंदाज भी बदल जाते हैं, कभी कह दिया अपना तो कभी कर दिया पराया, कभी कह दिया अपना तो कभी कर दिया पराया, ये तो दिन रात होता है, दिन और रात की तरह जिंदगी के एहसास बदल जाते हैं यारो, यही तो जिंदगी है ना। काश मेरी जिंदगी का अंत कुछ इस कदर हो कि मेरी कब्र पे उनका घर हो, वो जब जब सोए जमी पर मेरे सीने से लगा उनका सर हो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्या बात है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है, क्या बात है। खुदा करे जिंदगी में ये माकाम ना आए, खुदा करे ये जिंदगी में ऐसा मकाम ना आए, तुझे भूलने की दुआ करूं और दुआ में तेरा ही नाम आए, आंखों में आंसू और होंठों पे मुस्कान, वाह रे वाह जिंदगी यही है तेरी पहचान। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू ना जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना है, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना है, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये कुछ शेर्स था, आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने को। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है, पैट्रियट सॉन्ग है, आजादी के बारे में जाता है यारो, और कोरस के साथ मिलकर सुनाने वाला है आप सभी को सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब शंकर जय किशन के साज इंदिवर जी के अल्फाजे, आजादी आई भी तो क्या।

क्या बात है, इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, और जो अपने ही अंदाज में शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रवि साहब जी गा रहे थे शंकर जय किशन के साँच पर, और अल्फाज था एंडीवर जी का, एक देशभक्ति का गाना था। मिनट रह गया है साथियों 10 बजने में, और आप चुन है आप ही का मनचाहा रेडियो स्टेशन पर बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम गीत और गजल ओथ इज गोल्ड, खलिंत मैत संगीतकार का दास्तान नाम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और नगमे चल रहे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है, और हम पहुंच चुके हैं फिल्म द गोल्ड मेडल तक जो रिलीज किया गया था 1937 तक में। अगला बयान एक और जबरदस्त नगमा है, कुछ जमाने के बारे में जाता है, और सुनाने वाला है महान फनकार द ग्रेट सिंगर पद्मश्री महेंद्र कपूर जी, और ये भी शंकर जय किशन के साथ पर इंदिवर जी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान। अल्फाज़ पे थोड़ा थोड़ा थोड़ा ध्यान जरूर देना, जमाने तो हरे नोटों का है यारो।

वतन इज्जत शान है पैसा, अरे सच पूछो तो इस युग का अब भगवान है पैसा। बोलो जगतपति पैसा भगवान की जय।

0: मुझे डरता बोलो कैसा भगवान की जय।
1: बोलो पैसा भगवान की जय। पद्म श्री महेंद्र कपूर जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप सुन रहे थे आई द फिल्म द गोल्ड मेडल 1973 गकम्पोनेर्ड डोर द महान संगीतकार जोड़ी शंकर जय किशन और अल्फाजे था एनजीओर जी का। 15 मिनट बाकी है साथियों 10 बजने में। अगला बयान एक और अति सुंदर सॉन्ग है और वो सुनाने को जा रहे देशभक्ति सॉन्ग है। पुराने जमाने का महाकवि और लेखक श्री राजकबीर इंद्रजीत सिंह तुलसी जी का लिखा हुआ और गाया हुआ ये अति सुंदर देशभक्ति का गाना आप सुनिए। ऐ मेरे देश के अमर शहीदों क्या बात है। वेल कॉम्पोनेट डोर दहेर शंकर और जय किशन मिल के सुनते हैं साथियों। आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम अल्फाजे पे जरूर ध्यान देना।

जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता हो। तुमने ही फरमाया था के मौत मिले तो डरना क्या, अरे मौत को मार के मरना चाहिए, मौत से पहले मरना क्या। इस गुलशन की हर फुलवाड़ी उग उग झड़ झड़ कहती है, फूल मरे तो मर जाए,

क्या अल्फाज़े है और क्या अंदाज से गाया है आप सभी के लिए महान कवि राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी जी एन धुन बनाया है शंकर जय किशन जी ने। अगला बयान मेरे कातिल जरा बोतल से उठा क्या बाजे कह रही है The Queen of Rock and Roll from the Bollywood Film Industry, Asha Bhosle ji, 1973, gecomponeerd door Shankar Jaikishan.

ब

मेरा कातिल उठा बोतल, एक जबरदस्त कैबरे सॉन्ग uit de फिल्म द गोल्ड मेडल 1975 gecomponeerd door Shankar Jaikishan और अल्फा जेठा इन दिवर्जी का। 6 मिनट बाकी है 10 बजने में साथियों, तो फिल्म गोल्ड मेडल का एक आखिरी बयान आप सुनेंगे। अभी आप एक कैबरे सॉन्ग सुना, अब आप सुनिए एक मुजरा सॉन्ग क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में, और साथ ही साथ आखिरी बयान है फिल्म गोल्ड मेडल 1973 गकंपोनेर डोर शंकर जयकिशन और अल्फाजे इंदिवर जी का।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूं साथियों तो 10 मिनट गुजर चुका है, यानी 6 मिनट गुजर चुका है 10 बजकर, और आप चुन है आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर फाउन हिंदुस्तानी दनहाक शहर का। या इंटरनेट के लहर द्वारा faunfm.nl पर हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सुसलो बिलो बी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड बदाउट फॉर हेट लेस्टरन। जो भी रेडियो का काम हो डेंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, खास फरमाई से जरूरी खबरें इस तिहारे डेंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। सभी जानकारी अब 07-362-2047 या तो अब 07-362-2077 पर। यदि नो है लेट फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। नतीले बेंती ओक फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रेक्लाम बनाते रहना। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग है तो हम लोग भी है ना। वर के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ। सभी नगमे फिल्म द गोल्ड मेडल 1973 का आप सुन चुके हैं। अब लेकर चलते हैं एक मूवी जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1973 में और जो काफी नाम हलचल मचा दिया था हमारे सूरीनाम देश में, फिल्म जुगनू। तो फिल्म जुगनू में से अब आप गाने सुनेंगे। म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन के साथ है, आनंद बख्शी जी की अल्फाजे है। और इस मूवी में धर्मेंद्र जी ने काम किया है अपना ब्यूटीफुल वाइफ हेमा मालिनी जी के साथ। प्राण और महमूद ललिता पावर भी इस फिल्म में काम किए हैं, साथ ही साथ अरुणा ईरानी जी। सभी गाने आनंद बख्शी जी ने लिखे हैं, तो उन्हीं फिल्म से उसी फिल्म से आप नगमे सुनिए। गिर गया झुमका।

ना क्या बात है, अति सुंदर बयान, गिर गया झुमका भैया गिरने दो। एड फिल्म जुगनू, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी आई द यार 1973। लता जी किशोर दा के आवाजों में अति सुंदर बयान श्रोताओं ने सुना और देखा जाए एस डे बर्मन जी के साथ आनंद बख्शी के अल्फाजे। 13 मिनट गुजर चुका है साथियों, 10 बजकर और वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है। अगला बयान फ्रॉम द सेम मूवी जुगनू, और इस बार एक जबरदस्त सॉन्ग है सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को, संगीतकारों और सभी गायकों का बादशाह, हसीनों का पुजारी एक बार फिर किशोर दा के ब्यूटीफुल आवाज में, प्यार के इस खेल में, फ्रॉम द मूवी जुगनू।

प्यार के इस खेल में, अरे चाहे भेज दे मुझे जेल में, ये कह रहा था हसीनों का पुजारी और संगीतकार का बादशाह शहंशाह दीवाने डौली किशोर दा आई द फिल्म जुगनू 1973। तो साथियों कुछ आखिरी शेर्स हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, खास करके हमारे शेर्स के जाने वालों के लिए। याद करने से किसी का दीदार नहीं होता, यूं ही किसी को याद करना प्यार नहीं होता। यादों में किसी के हम ही तड़पते हैं, यादों में तो किसी की हम ही तड़पते हैं, बस उसे हमारे दर्द का एहसास नहीं होता। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट के नहीं आते, बीते हुए पल तो कभी लौट कर नहीं आते यारो, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। नाराज होना आपसे गलती कहलाएगी, आपकी रुसवाएं से सांसें थम जाएगी। हंसते रहना हमेशा, हंसते रहना तू हमेशा, आपकी हंसी से हमारी जिंदगी सवर जाएगी। जिंदगी को समझना है तो मुझे देखो, जिंदगी को अगर समझना है तो मुझे देखो यारो, कह गया पानी का बुलबुला और ये भी जाते जाते। आखिर शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में यारो, और वो इस तरह से है कि खुशियों से नाराज है मेरी जिंदगी, खुशियों से नाराज है मेरी जिंदगी, प्यार की मोहताज है मेरी जिंदगी। हंस लेता हूं लोगों को दिखाने के लिए, हंस तो लेता हूं लोगों को दिखाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी जिंदगी। वाह आबोए श्रीफियर है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय डियर। तो था कुछ ताजे ताजे शेयर्स जो भाई भूपेंद्र जी ने भेजे हैं, और वो अपने ही अंदाज में मैं आप श्रोताओं को सुना दिया। तो वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये सुपर हिट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जुगनू की, चले आना तू पीपल के नीचे अगर मिलना हो तो। क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी एक बार फिर।

जब बाहों में जुगनू क्या बात है, चले आना पीपल के नीचे, कह रही थी क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी फ्रॉम द मूवी जुगनू 1973 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी अनंत जी। संगीतकार फिल्म जुगनू का सचिव देव बर्मन होना चाहिए, ये भी होता है, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है ना।

साथियों, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को। ये आज उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ साथियों कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये आज उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे में आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ सरनामी संगीत लेकर। पहला दूसरा तीसरा अध्याय लेकर, पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और तीसरा अध्याय में कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो मुझे आप सभी इजाजत दे, जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना। कुछ साथियों हैं जो आप लोगों के आगे में सेवा करने वाले हैं और मुझे आप सभी इजाजत दें। और जाते जाते हमेशा की तरह तो आदत से जो मजबूर हो गया हूं ना, कुछ गुनगुना देता हूं किशोर दा के याद में। आज बिल्कुल बेहतरीन है, कुछ पुराने धुन है, कोशिश करता हूं

I love you all from the bottom of my heart, my ladies and gentlemen. और अगर कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा आप सभी के खिदमत में. बाय बाय. श्री बी स्वीटी शशलोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड अटिल गुदंत फॉर हेट लाइस्ट्रन. बाय बाय.

जी हाँ, तो अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं? गंवार में से निकाल रहे हैं आशा जी और रफी साहब।

फिल्म कमार में से निकाले हमने नौशाद अली की साज पर, और रफ़ी साहब और आशा जी आपको सुनाई ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चून हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये पेश करूं, बस धमाकेदार गीत है।

एक बेचारा प्यार कमारा, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है? जी हाँ, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ अ मिलियंस कंचन जी के साथ फिल्म धर्मात्मा में से है।

तुमने किसी से कभी प्यार किया है, ये शानदार गीत चला। जी हाँ, ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, तो चलिए कार्यक्रम में हम आगे कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से,

0: दुनिया में हमारा दिल होते है, ये शानदार गीत हम निकारे फिल्म दिल ही तो है में से शंकर जय किशन के साज पर पेश हुआ ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि लीजिए लता जी एक बार फिर है, जी हाँ, पंडित रविशंकर के त्रिभुत के लिए निकली शस्त्र का ये फिल्म है।
1: ये ऑल इंडिया रेडियो बम्बई है। अब हम आपको कुछ पुराने गानों के रिकॉर्ड सुनाएंगे। आज से 10 साल पहले इन गानों ने धूम मचा दी थी। पहले सुनिए सांवरे सांवरे, गायिका अनुराधा राय।
0: जिसे के पंडित रविशंकर वो मशहूर सितारिस्त थे। लता जी की आवाज में

ये साज कभी पंडित रविशंकर जी ने स्टेज पर बजाया था और इसी साज से उन्होंने ओपनिंग की यानी शुरू की। तो ये धुन को म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन ने इसमें जान डाल दी और इसे लता जी से ये धुन गवाया शब्दों के साथ। और हमने पेश की वो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत पेश करने वाले आशा जी उर्फी साहब जी, हाँ फिल्म जिद्दी में से निकाले हैं।

आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म ज़िद्दी में से निकाले हैं ये गीत और हमने पेश किए आपके लिए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ, लता जी और मन्ना दे जी। जी हाँ, लता जी और मन्ना दे जी मिल के आपको सुनाएंगे ये शानदार गीत। और देखते हैं तो इसे मैं निकाल रहा हूँ फिल्म रात और दिन में से, शंकर जय किशन के साज पर, बस इस तरह से।

लता जी और मन्ना दे जी फिल्म रात और दिन में से निकाले हैं और शंकर जय किशन के साज पर हमने पेश किए। लीजिए एवरग्रीन किशोर कुमार अपने प्यार की इजहार कर रहा है और आगे इन्हीं से सुनिए एवरग्रीन किशोर कुमार।

अहंत हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

खिलते फूलों जैसे लबों पर हंसी हो, ना कोई गम हो ना कोई बेबसी हो, सलामत रहे ज़िंदगी का यह सफ़र, जहां आप रहें वहां बस खुशी ही खुशी हो। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आपके लिए फिर से प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान यानी सपने। सपने हमें क्यों आते हैं और सपनों का मतलब क्या है।

0: आज आपको जिस विषय के बारे में बताऊंगी उसका नाम है शकुन विचार। शकुन यानी जो शगुन भी कहते हैं, शकुन भी कहते हैं, और उसका शुभ लाभ भी है और अशुभ लाभ भी है। शकुन विचार अर्थ, वास्तव में होरा गणित शकुन का मिश्रित रूप ही संहिता शास्त्र है। कालांतर में संहिता में से दो भेद और बताए गए, शकुन और प्रश्न। शकुन का फल विश्वास करने पर ही मिल सकता है। जीव ने पूर्ण जन्म में जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म किए हैं, गमन के समय पशु पक्षी उस जीवन के कर्म के पाप को प्रकाशित करते हैं, यही शकुन है। ऐसा नहीं है कि शकुन शास्त्र केवल यात्रा काल तक ही सीमित है। शकुन के अनेक आयाम हैं। घर में भी शकुन हो सकते हैं और ग्राम में भी शकुन हो सकते हैं। जिस प्रकार पेड़ पौधे एक औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि का हर जीव प्रकृति की विचित्रता और विशेषता लिए हुए है। परंतु प्राचीन शास्त्रकारों ने काली चिड़िया, कुत्ता, कौवा, गिदड़ी इन पांचों को शकुन शास्त्र में रतन की संख्या दी गई है, और उन्होंने इन पांचों के सरस्वती, यज्ञ, गरुड़, चंडी और शेदूती का अधिष्ठात देवता बतलाया गया है। शकुन उस परिणाम का सूचक है जो मनुष्य को निकट भविष्य में प्राप्त होने वाला है। शकुन मनुष्य के लिए देवीय प्रेरणा है जो शुभाशुभ फल के बीज के रूप में प्रस्फुटित होती है। यथार्थ में शकुन शब्द का अर्थ नामकरण पक्षी को अक्षय मानकर ही हुआ है। कुछ अक्षमिक घटनाओं को जो किसी शुभाशुभ घटना की घातक हैं उन्हें ही शकुन कहते हैं। सुनने वालों, ये मैंने आपको शकुन का अर्थ बतलाया है।
1: पत्ता टूटे डार से कि ले गए पवन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से ये दुख हमसे सहा न जाए।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना ये सूरीनाम के महान गायक कलाकार श्रीमान रामदेव चेतू जी की आवाज़ में था। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। अब शकुन हो तो क्या करें, यात्रा करने वाले व्यक्ति को यदि गमन करते समय कोई अपशकुन हो तो लौटकर हाथ पैर धोकर जल का आचमन करके किसी पीपल, बड़, गुलर अथवा आम के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए और प्राणायाम करते हुए अपने ईश देवता का मंत्र जाप करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण यात्रा आरंभ करनी चाहिए। यदि दूसरी बार भी विपरीत शकुन हो तो वापस आकर किसी दूध वाले पेड़ के नीचे बैठकर प्राणायाम करते हुए ईश देवता का मंत्र जपना चाहिए और पूर्ण यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। यदि तीसरी बार भी अनिश्चकुन दृष्टि गोचर हो तो उस दिन के लिए यात्रा का त्याग कर घर लौट जाना चाहिए। जिस व्यक्ति से घर से निकलते ही कोई शकुन होता है तो शीघ्र ही अपने स्वभाव के अनुसार शुभ या अशुभ फल देता है। गमन करते समय जो शकुन होते हैं, यदि प्रवेश के समय भी वही शकुन हो तो उसके बाद दूसरी बार गमन करते समय भी वही शकुन हो तो बिना विश्राम के ही बहुत शीघ्र बहुत शुभ फल देने वाला होता है। इसके विपरीत गमन करते समय शुभ और प्रवेश करते समय अशुभ शकुन हो तो दूसरी बार गमन करते समय शुभ शकुन भी कठिनाई से सफलता देते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। शगुन भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ अशुकुन और अशुभ शकुन। अब मैं आपको पहले शुभ शकुन के बारे में बतलाऊंगी सुनने वालों। जिस प्रकार अशुभ शकुनों से हानि, असफलता, अधिपतन आदि की संभावना समझी जाती है, उसी प्रकार शुभ शकुनों के विषय में लाभ, सफलता, सौभाग्यवर्धन आदि माना जाता है। कुछ शुभ शकुन तुरद्यानु हसदा हुसन मिले इस्तो की शकुन चंगेरा है। इसका मतलब है सुनने वालों, अगर हम कहीं जा रहे हैं और कोई हंसता हुआ व्यक्ति मिल जाए और इससे अच्छा शगुन और क्या होगा। सौभाग्य चिन्ह, पुत्रवती स्त्री, सुंदर स्त्री, कुमारी, स्वस्थ बालक, बनिया, पगड़ीधारी, ब्राह्मण, ज्योतिषी, विद्वान, धोबी, शिक्षक, घोड़ा, तांगा, रथ, गाय, मोर, बैल, भेड़, हिरण, कबूतर, बकरा, सांप, फलों का ढेर, फलों से लदा ठेला गाड़ी, ईख, पुष्प, तंबूल, गीली लकड़ी, दर्पण, नवीन वस्त्र, दूध, दही, दुर्वा, मांस, शराब, घी, पताका, खाद्य सामग्री से भरा बर्तन, दीपक, नगाड़ा, वाद्य, जलयुक्त, कलश, छाता, देव प्रतिमा, शुभ वचन, गोबर, शुभ समाचार, जय घोष, वेद ध्वनि, पुस्तकें, पूजन सामग्री, खिलौने, आनंददायक सामग्री, सुगंधित द्रव्य पदार्थ, खेल, वस्त्राभूषण, श्वेत माल्य सहित, मल या कूड़े आदि से भरा हुआ पात्र लिए स्त्री, गुड़ की भेली लिए हुए स्त्री या पुरुष, नारियल, छुआरे, सुपारी के लिए हुए मिठाई, मधु, धृत पेठा लिए हुए ध्वजा, पताका, पंखा, चावल, पका हुआ अन्न, सरसों, चंदन, शंख, मिट्टी, बिना धुएं की अग्नि, कमल, रतन, पशुओं का समूह, नवीन शाक, श्वेत वर्ण, स्वस्थ वृद्ध पुरुष, ईश्वर भगत, नई भरी हुई रजाई, रंगे हुए वस्त्र लिए या पहने हुए आदमी, सेहरा धारण किए हुए दूल्हा, सांड गर्जन करता हुआ हंसता खेलता बालक, हरे पत्तों की बंदरवाल, हरी धूप, सिंहासन, कपूर जलती हुई अगरबत्ती, मछली, वीणा, काजल, भुजा, मुर्दे के पीछे ले जाने वाला खाली कलश, राख, लकड़ी, राज, कीट, कपास, खुले हुए बाल, काली वस्तु, लोहा, वृक्ष की छाल, काला तेल, चमड़ा, दाल, विष्ठा, नमक, राजा, वैश्य, भोजन करते हुए, पूजा करते हुए, गांव के बाहर जलती लकड़ी, राख, पत्थर, सन्यासी के वस्त्र, बाल, धान की तुष, हड्डी, मांस। सुनने वालों, ये सब शुभ शकुन है। अगर ये चीज़ें यात्रा करने हम जा रहे हैं, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ये सब शुभ शकुन माने जाते हैं।

सुनने वालों, अब हम एक गाने की ओर बढ़ेंगे। गाना सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं। जैसे शुभ है तो लाभ है तो हानि भी है, वैसे ही अगर शुभ शकुन है तो अशुभ शकुन भी है। तो गीत के बाद मैं आपको बताऊँगी अशुभ शकुन के बारे में। सुनने वालों,

सुनने वालों, जो आप लोगों ने अभी ये गीत सुना वो है सूरीनाम के प्रसिद्ध गायक देसी रघु सिंह जी की आवाज़ में। अब मैं हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, जब आपने शुभ शकुन सुने, अब थोड़े अशुभ शकुन भी हैं, मैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे चोर, पागल, लपट, सन्यासी, ब्रह्मचारी, रोगी, लंगड़ा, नपुंसक, काना, भिकारी, जटाधारी, क्रोधी, गधा, ऊंट, भैंसा, रुदन की ध्वनि, गर्भवती या विधवा स्त्री, धूर्त, लकड़ी बेचने वाला, नाई, सुनार, लोहार, तेली, चमार, कुम्हार, मोची, शिकारी, अस्त्र शस्त्र, हथकड़ी, अंग फड़काना, ठोकर खाना, बर्तन का गिरना, मुंडे सिर वाला, बिल्ली, बिल्ली का रोना, कुत्ता, कुत्तों का लड़ना, कुत्तों का रोना, कुत्तों का कान फड़काना, बिल्ली का रास्ता काटना, बांज गाय, काला सर्प, काला पान, कौवा, वानर, तेल से भरा घड़ा, तेल, छाछ, काला नमक, गुड़, झाड़ू, काली बर्तन, हंडिया, रस्सी, छींक, दुर्वचन, रुधन, कूड़ा करकट, दुर्घटना, बाल छाए रहे, बिजली कड़के, दिन में तारे टूटना, मेहतार खाली, डलिया लिए हुए, नौ स्त्रियां या तीन ब्राह्मण, दो वैश्य, एक शूद्र, कोई मनुष्य चिकने वस्त्र पहने हुए, तिलक रहित ब्राह्मण, हिजड़ा या हिजड़ी, केश वहीन, अपंग, नंगा, तेल लगाए हुए रोती स्त्री, शराबी, काला आदमी, काली माला धारण किए हुए आदमी, कपाल, कपाल में खोपड़ी, जलती चिता, कांटेदार वृक्ष, भस्म, पत्थर लाता हुआ, पत्थर पर बैठा हुआ पुरुष, गधे को छोड़कर अन्य प्राणी पर योनि से गमन करें।

सुनने वालों, अब हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एक गीत सुनाऊंगी और गीत के तुरंत बाद मैं आपको बताऊंगी शकुन किस प्रकार फल देता है।

हमारे लाला जी जो इतना काम तूने किया, करते रहो बांटते रहो, जो लाख साल

सुनने वालों, ये जो भी आपने गीत सुना ये सुरीनाम के मशहूर गायक पंडित स्वामी प्रसाद जी की आवाज़ में था और वो एक बहुत अच्छे कलाकार थे और बहुत उनके गीत मशहूर हुए सुरीनाम में। और इनकी बहन श्रीमती सम्राजी लक्ष्मण जी भी सुरीनाम और हॉलैंड की जानी मानी गायिका रह चुकी हैं। उन्होंने भी बहुत सारे गीत गाए जो बहुत मशहूर हुए सुनने वालों। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, शकुन किस प्रकार फल देता है। समूह का फल, जो लोग समूह में जा रहे होते हैं उसका विचार समूह के प्रधान व्यक्ति के अनुसार किया जाना चाहिए। शकुन निकट हो, शकुन प्रायः निकट होने पर ही फल देते हैं। बहुत दूरी पर होने वाले शकुन प्रायः फलीभूत नहीं होते। शकुन दाहिने हाथ की ओर, जो शकुन हमारे दाहिने हाथ की तरफ होने पर शुभ रहता है और हमारे दाहिनी ओर की नसा छिद्र से श्वास सूर्य स्वर चल रहा है तो शकुन का शीघ्र ही उत्तम फल मिल जाता है। इसके विपरीत बाईं ओर से स्वर चंद्र स्वर चल रहा हो तो शकुन का फल भी विपरीत मिलता है। नर शकुन, पशु पक्षियों में नर के शकुन को श्रेष्ठ माना जाता है। स्त्री अथवा नपुंसक होने पर मंद फल मिलता है। विभिन्न दिशाओं में बलवान शुभ, पूर्व में बलवान मोर मोदकी सिंह ध्वनि पित्रा हिरण कुकड़ा कंठ फोड़ा हाथी मुर्गा आदि। दक्षिण में बलवान क्रूर शब्द वाले पशु पक्षी जैसे कौवा रीछ कबूतर उल्लू गिदड़ी हरियल तेलगुरु सियारी पिंगला आदि। सुनने वालों, ये सब पशु पक्षियों के नाम हैं। पश्चिम में बलवान कुकुरी गाय बगुला बिलाव हंस चातक तीतर लोमड़ी खरगोश वादों का बजना कुत्ते की ध्वनि सारस आदि। उत्तर दिशा में बलवान घोड़ा चूहा कोयल नीलकंठ शंख कुटुकू बढ़िया हिरण चातक पुण्य वचन घंटा सिंह की ध्वनि आदि।

मंगल अरु इतवार दिन और शनिश्चर लेन चरकारज को मिलते हैं सूरज के दिन तीन। तीन दिन सुबह प्रातः उठते समय सूर्य का दायां स्वर चलना चाहिए। उठने से पहले अपनी दाई हथेली को 5 बार चूम कर इससे अपने दाएं अंगों को स्पर्श करके सर्वप्रथम उठने के लिए अपना दायां कदम पहले भूमि पर रख कर उठें। बाकी दिनों में चंद्र स्वर बाएं हथेली तथा बाएं पांव का प्रयोग करें। यह समृद्धशाली और प्रसन्न रहते रहने का एकमात्र रामबाण है। सुनने वालों, आप तो सब जानते होंगे कि जब हम सुबह उठते हैं तो एकदम से ना उठें, पहले हम अपना दायां पैर आगे रखें, फिर हथेली को चूमें और फिर सारे अपने शरीर को उससे स्पर्श करें। तो ऐसे हमें उठना चाहिए, एकदम भाग कर नहीं उठना चाहिए। नीचे ऊंचे शकुन, निकट और नीचे हुए शकुन शीघ्र फलदायी, ऊंचे और दूरी पर होने वाले शकुन विलंब से फलित होते हैं। सूखे पेड़ पर शकुन, वही पक्षी यदि सूखे पेड़ पर शकुन देता है तो अपशकुन फलदायक होता है। महल मंदिर पर शकुन, जब महल मंदिर मंगल द्रव्य अथवा किसी रमणीय स्थान पर बैठकर कोई पक्षी शकुन देता हो तो रस, दूध, फल, मधु अथवा पुष्प युक्त वृक्ष पर शकुन देता हो तो शेष फल मिलते हैं। दिन रात्रि के शकुन, दिन के शकुन अपने काल में ऊंचे स्थान पर बैठे हो, रात्रि के शकुन जल के समीप बैठे हो तो बलवान होते हैं। स्त्री से पुरुष बलवान, प्राणियों में क्रमशः नपुंसक से स्त्री और स्त्री से पुरुष बलवान होता है। गांव में वन के शकुन का होना और वन में गांव के शकुन का होना, रात्रि में दिन का शकुन होना और दिन में रात्रि के शकुन का होना घर नहीं है। सुनने वालों, अब मैं आप लोगों के लिए गाना चलाती हूँ, आप सब गाना सुनिए।

सुनने वालों, अभी आप लोगों ने जो ये गीत सुना, ये गीत था सूरीनाम के मशहूर गायक श्रीमान रामदेव चेतु जी की आवाज़ में। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। नदी के दूसरे किनारे पर शकुन, रति मुक्ति, रोग पीड़ित, त्रासित, झगड़ा और मांस की अभिलाषी, नदी के दूसरे किनारे बैठे पशु पक्षियों के शकुन भी घारे नहीं होते। आठ दिशाओं के 32 भेद, पूर्व और अग्नि कोण के बीच कोषाध्यक्ष, लोहार, तपस्वी, अग्नि कोण तथा दक्षिण, कारीगर, भिक्षु, नंगी स्त्री, दक्षिण तथा नेत्रस्थ, हाथी, गोप, धार्मिक लोग, नेत्र तथा पश्चिम, उधम स्त्री, प्रसिद्धा स्त्री, चोर, पश्चिम तथा वावेव, कलाल, चिड़ीमार, हिंसक जीव, बायव तथा उत्तर, विष घातक वाले तथा इंद्रजाल जानने वाले, उत्तर तथा ईशान, धनवान, ज्योतिषी, माली, ईशान तथा पूर्व, वैष्णव, चरक, बौद्ध भिक्षु, घोड़ों की रक्षा करने वाला, आठ दिशाओं में राजा, राजापुत्र, सेनापति, धनवान, जासूस, ब्राह्मण, हाथियों के समूह का स्वामी, पूर्वादि चार दिशाओं में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, पुरुष शब्दवाचक तथा स्त्री संज्ञक, बाईं ओर से शुभ, गिद्धड़ी, पातकी, कलाकार, छछुंदर, चपकिया, शगरी, कोयल तथा पुरुषवाचक पक्षी, दक्षिण में शुभ, बंदर, छीक मृग, मोर, शिरकट, रोरो मृग, बाज, स्त्री संज्ञक, नाम लेना, दर्शन करना, अग्रभाग में शब्द करते शुभ, बकरा, मोर, कीर्तन, सम्मुख आना अशुभ, नेवला, नीलकंठ, गिरगिट।

ये जो आपने गीत सुना है, ये गीत श्रीमान दयाराम जी ने और महेंद्र गोधर जी ढोल पे थे, श्रीमान महेंद्र गोधर जी हारमोनियम पे थे दयाराम भाई, और ये हॉलैंड के इतनी मशहूर जोड़ी कि सब इनको जानते हैं, जैसे राम लक्ष्मण जी की जोड़ी, एक के बिना दूसरा अधूरा था। समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

0: तुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरुम देवा सर्वकार्यशु सर्वदा रुद्ररूप मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा। अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाउन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज हम सब फिर एक बार उपस्थित हो गए स्टूडियो में। और अभी तो शांता जी और राजेंद्र जी जो अभी तो स्टूडियो में नहीं पहुंच पाए हैं, पर शांता जी अपना कुछ कहते हैं, फिर उसके बाद में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: हाँ सुनने वालों, संजय जी हमने तो अपनी हाजिरी दे चुकी हूँ और आप मेरी को सुन रहे हैं, तो यहाँ से मेरे भी शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम और सभी को सत श्री अकाल है इस ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
0: शांता जी ऐसा करते हैं कि पहले जो हमारे सुनने वालों जिस गीत का इंतजार करते हैं हर सप्ताह की तरह, जो अभी उदास बैठे हुए हैं, तो क्यों ना उस गीत को पहले चला देते हैं, फिर कार्यक्रम का और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज का कार्यक्रम बड़े मज़ेदार कार्यक्रम है, तो क्यों ना पहले वो गीत चला दिया जाए।
1: हाँ जरूर से यहाँ से चला देंगे कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे। राम जी तो सबका बेड़ा पार करते हैं। सुनने वालों मेरा नमस्कार, फाहुन हिंदुस्तान रेडियो के सभी श्रोताओं को यानी राजेंद्र सिंह का नमस्कार। आज हम अपना विषय लेके आए हैं एक बेटी का पिता, और इसके बाद कुछ और भी रहेगा कार्यक्रम, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए संजय जी चाहे कुछ अपना
1: बोलना चाहते हैं। दोस्तों आज का विषय जैसे कि अभी आपने सुन ही चुके हैं कि एक बेटी का पिता, पर अभी तो उसे और हम सब छलांग लगाने वाले हैं, पर आज का ऑफिशियल जो विषय रखा गया है, जो हमारे खोजी सेना द्वारा आज के लिए हम सबके पास रखा गया यहाँ है, तो वो है कि एक ब्राह्मण का महत्व, और उस ओर अभी हम सब काफ़ी जानकारी लेकर आए हैं कि ब्राह्मण का महत्व, उसके बारे में हम सब अभी आपको जरूर सुनाने वाले हैं। पर राजेंद्र जी, पहले तो ये गीत जो हम सब अभी सुने कि तेरा राम जी कड़े बेड़ा पार, तो ये गीत सुन के आपको कुछ होता है या नहीं? आपको ये नहीं लगता कि अब ज्योति का प्रकाश प्रारंभ हो गया?
0: हाँ, ज्योति का प्रकाश प्रारंभ हो गया, और जो बहुत ही सुंदर सा जो गाना है वो है कि बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं।
1: बेटियां तो बाबुल के रानियां हैं।
0: हाँ,
1: क्यों ना हम कुछ उसके बारे में सुनते हैं, तो फिर गीतों के, और जो हमारे शांता जी अपने पिटारा से भर के लाए हैं उस ओर बढ़ेंगे।
0: क्यों ना गीत से पहले कुछ ना बेटी के बारे में सुना जाए, इसके बाद ही आगे कार्यक्रम रहेगा। एक बेटी ने अपनी बेटी की, एक पिता ने क्या किया कि अपनी बेटी की सगाई कराई, और लड़का बड़े अच्छे घर से था तो पिता बहुत खुश हुए। लड़के और लड़के के माता पिता का स्वभाव देख के बहुत अच्छा लगा।

0: तो पिता के सिर से बड़ा बोझ उतर गया। एक दिन शादी से पहले लड़के वालों ने लड़की के पिता को खाने पे बुलाया। पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वह ना कह सके। लड़के वालों ने बड़े ही आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। फिर लड़की के पिता के लिए चाय आई। शुगर की वजह से लड़की के पिता को चीनी वाली चाय से दूर रहने को कहा गया था।
1: यानी कि चीनी वाले चाय से दूर?
0: हाँ, क्योंकि
1: ऐसा क्यों?
0: डायबिटीज था, शुगर।
1: डायबिटीज किसको कहते हैं शांता जी?
2: साइकर सिक्त
1: को कहते हैं
2: डायबिटीज।
1: तो उसके यानी कि बेटी का पिता का वो मुसीबत था।
0: हाँ, लेकिन लड़की के होने वाले ससुराल में थे तो चुप रहकर चाय हाथ में ले ली। उन्होंने नहीं बोला कि मेरे को डायबिटीज है, क्योंकि बेटी के ससुराल में थे इसलिए चुपचाप चाय ले ली। चाय की पहली चुस्की लेते ही वो चौंक से गए। चाय में चीनी बिल्कुल नहीं थी और इलायची भी डली हुई थी। लेकिन उन्होंने देखा कि चाय में तो चीनी थी नहीं, तो उनके लिए तो अच्छा रहा।
1: हाँ, क्योंकि वो उसे डायबिटीज की मुसीबत था।
0: हाँ, और उनको इलायची भी चाय में थी तो स्वादिष्ट रहा।
1: ऐसा तो
0: हाँ, तो सोच में पड़ गए कि ये लोग हमारी जैसी चाय पीते हैं। उन्होंने सोचा कि ये लोग हमारी जैसी चाय पीते डायबिटीज वाली,
1: हाँ जी,
0: तो चल जाएगा। दोपहर में खाना खाया, वो भी बिल्कुल उनके घर जैसा। दोपहर में आराम करने के लिए दो तकिया पतली चादर उठा दे ही सोफे पर पानी पीने को दिया गया। फिर उनको क्या किया कि दोपहर में दो तकिया दी पतली वाली और चादर उठते ही जैसे वो सौंफ का पानी रखा था वो दिया गया पीने के लिए। वहां से विदा लेते समय
1: राजेंद्र जी, ये सौंफ का पानी क्या चीज है?
0: सौंफ का पानी होता है, एक सौंफ रहा उसका पानी पियो या सौंफ खाओ खाना खाने के बाद तो डाइजेस्ट हो जाए।
1: इंडियन रेस्टोरेंट में सब जगह रहता है
0: और चीनी थोड़ा रहा, डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा रहा, वो चाहे पिए खाए।
1: ये एक चीज है वो मुफ्त में देता है कि उसमें
0: मुफ्त
1: में
0: वो बाहर रखा रहता है, वो जाते समय थोड़ा खा के।
1: पर शांता जी इसके बारे में कुछ और कहने वाला, क्योंकि इन्होंने चुप चुप करके और लिया था मेरे ख्याल से वहाँ होटल से। शांता जी ऐसा हुआ कि नहीं?
2: और यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ हमने खरीद कर भी रखी है
1: घर से।
2: हाँ, दुकान से खरीद कर घर पे रखी हूँ।
1: यहाँ पर
0: मिलता
2: है।
1: वही तो बात है राजेंद्र जी, यहाँ क्या नहीं मिलता है?
0: यहाँ सब कुछ मिलता है,
1: क्योंकि ये एक देश है जहाँ पर सब कुछ मिल सकता है। ये एक देश, हर बार हमें तो लोग कहते रहते कि ये एक स्वर्ग के समान है ना। यहाँ पर 12 मंजिल पे आप नल खोलो तो पानी गिरता है, कभी बिजली का कमताई नहीं, और जब चाहे तब यहाँ तक कि सौफ भी, सौफ कहते हैं ना,
2: सौफ, सौफ,
1: तो जो हम छुप छुप करके वहाँ और होटल में लेते थे यहाँ पर हमारे पास भी हो सकता था।
2: नहीं, वो छुप कर नहीं, वो ऐसा रखा है कि आप ले सकते हो। हाँ, पचौनी
1: उसे कहते हैं। तो
2: वो दिखते हैं जैसे कोमेन, कोमेन का दिखते हैं
1: ऐसे, कोमेन, हाँ,
2: कोमेन,
1: कोमेन,
2: जीरा, जीरा,
1: जीरा को कहते हैं।
2: जीरा ब्राउन है और सौंफ
1: हरा होता है। तो ऐसा हुआ राजेंद्र जी, आगे का वृतांत बढ़ने से पहले क्यों ना हम सब शांता के पिटारा से
0: सुंदर से नगमा की ओर बढ़ा जाए।

0: ये बाबुल तो बेटियाँ की रानियाँ हैं, बहुत ही सुंदर नगमा रहा। और बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्यों ना बेटी के बारे में पूर्ण रूप से। वहाँ से विदा लेते समय उनसे पिता से रहा नहीं गया तो पूछ बैठे, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, ये परफेक्टली आपको कैसे पता चला। तो बेटी की सास ने धीरे से कहा कि कल रात को ही आपकी बेटी का फ़ोन आया था।
1: किसका फोन आया राजेंद्र जी?
0: उनकी बेटी का फोन आया था कि मेरे
1: बेटी ने सास को लगा दिया था।
0: हाँ, पहले लगा दिया।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उनसे कहा कि मेरे पापा के स्वभाव से बड़े सरल हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, प्लीज अगर हो सके तो आप उनका ध्यान रखिएगा। पिता की आंखों में वही पानी आ गया। लड़की के पिता जब अपने घर पहुंचे तो घर के हाल में लगी अपनी स्वर्गवासी माँ की फोटो से हार निकाल दिया। जब पत्नी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो तो लड़की का पिता बोली, मेरा ध्यान रखने वाली मेरी माँ इस घर में कहीं नहीं गई, बल्कि वो तो मेरी बेटी के रूप में इस घर में रहती है। और फिर पिता की आंखों में आंसू झलक गई और वे फपक फपक के रोने लगी।
1: ऐसा फपक फपक के,
0: फपक फपक के रोने लगी।
1: शांता जी, आपको आता है ऐसा रोना?
2: खुशी से।
1: हम लोग कहते हैं सुसुक सुसुक के, पर सुसुक सुसुक के ये नहीं, फपक फपक के रोने लगे।
0: फपक फपक के रोने लगी।
3: खुशी से पापा ने मुझ पर अपनी ख्वाहिशें लुटा दी, ऐसा ना राजेंद्र जी? खुशी से पापा ने मुझ पर अपनी ख्वाहिशें लुटा दी, मैंने बस मुस्कुराया और पापा ने पूरी दुनिया दिला दी।
0: अरे वाह,
1: या क्या बात है शांता जी। राजेंद्र जी, इस पे तो मेरा दिल कहता कुछ कहने को।
0: हाँ, जरूर
1: ना, पर ये तो कोई कही नहीं कि संजय जी आप कह दो। तो दोस्तों जरूर इस पे मैं, जैसे शांता जी ने अपना संदेश सुना है, एक पिता अपने बेटी के जो संबंध होता है ना, जब एक कन्या के जन्म होता है तो पिता तभी से अपना बेटी को एक बस खैरमंद रूप से और उसे ध्यान देते रहते हैं ना,
3: फूल की तरह।
1: हाँ, और ऐसा हुआ राजेंद्र जी,
0: जी
1: चलो एक वृतांत की ओर बढ़ जाते थोड़ा से, पर अभी तो आपको और सुनाना है।
0: हाँ, थोड़ा सा है, इसके बाद आप वृतांत में बढ़। और जब वो फपक फपक के रोने लग पड़े तो दुनिया में सब कहते हैं ना कि बेटी है इस दिन इस घर को छोड़कर चली जाएगी, मगर मैं दुनिया के सभी माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि बेटी कभी भी अपने माँ बाप के घर से नहीं जाती, बल्कि वो हमेशा उनके दिलों में रहती है।
1: ऐसा
3: क्योंकि बेटी पहचान होती है माँ बाप की, बाप की पहचान होती है।
1: राजेंद्र जी, ऐसा हुआ कि मैंने देखो, ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं तो उसी कारण नाम नहीं लिया जाता है
0: जी।
1: पर ग्रंथों में लिखा गया है कि घर पे जब कन्या जन्म लेती है ना, कन्या जब जन्म लेती है तो जो पितरो होते हैं ना, पितरो कहते हैं जो अपना जीवित है
3: जी।
1: जिनका और काम क्रिया किया गया है तो वो पितर और योनि में चले जाते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं कि उसके परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया
3: जी।
1: ऐसा क्यों? क्योंकि वो इसलिए खुश होते हैं कि उसकी परिवार से और जा करके बाद में जब बेटी कन्या जो जा करके बेटी का रूप धारण करके और एक दिन उसका विवाह होगा, कन्या दान होगा, औरों का परिवार को बढ़ाएगा, ऐसा है ना,
3: वो मध्यम होता है,
1: तो वो है उसी कारण वो अति प्रसन्न होता है।
3: ये एक कुल ने दो कुल का नाम बढ़ाता।
1: एक परिवार में जब 100 बेटा ने जन्म लिया
3: जी,
1: तो 100 बेटा होने पे परिवार आगे और आगे नहीं बढ़ सकता जब तक एक
3: बेटी ना हो।
1: हाँ राजेंद्र जी, हम सब एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे, तो फिर हम इसके बारे में भी कुछ और बातचीत होगा।
0: जरूर जरूर, जरूर।

0: जी संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
1: नहीं, कहना यही रहा राजेंद्र जी कि ये सुंदर गीत जो बाबुल प्यारे और शांता जी इस पे तैयार हो गया है कुछ करने कहने के लिए, तो उसकी
2: फेडर ऑन कर दे,
1: फेडर ऑन कर दो। तो शांता जी, आप इस पे क्या कहने वाले?
2: पहला तो मैं कहती हूँ कि गीत जो है, आवाज़ जो है, जो आप दुनिया में नहीं है और फिर भी अपना मीठी ये सुरीली आवाज अपना छोड़ गए है।
1: सही बात, ये सुरीली आवाज जो दुनिया की एक स्पेशल आवाज है, जो जिंदगी भर जब तक दुनिया रहेगा तब तक ये सुना जाएगा ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और ये गीत जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत से सारे ऐसे बातें याद आ जाती
1: है।
2: हाँ,
1: कुछ की बहुत से सारे
2: और इतने गाने हैं जी, जो एक्टी है ना हेमा मालिनी जी,
1: जी
2: वो कितनी खूबसूरत है, और
0: आपसे कम।
2: और फिर ये गीत जो पहले कोई विवाह करते थे सुरीनाम में ना,
1: तो रेडियो से चला,
2: रेडियो से बहुत चलता था ये गीत।
1: हाँ, क्योंकि ये गीत जो पहले एलपे ही होते थे ना, ऐसे जैसे आजकल रेडियो चलता है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले और तरीका था, और मेरे ख्याल से कितने खींच गए होंगे
2: वो तो है
1: ये गीत सुनाते सुनाते।
2: ये फिल्म हमने देखी है मेरे अपने बाबूजी के साथ, परिवार के साथ, मेरे पापा जी हम सभी को गाड़ी में बैठाए कर ले जाते थे फ्लैम्बोयंट वीडियोटेक में,
1: ड्राइव इन सिनेमा
2: हाँ,
1: वो वहां पर जाकर के देखे,
2: वहां पर हमने देखी
1: ये पिक्चर वहां पर जाकर के देखे। राजेंद्र जी, इस पे मैं कुछ और कहना चाहूंगा,
0: जरूर,
1: क्योंकि ये आज जैसे कि अभी आपने वृतांत बताया कि एक बेटी अपने पिता के लिए कितना और ध्यान देते हैं, कितना उसे और ख्याल करते हैं ना, ऐसा होता है अभी पिता भी अपने बेटी के भी और जब से जन्म से उनके ध्यान देते रहते हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का और एक लड़की से प्रेम हो गया,
2: अच्छा
1: प्रेम हो गया, और प्रेम से प्रेम के बाद में आ जाता है प्यार, तो लड़का लड़की में प्यार हो गया और एक दूसरे के बिना जीना अब मुश्किल हो गया।
2: हमने दो शब्द सुने आपके मुखारबिन से, वो है प्रेम और प्यार, इसमें अंतर है?
1: अभी तो अंतर इसमें बहुत है, पर अंतर की ओर बढ़ेंगे तो आज हमारे कार्यक्रम नहीं है,
2: अच्छा
1: पूरा होगा,
2: तो इसमें हम इस बात पे हम गौर करेंगे अगले बार,
1: गौर जरूर हम लोग करेंगे, पर अभी देखेंगे, अच्छा, अभी प्रोग्राम बाकी है शांता जी। तो राजेंद्र जी, ऐसा हुआ लड़का लड़की से जब प्यार हो गया तो एक दूसरे बिना जीना भी मुश्किल हो जाता है, लड़का और जा करके लड़की के पिता से कहते कि मुझे शादी करना है,
2: अच्छा जी।
1: पर एक पिता हर बार देखते हैं कि किसे अपना बेटी का और हाथ दे
2: जी,
1: क्योंकि शादी करना तो शायद आसान होगा पर निभाना कोई भी नहीं चाहते है कि अपना बेटी के हाथ ऐसा व्यक्ति के पास दे जो थोड़ा से निभाने में शायद ना कर पाए। तो ऐसा हुआ, लड़का ने गया और पिता ने बिल्कुल मना कर दिया, उन्होंने कहा कि इससे तो मैं अपना बेटी का हाथ दूंगा नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि उसमें कुछ बात होगा, और लड़की प्रेम में पागल था, अपने पिता को फोर्स करते हैं, पिता को फोर्स करते हैं कि पापा मेरा शादी करा दो
2: जी।
1: पिताजी जो बेटी को ना भी नहीं कह पा रहा है
2: जी।
1: और लड़का जो आकर के कहते हैं कि हमारा शादी करा दो, तो दोनों से पिता ये कहते हैं कि शादी करा दूंगा पर एक शर्त पे
2: जी।
1: शर्त लगाया, उन्होंने कहा शादी कराना है एक शर्त पे, आप जाकर के बारात लेकर आओ, पर बारात लेकर आएंगे तो कोई बूढ़ा साथ में नहीं रहना चाहिए, बूढ़ा साथ में नहीं रहना चाहिए,
2: ये पापा का शर्त है,
1: पापा का शर्त
2: जी।
1: लड़का जाते हैं अपने घर से और कहते हैं कि मान गए और शादी के चलो सब तैयारियां करते हैं और अपने पूरा परिवार बैठा करके और वहां पर वृतांत को बताते, पर करते कि लड़की के पापा ने, लड़की के पिता ने एक ऐसा शर्त रखे है कि शादी करना है बारात लेकर आना, पर कोई बूढ़ा साथ में नहीं रहेंगे। जब इस बात को लड़की के पिता कह रहे थे लड़का से, तो लड़का कह दिए कोई ना, सभी बूढ़ों को घर पे रहना है, मौसम ठंडी है, क्यों इधर उधर जाना। और जब यही बात वो जाकर के अपने घर से कहते हैं तो वहां पर पूरा परिवार और थे, और उसमें एक था नाना। नाना पता आपको कौन है?
0: हाँ।
1: मम्मी वाला पापा।
0: हाँ।
1: तो नाना कहते नाना चाहे जोन हो जाए पर हमें तो जाना है।
2: हाँ, ये नाना कहते हैं।
1: ये नाना, नाना कहते। जी। तो लड़का ने कहा नाना जी मान जाओ, अभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बड़ा मुश्किल से माने हैं, आप घरे रुक जाइए। नाना कहते चाहे मुझे बोरी में भर के ले जाओ पर मुझे तो जाना है। लड़का बहुत समझाए पर नाना माना ही नहीं,
2: बोरी
1: हर बार ना ना
2: ना ना
1: ना। तो उन्हें लड़का कहते भाई भरो इसे, बोरी में भरो और डिग्गी में डालो,
0: डिक्की में डालो गाड़ी की,
1: डिक्की में। और चले गए बारात लेकर खूब सा दज के जाकर वहां पहुंचे। वहां पर जब पहुंचे बारात लेकर, अब वहां दुल्हन के द्वार बिल्कुल पहुंच गए, तो दुल्हन का पिता किसी को भेजते हैं, बोलते हैं एक शर्त और। वो कहते हैं कि जाकर बोलो ये गांव के पीछे में जो नदी बह रहा है वहां दूध बहेगा तभी ये शादी होगा।
2: ये बड़ा कठिन है,
1: जो गांव के पीछे नदी बह रहा है उसमें दूध बहेगा तभी ये शादी होगा। लड़का को इस बात को सुन के वो बिल्कुल बस स्थिर हो गया, क्योंकि ऐसा बात तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि नदी में जो बह रहा है और जो गांव के पीछे में है जल से और उसमें दूध बहेगा तब शादी होगा। लड़का सोचते चलो खत्म, विवाह नहीं होगा, सभी तैयारियां कर चुके, अब बारात लौट रहा है। तभी किसी ने कहा कि अरे बारात तो लौट रहा है, क्यों नाना के मार रहे हो, नाना के तो गाड़ी के डिग्गी से निकालो। तो जा करके नाना को निकालते है, और नाना का निकालते है तो नाना पूछते है क्या हुआ भाई, तो लोग कहते हैं वहां पर कि बारात लौट रहे। नाना पूछे क्यों, उन्होंने कहा कि अब दुल्हन का पिता ने दूसरा शर्त रख दिया है कि जो गांव के पीछे नदी बह रहा है उसमें दूध बहेगा तभी शादी होगा,
0: उसमें दूध बहना चाहिए।
1: हाँ जी, नाना ने कहा कि इतना छोटे छोटे चीजों पे और ये बारात लौट रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। नाना ने पूछा किसने ये संदेश लेकर आया, लोग दिखाए कि ये ही लेकर आए, तो नाना ने कहा कि इधर आओ, जा करके दुल्हन के पिता से कह दो कि दूध का व्यवस्था हो गया है, नदी खाली करा दो।
0: बस
1: यही चीज, दूध का व्यवस्था हो गया, नदी खाली करा दो। वो जा करके व्यक्ति जा करके दुल्हन के पिता को कहते हैं कि वहां किसी ने कहा कि दूध का व्यवस्था हो गया है, नदी खाली करा दो। लड़की का पिता ने कहा कि पक्का कोई बूढ़ा आया है बारात में। तो दोस्तों ये एक वृतांत हो जाता है कि हम सब सोचते हैं कि हम सब पढ़ लिख लिए हैं, हम सब अब जान गए, सब कुछ अब अपना पार हो जाएंगे, पर खास करके हम अपने पुरखों अपने बूढ़ों के साथ में जब नहीं लेकर जाते हैं ना। आजकल ऐसा होता है शांता जी कि हम लोग जैसे विवाह संस्कार कोई भी कार्य करे और जा करके बातचीत करने को, तो हम सब सोचते हैं कि हाँ आजा, कौन जाएगा लेने के फर्सोर्किंग्स तो है इससे, और फिर पहुंचानी पड़ेगा, कौन जाएंगे वृद्धालय से लाने को और पहुंचाने के। तो हमें इन बातों पे ध्यान देना, क्योंकि अभी हम सब के कहावत है कि महिमा हमारे पुरखों के है, तो हम सब उससे बहुत से सीखना है। राजेंद्र जी क्यों ना हम सब एक गीत की ओर बढ़ते हैं, और दोस्तों इस वृतांत के माध्यम से हम जरूर अपने पुरखों के और ध्यान दे, और उन्हें हर कार्यक्रम जो कोई भी कार्यक्रम अपना करे तो उसे लेकर के और साथ में करे। राजेंद्र जी कौन सा गीत पिटारा से आप निकालने वाले हैं?
0: मेरा आसमान है पापा,
1: तो चला देते हैं।

0: मेरा आसमान है पापा।
1: दोस्तों जैसे कि अभी आप सुने, एक बेटी अपने पिता के लिए कैसे सोचते हैं और पिता जो अपने बेटी के लिए कैसे सोचते हैं। शांता जी, इस पे आपको क्या कहना है, कुछ और संदेश रखना है, या हम सब न्यूज की ओर बढ़ सकते हैं?
2: एक तो ये जरूर कहूंगी कि बेटी की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, फिर भी बेटियां कभी अधूरी नहीं होती। हर बेटी की पहचान होती है पिता, हर बेटी का अरमान होता है पिता, बेटियों के लिए पूरा आसमान होता है पिता। तो वैसे ही गीत हमने यहाँ हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से अभी आपके लिए पेश किया, तो बेटियों के लिए होता है आसमान पिता,
1: बेटियों के लिए होता है आसमान पिता। दोस्तों अभी जैसे कि आप सुन ही चुके हैं कि हम सब हमारे आज का विषय के ओर छलांग लगाना है, पर राजेंद्र जी जो इस समय कंप्यूटर पे लगा रहे हैं न्यूज़ और कमर्शियल, और उसके बाद में हम सब जो आज का विषय है उस ओर बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ तक था हमारे कमर्शियल्स और जो हमारे न्यूज़ और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, जो इस समय हम सब यहाँ स्टूडियो में उपस्थित है, शांता जी, राजेंद्र जी और मैं भी, जो आपके साथ ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश इस समय जो रखा जा रहा है। तो राजेंद्र जी, जैसे कि पता है कि आज का विषय ब्राह्मण का महत्व, उसके बारे में हम सब कुछ बातचीत करने वाले हैं, तो क्यों ना हम उस पे उस ओर यानी कि तेईमा के ओर छलांग लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ गीतों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
3: जरूर, तो पहले छलांग लगाया जाए ब्राह्मण का महत्व। एक बार की बात रहा, अकबर ने एक ब्राह्मण को दयनीय हालत में जब भिक्षाटन करने के लिए देखा तो बीरबल की ओर व्यंग कसकर बोली, बीरबल ये है तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता के रूप में जाना जाता है, ये तो भिखारी है।
1: भिखारी?
3: हाँ,
1: ऐसा
3: अकबर बोला।
1: अकबर ने बीरबल से कहा?
3: ऐसा बीरबल ने कहा, अकबर ने बीरबल से कहा
1: जी।
3: तो बीरबल ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अकबर महान महल में चला गया तो बीरबल वापिस आया और ब्राह्मण से पूछा वह भिक्षाटन क्यों करता है।
1: तो राजेंद्र जी, ये इस पे थोड़ा से हमारे सरनामी में कह दो कि भिक्षांतन मतलब क्या?
3: मतलब भीख मांगना।
1: ऐसा?
3: तो बीरबल वो पूछ ही ला ब्राह्मण से कि
1: हाँ जी,
3: काहे का भीख मांगे,
1: एकदम
3: भीख मांगा काहे रहे,
1: एकदम सरनामी
3: रहा। तो ब्राह्मण ने कहा मेरे पास धन पैसा आभूषण भूमि कुछ नहीं है और मैं ज्यादा शिक्षित भी नहीं हूँ, यानी मैं ज्यादा पढ़े लिखल न रहा, इसलिए परिवार के पोषण हेतु भिक्षाटन मेरी मजबूरी है। इसलिए कहरला के परिवार का जो पोषण भरण करे उसके लिए मेरे लिए भिक्षा मांगना जरूरी है।
1: अच्छा।
3: तो बीरबल ने पूछा भिक्षाटन से दिन में कितना कमा लेते हो, प्राप्त हो जाता है? तो ब्राह्मण ने जवाब दिया 6 से 8 असरफियाँ। उस समय असरफिया रहे रुपया जैसे रहा, तो समय असरफी रहा,
1: असरफी रहा,
3: असरफी उसको असरफी बोले गिन्नी।
1: राजेंद्र जी, इस पे मैं कुछ और कहना चाहूँगा, क्योंकि असरफी जब ताजमहल बन रहा था ना, तो उसे भी असरफियों से भरा, यानी कि वर्कर्स के भरा जाता था,
3: उसी समय का बात है।
1: और एक होता कौड़ी,
3: कौड़ी तो और नीचे रहा,
1: और नीचे रहा, असरफी से नीचे,
3: असरफी तो उसके बाद कौड़ी रुपया चरन्ना दुवन्ना अटन्ना
1: ऐसे फिर आने लगा,
3: फिर 1 रुपया हुआ। अब 1 रुपया के नीचे कुछ ना चले, अब जमाना बहुत ऊपर हो गया,
1: अब तो जमाना बदल गया,
3: 1 रुपये में कुछ ना मिले,
1: नहीं मिलता,
3: तो अब 10 रुपया 100 रुपया हो गया, तो धीरे धीरे 1 रुपये भी बंद हो जाएगा, लेकिन 1 रुपये अभी भी चले,
1: अभी भी चलता है वहाँ इंडिया,
3: हाँ अभी तो चले, खूब चले। तो बीरबल ने कहा आपको यदि कुछ काम मिले तो क्या भिक्षा मांगना छोड़ देंगे? ब्राह्मण ने पूछा मुझे क्या करना होगा? बीरबल ने कहा आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रतिदिन 101 गायत्री माला मंत्र का जाप करना होगा और इसके लिए अच्छी प्रतिदिन भेंट स्वरूप 10 असरफियाँ प्राप्त होंगी। कि
0: आपको केवल माला जप करना है और अच्छे वस्त्र पहनना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जो 6-7 असर पे मिलती है हम 10 असर पे देंगे आपको, और आपको केवल ये काम करना।
1: तो राजेंद्र जी, इस पे क्यों ना एक पिटारा से निकाला हुआ गीत सुना देते हैं।
0: जरूर।
4: असरफी असरफी बोले है बताल में दल।
1: राजेंद्र जी, शांता जी का माइक ऑन नहीं है।
0: हाँ बोलिए शांता।
2: हाँ असरफी आपने कहा रात कह रहे थे ना, तो असरफी जैसे हम जानते हैं आज के दौर में बताल में दल, तो उस जमाने में असरफी था पहला। हाँ हमने खोजबीन के लगाई, हम पकड़ अपन सुनने वालों को नहीं दिखा पाएंगे, पर हम यहाँ पे संजय जी को और राजेंद्र को तो मालूम है
1: बस,
2: तो ऐसे बताल में दल।
1: ये गूगल बाबा भी कमाल करता है राजेंद्र जी, बस दबाओ बटन और गूगल से निकाल लो
0: बस।
1: दोस्तों जैसे कि अभी हम सब आज के कार्यक्रम में कुछ सुंदर सुंदर गीतों को लेकर आए, तो आशा यही रखते हैं हम सब कि वही गीतों को चलाया जाए।

0: बरदे बीणा वादिनी बरदी, जो सरस्वती का बीणा वादिनी बरदी जो भजन आपने सुना, बहुत ही अच्छा मनमोहक भजन रहा। तो क्यों ना हम ब्राह्मण की बात पे आगे बढ़ा दिया जाए।
1: अच्छा, ब्राह्मण किसको कहते हैं, क्यों? हाँ, और
0: ब्राह्मण किसको कहते हैं, जो जिसपे जिसके अंदर ज्ञान हो वही ब्राह्मण है।
1: उतना दूर नहीं पहुंचा ये ना, अभी धीरे धीरे चल रहा,
0: धीरे धीरे चल रहा है।
1: तो दोस्तों आप सुनते रहना, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी लोग और ऐसा ऐसा बात बोलते रहते हैं कि ब्राह्मण क्या है, और उसके अंतर्गत में कभी ऊंचा नीचा हो जाता है, पर इसमें एक विशेषता है और जो हम सब लेकर आपके साथ और बांट रहे हैं। तो देखते हैं राजेंद्र जी, आगे का वृतांत में क्या कहा गया।
0: हाँ, तक आगे के वृतांत में कहा गया है कि अब तो गायत्री मंत्र की ये बात ब्राह्मण मान गए और उन्होंने स्वीकार कर ली। तो गायत्री मंत्र की शक्ति के प्रभाव से ये बात एकदम फिट बैठ गई। बीरबल का जो प्रस्ताव रहा, अगले दिन ब्राह्मण ने भिक्षाटन करना बंद कर दिया, भिक्षा मांगना बंद कर दिया और बड़ी श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दिया। और शाम को 10 अर्धसर्पियां भेंट स्वरूप लेकर अपने घर लौट आता। सरनामी में चाहे हमें समझाए
1: नहीं, सरनामी में, क्योंकि आपके सरनामी जो, क्योंकि हम लोगों ने तो कोशिश करते इंडिया में जा करके और हिंदी कोशिश किया जाता है बात करने को। हाँ। पर वहाँ ज्यादा नहीं बात कर पाते, पर आप जब सरनामी में समझाते हैं ना तो मजा कुछ और हो जाता है।
0: हाँ, तो अगले दिन ब्राह्मण ने भिक्षाटन, जो भिक्षा लेते थे वो बंद कर दिए और फिर वो अपने पूजा जो गायत्री मंत्र है वो उसमें लग गया। और जब गायत्री मंत्र में लगे तो ब्राह्मण का ध्यान आकर्षित होने लगा। दर्शनाभिलाषी उसके दर्शन करके मिठाई, दर्शन उसका जो दर्शन करे तो लोगों को मिठाई, फल, पैसा, कपड़ा चढ़ाने लगे ब्राह्मण को। अब तो उसे बीरबल से प्राप्त होने वाली असर्पियाँ का भी आवश्यकता न रही। तो जो 10 असर्पियाँ मिलती थी उसने बोला उसकी भी जरूरत नहीं, लोग उसका दर्शन के लिए ऐसे ही आने लग गए क्योंकि वो गायत्री मंत्र का जाप का प्रभाव रहा।
1: हाँ।
0: यहाँ तक कि अब तो ब्राह्मण का श्रद्धा पूर्वक चढ़ाई गई वस्तुओं को भी कोई आकर्षक न रहा, बस वह सदैव मन से गायत्री जाप में लीन रह गया और गायत्री मंत्र की जाप की संख्या असर्पियों की संख्या दोनों ही बढ़ा दी। जब बीरबल ने देखा कि इतना प्रभाव रहा तो उन्होंने, बीरबल ने गायत्री मंत्र की संख्या भी बोली बढ़ा दो, पर हम तुम्हारा 10 का 20 कर देते हैं।
1: अच्छा। और बढ़ा दिया,
0: डबल कर दिया। तो लोग सब कपड़ा पैसा चढ़ाए, असर्पी भी मिले। तो फिर ब्राह्मणों को धीरे धीरे, ब्राह्मण ने वो 20 रुपये बोला कोई जरूरत नहीं 20 असर्पी की, ऐसा हो गया। तो ब्राह्मण की संत की नित्य गायत्री जप की खबर चारों ओर फैलने लगी।
2: जी।
0: दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आने लगे। भक्तों ने ब्राह्मण की तपस्थली में मंदिर व आश्रम का निर्माण करा दिया।
1: तो राजेंद्र जी, ऐसा होता है कि कहावत है जैसे कि तीरथ।
0: हाँ।
1: तो तीरथ, जैसे हम सब जाते हैं तीरथ स्थानों पे ना, तो तीरथ सिर्फ वो नहीं होते, कहावत है कि जैसे कि जो चलते फिरते तीरथ हो जाता है। तो ये ऐसा वृतांत हो गया ये ब्राह्मण।
0: हाँ, ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जब सिद्ध हो गया तो ब्राह्मण सिद्ध हो गया और फिर लोगों का ब्राह्मण का प्रभाव इतना हुआ कि लोग आकर्षित होके वो खींच के आने लग गए।
2: अच्छा।
1: क्योंकि यह सभी को नहीं हो सकता, पर जो जिसके पास वो सिद्ध ना होता है, सिद्धि हो जाए तभी हो पाएगा।
0: फिर ब्राह्मण के तप की प्रसिद्धि की खबर अखबार को भी मिली। बादशाह ने भी दर्शन हेतु जाने का फैसला किया।
1: आगे से तो बादशाह ने तो इसे कुछ गड़बड़ कहे थे।
0: हाँ, तो बादशाह को क्या पता रहा कि वो ये वही ब्राह्मण रहा
1: जो नहीं पता था।
0: आगे से साधारण रहा ब्राह्मण,
1: भिक्षुक।
0: हाँ, भिक्षुक रहा, ये अब सिद्ध हो गया ना।
1: अब सिद्ध हो गया।
0: तो अकबर को भी जब खबर लगी बादशाह को, तो उसने सोचा कि मैं भी चले जाऊं, कैसा ब्राह्मण रहा
1: देखते हैं।
0: हाँ। जाने का फैसला लिया। तो वह शाही तोहफे लेकर राजसी थाट बाट में बीरबल के साथ संत से मिलने चल पड़े। वहां पहुंचकर साई भेंटे अर्पण कर ब्राह्मण को प्रणाम किया।
2: हाँ।
0: ऐसे तेजोमय संत के दर्शनों से हर्षित साई हृदय सहित बादशाह बीरबल के साथ बाहर आ गए। फिर जब बीरबल ने, अकबर ने दर्शन किए तो सोचा कि यार, उसको लगा कि हाँ कुछ है, कोई ताकत है, कोई शक्ति है। तो वह जब दर्शन करा ब्राह्मण। हाँ। का